0: वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से गाइडेंस देने वाला, हेल्प करने वाला कोई तो ऐसा गुरु मिल ही जाता है जो आपको इस जर्नी पे आगे ले जाता है।
1: जी बहुत खूब। तो जाहिर सी बात है सुनीता मैम बतला भी रही हैं ये, और ये बहुत नेचुरल सी बात लगती है कि अगर कोई मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो जरा आसानी हो जाती है, फिर चीजें जरा इजीली समझ में आ जाती हैं। बाकी तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस की बात है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेट करेंगे या सोचेंगे उस बारे में तो क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। आप कुछ कह रही हैं मैम?
0: यही मैं बोल रही थी कि गुरु जब हमें आता है हमारे लाइफ में तो वो उसका बहुत मतलब, अब आप समझिए कि आप और ऊपर जर्नी में जाने ही वाले हैं, आप एक हायर लेवल पे वाइब्रेट करने वाले हैं, और वो गुरु के साथ से ही, एक बोलते हैं ना गुरु ही हमें जो भव सागर से पार लगा देता है, तो वो बहुत हेल्प हो जाती है। गुरु के पथ तो रहता है पर गुरु के मार्ग में जब आजू बाजू में जो जंगल में हम जब चलते हैं तो आपके जो भेड़ भेड़िए जो भी हैं वो सब कोई तकलीफ नहीं देता क्योंकि गुरु का साथ रहता है, आप आराम से वो पथ क्लियर कर लेते हैं।
1: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक। तो मैम जाहिर से बात है हम लोग आध्यात्म की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो एक और शब्द है जो पीछे नहीं रहता, बिल्कुल साथ साथ ही चलता है, वो है धर्म, रिलीजन। आपके हिसाब से मैम धर्म और आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, इनमें क्या फर्क है?
0: धर्म अगेन ये एक टूल है
1: जी
0: ना,
1: जी
0: एक मींस टुवर्ड्स एन एंड है,
1: जी
0: तो एंड तो वही है स्पिरिचुअलिटी
1: ओके
0: सबकी, उस
1: जी
0: आत्मा से उस सोर्स से कनेक्ट होना है, तो हमें उस ऊपर वाले में विलीन होना है। तो विलीन होने का मार्ग अलग अलग जैसे टूल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिना रिलीजन के आप वो अचीव नहीं कर सकते, रिलीजन एक हेल्प हो जाता है।
1: जी
0: जैसे आप खाना बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप छोटे चम्मच से खाना नहीं बनेगा या बड़े चम्मच ही चाहिए या ये, बट सही चम्मच अगर होता है तो एक आसान हो जाता है। तो मेरा मानना है कि रिलीजन का भी उतना ही काम है, उससे ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। रिलीजन शुड नॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ, फिर आप भटक गए हो।
1: जी, यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट मैम।
0: तो भटकना नहीं है, अगर आपने पाथ में जो आपका है वो पाथ से भटकोगे तो फिर इस वेद विवाद में ही अटके रहोगे, मेरा ये रिलीजन उसका वो रिलीजन उसका। हर रिलीजन का आप अगर ध्यान से पढ़ें वही बोलता है सोर्स एक है, कनेक्ट उसी से होना है, अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। कोई रिलीजन, जहां तक मुझे पता है, हर रिलीजन में ये चीज तो रहती ही है।
1: ओके
0: तो दिस आर ऑल जस्ट लाइक अलग अलग क्रिएशन है, बट अगेन इट्स जस्ट टूल्स यू नो, अ वे जो हमें हेल्प करता है टू अचीव एन एंड।
1: ब्यूटिफुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से बताया है मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, धर्म और आध्यात्म के बीच का फर्क। बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक प्यारे से भजन का आनंद लें और फिर सुनीता मैम से बात करने के लिए हम वापस हाजिर होंगे।

ठूप

0: बहुत सुंदर। एक और शब्द यहां पर मौजूद है इन्हीं इसी पूरे गुलदस्ते में, इन्हीं फूलों के साथ एक और फूल, मेडिटेशन यानी कि ध्यान। अब जाहिर सी बात है, जितना मैं समझता हूं छोटा मोटा, आपकी प्रैक्टिसेस में भी ध्यान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्ता है। तो क्या मेडिटेशन ध्यान किए बगैर भी, मान लीजिए मुझे मेडिटेशन नहीं आता, ध्यान लगाना नहीं आता, उस तरीके के ध्यान नहीं लगा पाता, मैं एक साधारण सा देहाती व्यक्ति हूं, तभी भी क्या मैं आध्यात्मिक हो सकता हूं बिना मेडिटेशन किए?
1: इसका मैं सिर्फ एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ
0: जी
1: कि आप ध्यान किसे कहते हैं, है ना, वो जानना जरूरी है। ध्यान का मतलब क्या है
0: जी?
1: मैं सरल भाषा में अगर कहूँ कि जब आप किसी गार्डन में जाते हैं, आपने एक सुंदर सा फूल देख लिया जो आपको पसंद है
0: जी,
1: और आप उस फूल पे ध्यान से देख रहे हो, बड़े प्यार से, और उसका आनंद ले रहे हैं, है ना, कि कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, कितना सुंदर है, इतना पीसफुल लग रहा है, इतना, मतलब काफी टाइम से मैंने इतना सुंदर फूल नहीं देखा, उससे नजर नहीं हटती। तब आप मुझे बताइए उस टाइम पे आपके माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं? नहीं आते,
0: नहीं आते हैं, उस वक्त कुछ नहीं आता,
1: आप जस्ट फोकस्ड हैं उस पे, और एक सेंस ऑफ पीसफुलनेस है, ब्लिस है, शांति है।
0: करेक्ट।
1: तो ये एक मेडिटेशन है।
0: ओके।
1: इसे मेडिटेशन, तो मेडिटेशन क्या होता है, जब हम उस स्टेट में रहते हैं जहां हम अपने मन को शांत कर पाते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कोई गाना सुन लीजिए और आपको बहुत मन शांत हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पीसफुल लग रहा है, कितने टाइम बाद इतना अच्छा गाना सुनने मिला, कुछ म्यूजिक सुन लिया, ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज जस्ट अ वे जिसमें आपको बहुत, और इससे आपका कनेक्शन हो रहा है सोर्स से। ये एक एग्जाम्पल बेसिक लेवल पे मैं आपको दे रही हूँ, फिर वो चाहे आप भक्ति के मार्ग के करें, भजन कर लें, जब हम भजन भी बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं तो हम उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं ना, जहाँ बिल्कुल ब्लिसफुल लगता है, पीसफुल लगता है।
0: जी जी, यू आर सो एब्सोल्युटली
1: राइट। अब आपका क्वेश्चन कि मेडिटेशन
0: किए बगैर, जी
1: हाँ, अब ये तो मैं बता दिया कि मेडिटेशन के बगैर नहीं, आप कर ही रहे हैं मेडिटेशन, है ना, किसी ना किसी फॉर्म में आपका मेडिटेशन हो रहा है, आपको पता नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट ये है कि क्यों करना चाहिए और क्या है इसका, उसका मैं ये बोलूंगी कि ये भी एक अनदर एग्जाम्पल मैं दूंगी कि आप अपने आप को समझिए, आप एक लैम्प है।
0: ओके,
1: ठीक है। अब लैम्प है तो आपको वायर तो डालनी पड़ेगी ना प्लग में,
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: स्विच भी ऑन करना पड़ेगा, तभी तो अंदर से पावर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और फिर लैम्प में लाइट आना शुरू होती है। तो ये मेडिटेशन उसी तरह काम करता है कि हमें उस सोर्स से पावर मिलता है
0: जी,
1: शक्ति मिलती है जब हम मेडिटेशन करते हैं।
0: ओके,
1: और उसमें हमारी आत्मा को तृप्ति फील होती है और उसमें से हमारी लाइट आना शुरू होती है, तो आत्मा शाइन होना शुरू होती है। जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि आप एक लैम्प है।
0: ऑलराइट जी,
1: तो ये है। तो जब मेडिटेशन, मेरे ख्याल से कि अलग अलग वे होते हैं, बट जैसे हम, जैसे भी हम अपने, मतलब सोल लेवल पे, आत्मा लेवल पे जब हम कनेक्ट करते हैं, जहां हमें पीसफुल लगता है, बहुत मन शांत रहता है, माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता है, ये भी एक मेडिटेशन ही है।
0: ऑलराइट, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पिक्चराइज करके, बिल्कुल जैसे एक फिल्म जैसी दिखा दी कि किस तरीके से आप एक मेडिटेटिव स्टेज में होते ही हैं, फिर आप चाहे महसूस करें उसको या ना करें, ये बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने बात बताई मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। तो दोस्तों बस एक प्यारे से भजन को सुने और फिर वापस से इसी तरीके की बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जानकारी से भरपूर भरी हुई बातों के लिए हम सुनीता मैम के पास वापस हाजिर होते हैं।

बहुत सुंदर सुनीता मैम, आपको क्या लगता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी और जितना भी आप स्पिरिचुअलिटी को समझती हैं, क्या स्पिरिचुअलिटी अपना लेने से या आध्यात्मिक हो जाने से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है, मतलब अपने पर्सनालिटी में, अपने चरित्र में?

0: अपनी शख्सियत में, अपनी जिंदगी को जीने के लिए। तो सवाल यह हुआ मैम कि क्या अध्यात्म हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमारी पॉजिटिविटी के ऊपर कुछ असर डालता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ, 100%। क्योंकि आध्यात्म में इसमें क्या रहता है कि जब आप सबसे पहले ना अवेयरनेस मोड में रहते हैं, ठीक है, आप अवेयरनेस मोड में रहते हैं तो आपको अपने थॉट्स पे फोकस करना होता है कि मेरे पास ये क्या थॉट आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है।
0: जी।
1: तो आप उस अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन फोकस करते हैं, एज अ आउटसाइडर साइड में खड़े रहते हैं आप अपने आप को देखते हैं कि मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है, मेरे दिमाग में ये सही आ रहा है, मेरे दिमाग में ये गलत आ रहा है। जब हम ये करना शुरू करते हैं, अपने आप पे वर्क करना शुरू करते हैं, थॉट से ही तो बिल्ड होता है ना कि आपके जो एक्शंस हैं। तो
0: जी,
1: द बिगिनिंग इज थॉट, थॉट से आता है एक्शंस, एक्शन से आ जाता है आपका कैरेक्टर, सही है। तो ये तो सभी को पता है, वो कैरेक्टर से फिर आपके थॉट से आ जाता है, एक्शंस एक्शन से आ जाता है, हैबिट हैबिट से आ जाता है आपका कैरेक्टर। तो द फर्स्ट स्टेप इसी का यही रहता है कि जब आप अवेयरनेस में हैं, आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं, है ना। जब आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज हो रहा है कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया, शायद मैं इसको थोड़ी और तरीके से अच्छे से हैंडल कर ली होती सिचुएशन, शायद मेरे को थोड़ा शांत होकर कुछ और वे में भी हैंडल कर लेना चाहिए था, या किसी से जेलसी आ गई, हाँ किसी से। अब आपको एज ए ह्यूमन बीइंग रियलाइजेशन तो होता है कि गुस्सा आ रहा है, जेलसी है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये सब हमारे विकार हैं जिस पे हम वर्क करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाएंगे तो आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट्स और ये नहीं एकदम नॉन एग्जिस्ट हो जाते हैं, बट आप अवेयर हो जाते हैं और आप इस पे काम करने लगते हैं। जब आप इस पे काम करना शुरू करते हैं, अपने आप पे वर्क करना शुरू करते हैं, तो जब आप अपनी गलतियां शुरू कर देखना शुरू करते हैं, मेरे से गलती हो गई, और हम अपने आप को कितनी जल्दी से माफ कर देते हैं ना, अरे गलती हो गई छोड़ दो, जानबूझ के नहीं किया, बट अगर किसी और ने वही गलती कर ली, इतना गुस्सा आ जाता है, इतनी गलती कैसे चल रही। तो जब हम अवेयरनेस मोड में रहते हैं तो हम वो रियलाइज करते हैं कि जब मैंने गलती की तो माफ कर दिया, सामने वाले से भी गलती हो गई जाने दो, तो यू बिकम एम्पैथेटिक।
0: जी जी,
1: एम्पैथी तो रहती है, एम्पैथी आ जाती है, तो सामने वाले के जरिए से आप उनको, सामने वाले को भी अपने तरह देखने के, अपने प्लेस में रख के देखना शुरू कर देते हैं। तो वो उस हिसाब से क्या आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू कर देते हैं आपके आसपास में, देखिए फिर अच्छा माहौल रहेगा। तो इस तरह से जो आप बोल रहे हैं पॉजिटिविटी में कैसे काम करता है, ये जस्ट एक मैं बता रही थी कि हाउ इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी नॉट ओनली इन यू बट इट हेल्प्स द होल एटमॉस्फेयर, पूरा पॉजिटिविटी क्रिएट करने में हेल्प करता है।
0: बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया मैम आपने। जाहिर सी बात है अध्यात्म चीज ऐसी है, एक प्रैक्टिस इस तरह की है कि हमें पॉजिटिव रहने में हमेशा बहुत बहुत मदद उससे मिलती है। ये बात प्रैक्टिस करने पर आपको महसूस होगी दोस्तों, एक बार ध्यान लगाइए, एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बहुत सुंदर, चलिए सुनीता जी एक और छोटे से भजन का आनंद लेने के बाद हम वापस आते हैं।

0: सुनीता मैम, अगर इस प्रोग्राम को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर कोई समझ जाए कि ऑल राइट, आध्यात्म मेरे बहुत काम की चीज है और मुझे इसको अपना लेना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप किसी भी साधारण व्यक्ति को क्या सलाह देना चाहेंगी? 1, 2, 3 ये प्रैक्टिसेस करिए या ये काम कर लीजिए सिंपल से, और आध्यात्म का फायदा या आध्यात्म का जो महत्व है आपको पता चल जाएगा आपके जीवन में, तो वो क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे?
1: सजेशंस देखिए, ये तो इसमें काफी हर एक की अपनी इंटरेस्ट की लेवल भी रहती है, कितने जने स्टोरीज पढ़ना चाहेंगे, कितने जने बुक्स पढ़ना चाहते हैं, बट एक सिंपल सी चीज मैं जो सजेस्ट करूंगी कि आप एक जर्नल रखिए और एट द एंड ऑफ द डे उसमें जो दिन में आपके साथ जो अच्छा हुआ, जिसके लिए आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा लगा मुझे एंड थैंक यू यू नो यूनिवर्स, तो वो आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए। ये एक बहुत सिंपल सी स्टेप है बट ये आपको बहुत हेल्प करती है कि आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं। जैसे आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाने से, तो एक थैंक्स रहते हैं ना हमेशा के
0: जी।
1: भगवान ने मुझे ये अच्छा किया, थैंक यू सो मच गॉड। तो जब हम उस मोड में रहते हैं तो वो एक बहुत बेसिक प्रैक्टिस हम चालू करते हैं, एक ये हो जाता है। ऑफ कोर्स बीइंग थैंकफुल फॉर एवरीथिंग,
0: करेक्ट जी जी जी,
1: दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मैं यही बोलूंगी, ट्राई टू स्टे कनेक्टेड मोर विथ नेचर, जितना हो सके आप प्रकृति से कनेक्टेड रहिए और ग्राउंडेड रहिए, वॉक करिए इवन ऑन द ग्रास विदाउट योर चप्पल। दीज आर द बेसिक्स जो मैं बोलूंगी कि ये सब करना ही चाहिए। थोड़ा आप अपने योगा करिए, लोम विलोम प्राणायाम करिए, ये प्रैक्टिसेस अपने स्टार्ट करिए, थोड़ा वॉक पे जाइए, ये सब इनिशियल स्टेजेस हैं। डू सम प्रेयर्स, स्टार्ट फ्रॉम देयर, रीड सम स्टोरीज, व्हाटएवर यू रीड सम मॉरल स्टोरीज,
0: जी,
1: तो
0: जी.
1: वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू बी काइंड, यू नो, वर्क ऑन योरसेल्फ टू बी अ बेटर पर्सन, ट्राई टू हेल्प अदर्स, दिस इज द बेसिक थिंग्स। यहाँ के आप स्टार्ट करके फोकस करिए एंड उसके आगे आप चलना चाहें तो ऑफकोर्स यू कैन स्टार्ट विथ मेडिटेशन एंड यू कैन डू सम चैरिटी, यू कैन डू सम प्रेयर, एंड आपके आगे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, ऊपर वाला अपने आप गाइड करेगा व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो।
0: बहुत सुंदर, अमेजिंगली ब्यूटीफुल, बिल्कुल ही सीधी सीधी सी सच्ची बात दोस्तों। बहुत सिंपल मेथड्स, बहुत सिंपल तरीके मैडम ने बताए हैं, जो मुझे समझ में आया और मेरे काम की चीज लगी वो ये है कि हमेशा थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, याद रखिए कि आप किस किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। थैंक यू कहते चलिए। आध्यात्म का ये तरीका भी बड़ा प्यारा है, बहुत सुंदर। सुनीता मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें चीजें बताई। जाहिर सी बात है, आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं तो ये चीजें आपकी रोज की प्रैक्टिस में हैं, तो बहुत आसान तरीकों से आप किसी को भी बता सकते हैं कि वो किस तरीके से इनको एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें और प्रैक्टिस करें। सुनीता मैम, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच इन कमिंग टू आवर प्रोग्राम,
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग, इट वॉज माई प्लेजर।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
0: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: ये है कैसा जादू मेरे लिए, तो सच भी भरम है। सुनिए
0: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए,
0: कहिए कहिए।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा होगा, स्पेशली जब हम गणेश जी की मूर्ति देखते हैं। जब भी गणेश चतुर्थी पर स्थापना करते हैं, जब भी किसी मंदिर में उनके दर्शन करते हैं,

बस ज्ञान का प्रवाह बह रहा हो। लेकिन फिर एक समस्या आ गई। गणेश जी जिस कलम से लिख रहे थे वो टूट गई। अब सोचिए, महाभारत जैसे ग्रंथ के बीच में ना मार्केट, ना स्टेशनरी शॉप, ना ऑनलाइन डिलीवरी, ना ब्लिंकिट और ना रिप्लेसमेंट पेन। और सबसे बड़ी बात कि शर्त थी, लिखना रुकना नहीं चाहिए, एक पल के लिए भी नहीं। और तब गणेश जी ने कुछ ऐसा किया जो आज भी हमें हैरान कर देता है। उन्होंने बिना सोचे अपना एक दांत तोड़ लिया, जी हाँ, और फिर उसे कलम बनाकर लिखना शुरू किया। ना शिकायत, ना दर्द की बात, ना रुकना, ना बहाना, बस कर्तव्य, बस समर्पण और बस संकल्प। सोचिए दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो एक छोटी सी परेशानी आते ही काम रोक देते हैं। इंटरनेट स्लो हो गया, आज मूड नहीं है, पेन नहीं मिल रहा, ट्रैफिक बहुत है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे। और इधर गणेश जी ने पूरा दांत तोड़ दिया लेकिन काम नहीं रोका, इसीलिए उनका नाम पड़ा एक दंत, एक दांत वाले। लेकिन मेरे हिसाब से एक दंत का मतलब सिर्फ एक दांत नहीं, एक दंत का मतलब है एक लक्ष्य, एक संकल्प, एकाग्रता। जहां ध्यान सिर्फ काम पर हो, बहानों पर नहीं। लेकिन दोस्तों, एक और कहानी भी मिलती है और ये कहानी थोड़ी रोमांचक है। कहते हैं एक बार भगवान परशुराम कैलाश पर शिव जी से मिलने पहुंचे, लेकिन उस समय शिव जी और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे। गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे और उन्होंने परशुराम जी को रोक दिया। परशुराम जी को गुस्सा आ गया और क्रोध में उन्होंने अपना परशु यानी फारसा गणेश जी की तरफ फेंका। गणेश जी चाहते तो उसे रोक देते थे, लेकिन वो अस्त्र शिव जी का दिया हुआ था। उसका अपमान ना हो, इसलिए गणेश जी ने वार को स्वीकार किया और उससे उनका एक दांत टूट गया। अब चाहे आप पहली कहानी माने या दूसरे, दोनों में एक बात तो कॉमन है, त्याग, विनम्रता और कर्तव्य की तरफ अपनी पूरी चेतना। मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ दांत होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, अपना कंफर्ट, अपना ईगो, अपनी जिद, अपनी आदतें। और कभी कभी जिंदगी हमसे कहती है कि अगर आगे बढ़ना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ तोड़ना पड़ेगा और कुछ त्याग करने पड़ेंगे। एक स्टूडेंट को नींद का त्याग करना पड़ता है, एक कलाकार को आराम का, एक खिलाड़ी को बहुत सारी पसंदीदा चीजों का, एक माँ को अपने लिए वक्त का, और तब जाकर कुछ बड़ा बनता है। गणेश जी का टूटा हुआ दांत भी हमें यही याद दिलाता है, परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है पर्पस, पूरा होना जरूरी नहीं, समर्पित होना जरूरी है। और शायद इसीलिए दुनिया भर में करोड़ों लोग गणेश जी को याद करते हैं, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि अगर आपका इरादा मजबूत है तो टूटा हुआ दांत भी कलम बन सकता है और एक छोटा सा त्याग सदियों तक याद रह सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गणेश जी की मूर्ति देखें और उनका एक टूटा हुआ दांत नजर आए तो उसे कमी मत समझिएगा, उसे यादगार समझिए, एक ऐसी याद जो हमें बताती है कि बड़े काम करने वाले लोग कभी

कभी अपनी सबसे प्यारी चीज को दान कर देते हैं। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा और मिलूंगी फिर एक और कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पिंटू बोला, भाई बीवी के फोन का नेट पैक खत्म होने से पहले ही रिचार्ज कर दिया करो। सोहन बोला, क्यों भाई? पिंटू बोला, देखो क्योंकि खाली दिमाग जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है, इसलिए न वो खाली होगी न तेरा दिमाग खाएगी।

तब अर्जुन ने भगवान से कुश्ती लड़ ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। हम सब ने बचपन से एक कहानी सुनी है, भगवान को भक्ति करो, प्रार्थना करो और ध्यान करो। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, उसमें एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना भी की और उनसे कुश्ती भी लड़ ली। जी हाँ, आज की कहानी महाभारत के एक ऐसे प्रसंग की है जहां दुनिया का सबसे महान धुरंधर अर्जुन भगवान शिव को पहचान ही नहीं पाए। और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो अहंकार और विनम्रता का संघर्ष था, वो शक्ति और समर्पण का एक पाठ था, और सबसे बढ़कर वो याद दिलाता है कि कभी कभी भगवान हमें वरदान देने से पहले हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं। कल्पना कीजिए घने जंगल का एक दृश्य, दूर दूर तक पेड़ ही पेड़, हवा में गीली मिट्टी की खुशबू, पत्तों की सरसराहट, और बीच जंगल में एक योद्धा, आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन एकदम केंद्रित। वो थे अर्जुन, पांडवों के वीर, महाभारत का महान धुरंधर। लेकिन उस दिन वो योद्धा नहीं थे, वो एक तपस्वी थे। महाभारत का युद्ध अभी हुआ नहीं था, लेकिन उसके बादल आसमान में दिख रहे थे। सबको पता था कि ये संघर्ष होगा, और जब होगा तो धरती का इतिहास बदल जाएगा। अर्जुन जानते थे कि सामने जो चुनौती है उसके लिए सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं है, उसके लिए दिव्य शक्ति चाहिए। और इसीलिए वो जंगल में आए और भगवान शिव को प्रसन्न करने लगे, उनसे पशुपत अस्त्र पाने के लिए जिसकी शक्ति का वर्णन करना भी मुश्किल है, ऐसा शस्त्र जो सृष्टि को हिला सकता था। दिन बीत गए, रातें बीत गईं, बारिश आई, धूप आई, लेकिन अर्जुन अपनी तपस्या में लगे रहे। ना आराम, ना शिकायत, ना विचलित मन, बस एक लक्ष्य। और दोस्तों, ये बात जिंदगी में भी सच है, जब लक्ष्य सच में बड़ा हो तो रास्ता आसान नहीं होता। अब जरा कैलाश चलते हैं। भगवान शिव सब देख रहे थे, उन्होंने अर्जुन की तपस्या देखी, उसका समर्पण देखा, उसकी इच्छा देखी, लेकिन शिव तो शिव हैं, भोले हैं, पर साथ ही लीलाओं के स्वामी भी हैं। उन्होंने सोचा वरदान तो दे देंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये योद्धा कितना तैयार है। और फिर शुरू हुई एक अनोखी लीला। भगवान शिव ने अपना रूप बदल लिया, ना जटा, ना गले में सांप, ना भस्म, ना दिव्य तेज, बस एक साधारण जंगल का शिकारी, एक कीरत, दो मजबूत हाथ, एक धनुष, एक त्रिशूल, एक ढाल, और उनके साथ माता पार्वती भी। राजसी वस्त्र छोड़कर एक वनवासी शिकारी के रूप में, कंधे पर तीर, हाथ में धनुष और चेहरे पर मुस्कान, जैसे दोनों किसी नाटक के लिए तैयार हुए हैं। उधर अर्जुन ध्यान में था, तभी जंगल में एक भयानक गर्जना गूंजी, एक जंगली सुअर। लेकिन वो आम सुअर नहीं था, वो मुक्का नाम का एक राक्षस था। वो अर्जुन की तपस्या को तोड़ने वहां आया था। वो तेजी से अर्जुन की तरफ दौड़ा, अर्जुन ने आंखें खोली, एक पल, सिर्फ एक पल, और तीर छूट गया। लेकिन उसी क्षण
जंगल के दूसरे कोने से भी एक और तीर निकला और दोनों तीर एक साथ सुअर को लगे। राक्षस तो गिर गया और मर भी गया। अब जो हुआ वही तो कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। अर्जुन बोला, शिकार मेरा है।

कारी बोला, नहीं मेरा है, मैंने पहले मारा। शिकारी ने कहा, मैंने भी मारा। अब दोस्तों, कभी दो लोग एक ही पार्किंग स्पॉट के लिए लड़ लेते हैं, देखा है ना आपने, या एक ही ऑटो के लिए, बस वैसा ही कुछ माहौल था। लेकिन यहां दोनों के हाथ में धनुष भी थे और ईगो भी। बहस बढ़ी, आवाजें ऊंची हुई और फिर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने सोचा, कोई आम शिकारी है, अभी हरा देता हूं। लेकिन अजीब बात हुई कि हर वार बेकार गया, हर प्रहार असफल हुआ। जितनी ताकत अर्जुन लगाता, उतना ही वो शिकारी उसे आसानी से रोक लेता। अर्जुन हैरान था, ये कौन आदमी है, जंगल का एक आम शिकारी और इतना शक्तिशाली, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जिंदगी में भी तो यही होता है, कभी कभी हम सामने वाले को देखकर उसकी औकात तय कर लेते हैं। उसके कपड़े देखकर, उसकी बोली देखकर, उसकी हैसियत देखकर, और फिर एक दिन पता चलता है कि हम गलत थे, बहुत गलत। लड़ाई और तेज हुई और फिर एक पल आया जब अर्जुन जमीन पर था और शिकारी उसके ऊपर खड़ा था। अर्जुन हार चुका था, महान अर्जुन, अपराजित अर्जुन, धनु विद्या के राजा, एक अनजान शिकारी से हार गए थे। उस पल उनका अहंकार टूट गया, घमंड बिखर गया। उन्होंने आंखें बंद की और बस प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे शक्ति दीजिए। और दोस्तों, कभी कभी जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं, तभी असली समझ पैदा होती है। अर्जुन ने आंखें खोली और जो देखा उसे देखकर वो निशब्द रह गए। वो शिकारी अब शिकारी नहीं थे, उनके सामने स्वयं महादेव खड़े थे, नीलकंठ, त्रिनेत्र, महाकाल, जगत के संहारक, और उनके पास माता पार्वती मुस्कुराती हुई। उस पल अर्जुन को समझ आया कि वो हारे नहीं थे, उसकी परीक्षा हुई थी। वो गिरे भी नहीं थे, उन्हें झुकना सिखाया गया था। वो युद्ध नहीं था, एक पाठ था। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने सिर्फ तपस्या ही नहीं करी, तुमने संघर्ष भी किया, तुमने हार को स्वीकार भी किया और तुमने अहंकार को छोड़ना भी सीखा। और फिर उन्होंने अर्जुन को पशुपात अस्त्र प्रदान किया, वो दिव्य अस्त्र जिसके लिए ये पूरी लीला रची गई थी। दोस्तों, मुझे इस कहानी में सबसे सुंदर बात क्या लगती है आप जानते हैं? भगवान ने अर्जुन को उस वक्त वरदान नहीं दिया जब वो आंखें बंद कर ध्यान कर रहे थे। भगवान ने उन्हें उस समय वरदान दिया जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हर शक्ति से बड़ी भी कोई शक्ति होती है। हम सबकी जिंदगी में भी कभी ना कभी एक कीरत आता है, कोई आदमी, कोई परिस्थिति, कोई चुनौती जो हमें हरा देती है, जो हमें नीचे गिरा देती है, और हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन शायद वो हमारी हार नहीं होती, वो हमारी तैयारी होती है। शायद जिंदगी भी हमें कुछ बड़ा देने से पहले हमें विनम्र बनाना चाहती है। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपको अनजान शिकारी से हरा दे, तो तुरंत दुखी मत हो जाएगा। क्या पता वो कोई हार हो ही नहीं, क्या पता वो महादेव की एक और लीला हो। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, मिलूंगी फिर एक कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: गोलू बोला, ओएलएक्स वाले साले बोलते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बिकता है।
2: मोलू बोला, हाँ बिकता तो है। गोलू बोला, तो 10 दिन से एक कैलेंडर इस पर बेचने के लिए डाल रखा है, अभी तक बिका ही नहीं। मोलू बोला, कितने में बेच रहे हो? गोलू ने बोला, यार मैंने 50 रुपए में खरीदा था, 20 में दे रहा हूँ, बिल्कुल टिप टॉप हालत में है, बस 1 साल पुराना है।

जब एक फूल कम पड़ गया और विष्णु जी ने अपनी आंख चढ़ा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे तनुषा और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और एक दृश्य इमेजिन कीजिए। सुबह का समय है, हल्का सूरज उग रहा है, एक शांत सरोवर है जिसके पानी पर हजारों कमल के फूल खिल रहे हैं। हवा धीरे धीरे बह रही है और उन कमलों को एक एक करके कोई बड़ी श्रद्धा के साथ चुन रहा है, क्योंकि आज कोई आम पूजा नहीं होने वाली। आज एक भक्त अपने आराध्य को हजार कमल के फूल अर्पित करने वाला है। लेकिन उसे क्या पता कि आज उसकी भक्ति की परीक्षा होने वाली है और उस परीक्षा में उसे फूल नहीं, खुद का एक हिस्सा देना पड़ेगा। दोस्तों हमारे धर्म में सबसे सुंदर बातों में से एक बात ये है कि यहाँ देवता भी एक दूसरे के भक्त हैं। भगवान विष्णु शिव जी का सम्मान करते हैं, शिव जी विष्णु जी का सम्मान करते हैं और दोनों के बीच जो प्रेम और जो आदर है उसकी अनेक कहानियां हमें मिलती हैं। आज की कहानी भी उनमें से ही एक है। बहुत समय पहले जब असुरों का बल बढ़ने लगा था, जब अधर्म धीरे धीरे धरती पर अपने पैर जमा रहा था, तब भगवान विष्णु ने सोचा कि उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्होंने एक संकल्प लिया। संकल्प ये था कि 1000 कमल के फूल शिव जी को अर्पित करेंगे। अब सुनने में ये बात बहुत आसान लगती होगी, लेकिन सोचिए 1000 फूल, एक या दो नहीं, 10 या 20 भी नहीं, पूरे 1000। और 1000 फूल के साथ श्रद्धा भी उतनी ही गहरी। दोस्तों कभी कभी जिंदगी में हम सब संकल्प लेते हैं, रोज सुबह वॉक करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, डायरी लिखेंगे, मेडिटेशन करेंगे। शुरू में सब आसान लगता है, लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब लगातार निभाना पड़ता है। विष्णु जी भी वही कर रहे थे, एक एक कमल इकट्ठा करना, एक एक फूल को संभालना और फिर शिव जी के चरणों में अर्पित करना। पूजा शुरू हुई, महादेव का स्मरण हुआ, मंत्र गूंजने लगे, वातावरण पवित्र हो गया। एक फूल चढ़ा, दो फूल चढ़े, 100 फूल चढ़े, 200 फूल चढ़े, 500 फूल चढ़े, 800 फूल, 900 फूल, 999 फूल। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों भगवान शिव को भी तो अपने भक्तों से प्यार भरी शरारत करना पसंद है। और सबसे बड़ी बात, वो भक्ति की गहराई देखते हैं, सिर्फ क्रिया नहीं, सिर्फ रस्म नहीं, दिल देखते हैं, नियत देखते हैं, समर्पण देखते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि शिवजी ने चुपके से एक कमल का

फूल हटा दिया, बस एक, सिर्फ एक, 999 को 1000 से अलग करने वाला एक फूल। अब पूजा समाप्त होने वाली थी। विष्णु जी ने फूल गिने, 999, एक बार फिर गिने, 999, तीसरी बार गिने और फिर भी 900

भूल चूक माफ, कोई बात नहीं, एक फूल ही तो है। लेकिन विष्णु ने ऐसा नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक फूल नहीं था, ये उनका संकल्प था और संकल्प में कमी नहीं होनी चाहिए। तब उन्होंने एक गहरी बात याद की। लोग उन्हें कमल नयन कहते थे। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर और कोमल मानी जाती हैं। और तब उनके मन में एक विचार आया, अगर एक कमल कम है तो मैं अपना एक कमल दे देता हूं। दोस्तों, ये सोचना आसान है लेकिन करना नहीं, करना बहुत मुश्किल है। हम तो कभी कभी एक घंटा मोबाइल साइड रखने में परेशान हो जाते हैं। एक दिन फेवरेट चीज ना मिले तो मूड खराब हो जाता है। और यहाँ भगवान विष्णु अपनी आंख अर्पित करने को तैयार हो गए, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी से तारीफ पाने के लिए, ना किसी अवार्ड के लिए, बस सिर्फ भक्ति के लिए, सिर्फ अपने वादे को पूरा करने के लिए। कहते हैं उन्होंने अपनी उंगली आंख की तरफ बढ़ाई और जैसे ही वो अपनी आंख निकालने वाले थे, पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। हवा रुक गई, समय रुक गया और उसी पल भगवान शिव प्रकट हो गए। महादेव ने विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा कर बोले, विष्णु बस मैं तुम्हारी भक्ति देखना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है, मैं देखना चाहता था कि तुम फूल चढ़ा रहे हो या अपना दिल। दोस्तों, क्या खूबसूरत बात है ना, भगवान को फूल नहीं चाहिए थे, भगवान को भक्ति चाहिए थी। उन्हें संख्या नहीं चाहिए थी, उन्हें समर्पण चाहिए था। और फिर शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया, वही सुदर्शन चक्र जो धर्म की रक्षा का प्रतीक बना, जो विष्णु जी की पहचान बना और जिसका नाम हम आज भी श्रद्धा के साथ लेते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है ये कहानी असल में फूलों की कहानी है ही नहीं, ये उस एक एक्स्ट्रा कदम की कहानी है जो ज्यादातर लोग नहीं उठाते। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी वो एक फूल कम पड़ जाता है, एक मौका छूट जाता है, एक रिसोर्स कम पड़ जाता है, एक सपोर्ट सिस्टम टूट जाता है, एक दोस्त साथ छोड़ देता है, एक प्लान फेल हो जाता है और हम सोचते हैं अब क्या करें। लेकिन शायद जिंदगी वही देखना चाह रही होती है कि अब हम क्या करेंगे, बहाने बनाएंगे या समर्पण दिखाएंगे। और हो सकता है हमारी जिंदगी का सुदर्शन चक्र भी उसी मोड़ के बाद छुपा हो, उस एक एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद, उस एक सैक्रिफाइस के बाद, उस एक एक्स्ट्रा कोशिश के बाद। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी में कोई फूल कम पड़ जाए तो हिम्मत मत हारिएगा। हो सकता है वही आपकी परीक्षा हो और हो सकता है उस परीक्षा के बाद आपको अपना सुदर्शन चक्र मिल जाए। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। मिलूंगी फिर एक और कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार हिस्ट्री की क्लास में गप्पू ने पूछा, सर एक बात आपको पता है? टीचर ने कहा, क्या? गप्पू बोला, इतिहास गवाह है सर, जब भी कोई नया साल आया है, एक साल से ज्यादा टिक नहीं पाया है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें।
4: दोस्तों मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी, तो लीजिए सुनिए।
5: एक समय की बात है, एक राजा अपने वजीर से बहुत नाराज हो गया। राजा ने उसे बहुत ऊंची मीनार के ऊपर कैद कर दिया। एक तरह से यह देखा जाए तो मृत्युदंड ही था, ना उतने ऊपर तक कोई भोजन पहुंच सकता था और ना ही उस गगनचुंबी मीनार से कूदकर भागने की कोई संभावना थी। जिस समय उसे ले जाया जा रहा था, लोगों ने देखा कि वो जरा सा भी चिंतित और दुखी नहीं है, हमेशा की तरह प्रसन्न है। उसकी पत्नी ने रोते हुए उसे विदा दी और पूछा, अजी तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? उसने कहा, अगर रेशम का एक बहुत पतला सूत भी मेरे तक पहुंचाया जा सकेगा ना, तो मैं आजाद हो जाऊंगा। क्या तुम ये काम कर पाओगी? पत्नी ने बहुत सोचा, पर इतनी ऊंची मीनार तक धागा पहुंचाने की कोई उपाय उसको समझ नहीं आया। उसने गांव के एक समझदार माने जाने वाले व्यक्ति से पूछा, तो व्यक्ति ने कहा, भृंग नाम के कीड़े को पकड़ो, उसके पैर में रेशम के धागे को बांध दो और उसकी मूंछ के बाल पर शहद की एक बूंद रखकर उसका मुंह चोटी की ओर करके मीनार पर छोड़ देना। उसी रात को ऐसा किया गया। वह कीड़ा शहद की गंध पाकर उसे पाने के लोभ में ऊपर की ओर चढ़ने लगा और आखिर उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली। अब रेशम के धागे का एक छोर कैदी के हाथ में पहुंच गया। अब धीरे धीरे सूत की धागे से डोरी और डोरी से मोटी रस्सी बनती चली गई। उस रस्से के सहारे वजीर कैद से बाहर हो गया और वह अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चला गया। खास बात यही है दोस्तों कि जिंदगी के अंधेरों तमाम उठापटक से बाहर निकलने के लिए रोशनी की एक किरण ही काफी होती है। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही, मुसाफिर की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

जिंदगी की शिकायतें। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आते ही बोले, चलिए पेपर के लिए तैयार हो जाइए, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। बच्चों को पहले से इस टेस्ट के बारे में कोई जानकारी ना थी, तो वो घबरा गए, जल्दी जल्दी किताबों के पन्ने पलटने लगे, सर के दिए हुए नोट्स पढ़ने लगे। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब कुछ काम नहीं आएगा, मैं टेस्ट पेपर आपके सामने रख रहा हूं, जब सारे पेपर बट जाएं, आप उसे तभी पलट कर देखिएगा। टेस्ट पेपर बट गए, पर ये क्या, इसमें तो कोई क्वेश्चन प्रश्न था ही नहीं। सफेद पेपर पर एक काला धब्बा बना हुआ था। ये क्या है सर, इसमें तो कोई क्वेश्चन, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, छात्रों ने पूछा। प्रोफेसर बोले, जो कुछ भी है यही है, आपको बस इसी के बारे में लिखना है, आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। बच्चे अपना उत्तर लिखने में लग गए। समय खत्म हुआ, प्रोफेसर ने पेपर जमा कर लिए। लगभग सभी ने ब्लैक स्पॉट को अपनी अपनी तरह से समझाने की कोशिश की थी। प्रोफेसर गंभीरता से बोले, इस टेस्ट का आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं इसके लिए आपको कोई मार्क्स देने वाला हूं, अंक देने वाला हूं, लेकिन इसके जरिए मैं आपको जीवन का एक सच समझाना चाहता हूं। देखिए, इस पूरे टेस्ट पेपर का 99% हिस्सा सफेद है, पर आप में से किसी ने उसके बारे में नहीं लिखा, और अपना 100% 100% सिर्फ उस एक चीज के बारे में बताने में लगा दिया जो मात्र 1% था। यही बात हमारे जीवन में भी देखने को मिलती है। समस्याएं हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होती हैं, पर हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं पर लगा देते हैं। कोई लुक्स को लेकर परेशान है, तो कोई अपने करियर को लेकर टेंशन में है, कोई बस पैसों का ही रोना रोता रहता है। प्रोफेसर ने आगे कहा, जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है, पर हमारा ध्यान कुछ एक दो चीजों पर अटक के रह गया है, हम खुश हो ही नहीं पाते, जो है उसके लिए थैंक यू कह ही नहीं पाते। हम हमारे परिवार, अच्छे दोस्तों, किसी के लिए भी शुक्रगुजार नहीं हो पाते। हम जीवन की उस 99% चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते जो सचमुच हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ। किसी को परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है दोस्तों, तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए। दिल से फैसला करो तुम्हें क्या करना है, दिमाग अपने आप तरकीब निकाल लेगा।

थोड़ा सा और। अमेरिका के कॉलोराडो इलाके में पहली दफा सोने की खदानें मिली। वहां रहने वाले किसानों को ऐसे ही खेत में काम करते हुए सोना मिलना शुरू हो गया। लोग खेतों में जाते, पहाड़ों पर चढ़ते, उन्हें सोना मिल जाता। लोगों ने खूब जमीनें खरीद ली और अमीर होने लगे। एक आदमी ने सोचा कि छोटी मोटी जमीन का क्या करेंगे, क्यों ना एक पूरा पहाड़ ही खरीद लिया जाए। उसने अपना सारा पैसा इसी में लगा दिया। कारखाने थे, बेच दिए और पूरा पहाड़ खरीद डाला। उसे लगा कि अब वो जल्द ही शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। लोग छोटे छोटे जमीन के टुकड़े खरीद रहे थे और उसने तो पूरा पहाड़ ही खरीद डाला। जमीन खरीदते ही उसने पहाड़ की खुदाई का काम शुरू करवा दिया। पहाड़ पर खुदाई के बड़े बड़े मशीनें लगाई गई। दिन रात खुदाई का काम होता रहा, लेकिन सोने का कोई पता ना चला। एक टुकड़ा भी सोने का ना मिला। वह करीब करीब 3.5 करोड़ रुपए लगा चुका था। उसकी मशीनों ने भी कोई सोना नहीं निकाला। लोग अपने खेतों से कुदालियों से खोदकर सोना निकाल रहे थे। अब उसके पास कुछ भी बचा ही नहीं था। हालात ऐसे हो गए थे कि मशीनों को पहाड़ से उतारने के लिए भी उसके पास पैसे ना बचे थे। सब ठप हो गया। आखिरकार हताश होकर उसने विज्ञापन निकाल दिया कि वो पूरा पहाड़ और मशीनरी बेच देना चाहता है। उसके मित्रों ने कहा, अबे कौन खरीदेगा, अभी तक तो सबको पता चल ही चुका है कि पहाड़ पर कुछ है ही नहीं। पर उसने कहा कि कोशिश करने में क्या बुराई है, शायद कोई हो जो मुझसे ज्यादा हिम्मती हो। और फिर एक आदमी मिल ही गया। उसने 3 करोड़ रुपए दिए और पूरा पहाड़ और पूरी मशीनरी खरीद ली। जिसने खरीदा उसे भी सब लोगों ने बहुत मना किया। मित्रों ने समझाया कि सामने वाला व्यक्ति तो पूरा बर्बाद हो गया है, उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, जहां तक पहाड़ खोदा गया है वहां तक सोना नहीं है, ये तो साफ है। मामला काफी हो चुका है, अब उसके नीचे सोना हो सकता है। जहां तक खोदा गया है वहां तक सोना नहीं है, वह आदमी मेहनत कर चुका है, अब आगे मेहनत करनी है। पहाड़ काफी कट चुका है। लोगों ने कहा कि इस झंझट में मत पड़ो, जमीनें बहुत हैं जिन पर ऊपर ही सोना पड़ा है। पर आदमी नहीं माना, उसने पहाड़ खरीद ही लिया। अब आश्चर्य की बात यह थी कि पहले दिन की खुदाई में ही 1 फुट मिट्टी की परत हटाते ही सोना निकल आया। कॉलोराडो की सबसे बड़ी सोने की खदान मिल गई और वह आदमी कॉलोराडो का सबसे बड़ा खरबपति बन गया। संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जल

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कभी

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ। दोस्त, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
5: अ से अर्जुन,
6: आ से आशा
5: जी।
7: टाइम हो रहा है, रिया ने बुलाया, चलते हैं।
8: सही कह रहा है,
7: चलो चलते हैं।
8: पढ़ना पड़े, इससे पहले टाइम वेस्ट हो जाए। मुझे लगता है खेलने के लिए बुलाया होगा। चलो,
9: अरे कहीं पढ़ने के लिए तो नहीं बुला रहे,
8: कहीं काम से।
10: लगता है बच्चे आ गए, बच्चों की आवाज है। अरे अरे अरे अरे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ, शाबाश।
11: नमस्ते भैया।
10: नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। पहले तो सब बच्चे अपना अपना नाम बताएंगे, ठीक है ना।
12: नमन।
10: नमन।
12: लवीश।
10: लवीश।
12: अर्णव।
10: अभय।
12: दक्षार।
10: कुशाग्र।
12: निशांत।
10: निशांत। भाई जोर से बजाओ ताली पहले सबके लिए। शाबाश शाबाश। ये बताओ, कहानी सुनना किस किस बच्चों को अच्छा लगता है?
13: हाथ खड़ा करो।
14: मुझे मुझे।
10: तो बच्चों, आज से मैं आपको रोज एक नई कहानी सुनाया करूंगा।
13: कहानी।
10: कहानी।
15: अपनी बहन को
16: दोस्त महमूद भी आए।
10: हाँ हाँ, महमूद को लेके आना, अपनी बहन को लेके आना, अपने भाई को लेके आना, ठीक है ना। और जानते हो कहानी किस पर हुआ करेगी?
13: हाथी।
10: हाथी। गिलहरी।
13: बिल्ली।
10: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भाई। मैं इन सब की कहानियां तो सुनाऊंगा ही, और साथ में सुनाऊंगा तुम्हें अक्षर की कहानी।
17: क्या बात हुई, क्या बात हुई?
10: ये कौन आ रहा है?
18: नमस्ते भैया।
10: नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ
18: जाओ। तो आज नई कमीज पहनी है।
10: क्या क्या क्या?
18: तुमने आज नई कमीज पहनी है।
10: अरे निशांत, इसका नाम आतुल नहीं, अतुल है।
18: अतुल।
10: अरे वाह अतुल, तुम्हारी कमीज तो बहुत ही सुंदर है।
18: ये मामा जी ने दी है।
10: अच्छा, क्या बात है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे निशांत ने अतुल को आतुल बोला, ऐसे ही अगर हम अमर में अ की जगह आ लगाएं तो क्या बनेगा?
18: अमर।
10: अमर।
18: अमर। अमर।
19: और भैया अकल का हो जाएगा आकल।
10: आकल। वैसे बच्चों, होता है अकल, जैसे अकलमंद। तुम तो सच में बहुत अकलमंद हो।
19: भैया अजब का बन जाएगा आजब।
10: हाँ आजब, शाबाश। बजाओ सी बात को जोरदार तालियां, बजाओ तालियां, शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर मैं आरती में आ की जगह अ लगाऊं तो क्या बनेगा? सोचो सोचो।
18: आरती।
13: आरती।
10: आरती। वाह शाबाश। और अगर मैं अकेला में अ की जगह आ लगाऊं तो क्या बनेगा?
13: अकेला।
10: अकेला। अकेला। तो इसी बात पर बच्चों, हो जाए अक्षर की कहानी। तो अ से अक्षर, अ से
13: अक्षर।
18: भैया मेरी बहन ने छोटे से अनार सिखाया है।
10: अच्छा, और बड़े आ से?
18: बड़े आ से आम।
10: वो आपको समझाने के लिए कहती हैं, छोटा आ बड़ा आ। और वो बच्चों इसलिए क्योंकि हम अगर थोड़ी देर के लिए बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे आ, और अगर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो हम इसको खींचेंगे जैसे आ। तो आ और आ, अ से अनार और आ से आम। इसीलिए तुम्हारी मैडम या तुम्हारे सर तुम्हें समझाने के लिए कहते हैं, छोटे अ से अनार, बड़े आ से आम। होता है लघु स्वर जैसे अ, थोड़ी देर के लिए बोला हमने, और दीर्घ स्वर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे आ। बोलो मेरे पीछे एक साथ, ठीक है? अ आ,
13: आ,
10: आ,
13: आ,
10: आ, आ, आ, आ, आ, आ शाबाश। तो बच्चों हमारी आज की कहानी है अ से अर्जुन और आ से आशा। अ आ,
13: आ, आ, आ।
10: हाँ, आगे समझ में। अ से
13: अर्जुन
10: और आ से
13: आशा।
10: शाबाश। बच्चों दोनों भाई बहन थे, अर्जुन छोटा था, आशा बड़ी थी। दोनों भाई बहन बड़े शरारती थे, दिन भर खेलते रहते इतना खेलते बच्चों, इतना खेलते कि उन्हें खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती थी। हाँ अच्छा, एक बार पता है क्या हुआ?
13: क्या हुआ भैया?
6: क्या हुआ भैया?
10: एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। अच्छा तमाशे वाला कौन होता है, कौन बताए?
19: वो रस्सी पे चलता है भैया।
10: हाँ सही कहा तुमने,
19: जादू भी करता है।
10: हाँ
19: भैया, और वो नए नए खेल दिखाता है।
10: नए नए खेल दिखाता है, क्या बात है। तो एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। आ से आया, आ से आशा और आ से आया, ठीक है। तो बच्चों दोनों तमाशा देखने में इतना खो गए, इतना खो गए कि अचानक जब वर्षा आई तब भी वो बाहर ही खड़े रहे।
19: भैया आ से अचानक।
10: हाँ आ से अचानक।
19: भैया आ से आया,
10: आ से आया और आ से आई।
19: भैया आ से आता,
10: आ से आता। शाबाश, आ से आज। तो सुनो आगे क्या हुआ। तो बच्चों जब बारिश हो रही थी तो उनकी अम्मा ने उन दोनों को आवाज लगाई। अरे बच्चों, अरे आशा और अर्जुन, जल्दी आओ जल्दी, अरे बारिश होने लगी है बेटा, अरे बीमार पड़ जाओगे, भीग जाओगे, जल्दी आ जाओ अंदर। हाँ तो बच्चों आ से आशा, आ से आवाज, आ से आओ और आ से
19: अर्जुन,
10: आ से अर्जुन,
19: आ से अमरूद,
10: आ से अमरूद,
19: आ से अगली,
10: आ से अगली,
19: आ से अजगर,
10: आ से अजगर,
19: अंदर,
10: आ से अंदर,
19: अम्मा
10: और आ से अम्मा। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों अर्जुन और आशा भीग चुके थे, उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। इसी बीच अम्मा ने चूल्हे में आ से आग जलाई और पकाए गर्मा गर्म पराठे।
19: भैया आ से आटा,
10: आ से आटा। शाबाश,
19: आ से आग,
10: आ से आग।
19: भैया अ से अरहर की दाल।
10: अ से अरहर, सही कहा तुमने। और बच्चों साथ ही बनाई अरबी की सब्जी। किसकी सब्जी?
13: अरबी की सब्जी।
19: भैया अ से अरबी।
10: हाँ शाबाश,
13: अ से अम्मा।
10: हाँ अ से अम्मा।
19: अ से अगर,
15: अ से अगरबत्ती,
10: अ से अगरबत्ती, अ से अगर, अ से अजगर, अ से असलम और अ से अम्मा, अ से अरहर और अ से अरबी। और हाँ एक चीज और भी बनाई, बड़ी चटपटी मसालेदार।
13: क्या बनाई?
10: अम्मा ने बनाए चटपटे आलू।
19: भैया मुझे आलू पसंद है।
10: मुझे भी पसंद है भाई चटपटे आलू।
19: भैया मुझे अनार पसंद,
10: अनार पसंद है। अ से अनार। तो अम्मा ने उन्हें अनार भी दिया खाने को और हाँ आम भी दिया। आम किसको पसंद है? वाह सभी को पसंद है ना। तो आ से आम, आ से आलू, अ से अरबी और अ से अरहर,
19: अ से अपनी,
10: अ से अपनी और आ से आँखें, अपनी आँखें।
19: भैया आ से आम का अचार,
10: आ से आम और अ से अचार। तो आम का अचार, वाह क्या बात है, बोलो तालियां जोरदार। तो बच्चों आगे सुनो, अम्मा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और अर्जुन और आशा से कहा, अरे बच्चों, अरे भाई अपने आप ले लो खाना, मैं तो काम में बहुत व्यस्त हूँ, ले लो। हाँ
19: अ से अपने,
10: अ से अपने।
19: भैया आ से आप,
10: आ से आप। शाबाश, अपने आप, वाह क्या बात है अपने आप। तो बच्चों अर्जुन और आशा ने ढेर सारा खाना खाया, उन्हें भूख भी तो लगी थी ना।
13: भैया
19: भैया,
10: अच्छा बच्चों ये बताओ उन्हें खाना कैसा लगा होगा?
13: बहुत अच्छा लगा।
19: अ से अच्छा।
10: शाबाश, अ से अच्छा। तो दोनों कहने लगे, आहा मजा आ गया, आहा अम्मा ने कितना अच्छा कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था, आहा मैंने तो खूब खाया।
18: भैया आ से आहा।
10: बहुत बढ़िया, आ से आहा। हाँ तो इस तरह दोनों बहुत खुश हो गए और उन्होंने अम्मा का धन्यवाद दिया। आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

0: हवा ने सूरज से कहा,
1: मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ।
0: सूरज ने हवा से कहा,
2: मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है।
0: इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा,
1: इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है।

0: सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा,
1: ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत।
0: हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की।

0: आदमी की टोपी उड़ गई।
1: अरे अरे अरे
0: पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा।
1: अरे अरे अरे
0: पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी।

0: सूरज ने कहा,
1: हवा अब तुम मेरी ताकत देखो।

0: सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा,
1: देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट।
0: हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा,
2: मान गई तुम्हारी ताकत को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: जलियांवाला बाग

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
3: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट
4: वापस लो,
2: रॉलेट एक्ट
4: वापस लो,
2: रॉलेट एक्ट
4: वापस लो,
2: रॉलेट एक्ट
4: वापस लो,
2: रॉलेट एक्ट
4: वापस लो।

0: पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।
1: महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय।

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरजन बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। यस,
2: हे यू, कम अप।
3: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: 달리기
1: 예!
2: 파란 마당이
1: 예!
2: 파란 마당이
3: 정말 딸기 삶네 나를 나가는 개수의 맛
2: 파란 마당이
1: 예!
3: 기차다 이네 거리에서 뻥다루 No. 무채 씨 베터 모케 간지다르 카나 호가.
4: 인티자르. 제너럴 다이어 네 오어 자다 인티자르 네히 키야. 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
0: भाइयों और बहनों सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
5: भारत माता की
1: जय।
5: भारत माता की
1: जय।
5: भारत माता की
1: जय।
0: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
5: हमारी मांगे पूरी करो।
0: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
1: रोलेट एक्ट वापस लो।
0: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है। सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
4: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थी और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? I say fire! Fire again!
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और shut up! देख, ये सबक काफी है। About turn! Fire!
0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।

0: Masumların laf çıktı kırdı Masum.
1: Papa.
0: Masum. Masumların laf çıktı.
1: Akar niye? Akar niye? Allah. Ay Allah. Ay ne puttara ne talavi lawe.
2: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे, अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए, अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
3: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
2: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
4: जनरल डार।
5: यस सर।
4: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
5: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
5: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या वार्निंग नहीं दी?
5: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
4: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
5: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
2: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
3: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
6: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानी

0: हुए एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
1: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
2: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
3: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय बोर्ड से उठ गया है, उन्हें आप ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
1: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
0: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: पहली उड़ान में
2: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
3: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
4: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
5: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
4: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
5: हाँ पूछो बेटा।
4: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
5: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
3: लेकिन माँ।
5: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा जोसेफ
4: जी,
5: जरा वो फूंकनी तो देना बेटा।
4: अच्छा माँ, ये लो माँ।
5: ला।
3: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
4: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
5: क्या मिल गया
4: मुझे? माँ माँ माँ,
5: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
4: मुझे मिल गया।
3: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
5: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
4: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
3: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
4: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो।
5: धुआं?
4: हाँ इस कमरे के धुएं को देखो।
5: हाँ?
4: इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ?
5: क्या उड़ रहा है?
4: बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
5: कुछ हाँ? भी तो नहीं।
3: कुछ भी तो नहीं है।
4: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो।
5: हुँ?
4: हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
3: वो तो है मगर
4: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
3: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
4: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं?
3: हाँ
4: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
3: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
4: ठीक है आओ मेरे साथ।
5: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो,
2: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था, दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।

0: अरे
1: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
2: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
3: हाँ भाई भीड़ तो है,
4: लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
2: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
3: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
2: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
5: ना जाते क्या करेंगे?
1: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं
5: सकती। हो गया है।
3: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
2: भाई साहब हट जाइए। आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
3: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
2: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
3: अरे अरे, अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
2: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
3: दोस्त लगता तो कुछ ऐसे ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो हाँ, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
2: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
3: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है।
2: कमाल कर दिया बच्चों ने।
3: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
2: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
3: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
3: अरे जबर, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हो।
2: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
3: अरे देखो, अरे हाँ हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
6: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बत्तख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के,
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने और अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार पुनः मैं आप लोगों, आप सभी का स्वागत करता हूं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टंटिया भील 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारा किसान है उसकी आजीविका सशक्त बने, साथ ही अपने खेतों में हो रहे बदलावों को वो समझ सके और नवीनतम खेती कर सके, साथ ही जो उन्नत खेती है, जो व्यवसाय में जो लाभकारी खेती है, वह खेती हमारा किसान कर सके। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बदलते इस दौर में हमारी प्रकृति, न केवल हमारी प्रकृति में बल्कि हमारे खेतों में, हमारी कृषि भूमि में भी बदलाव दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का किसान जो है वह व्यवसायिक खेती करने लगा है और अधिक से अधिक उपज की आस में हमारा जो किसान है वो अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करता है, जिससे न केवल हमारी मृदा लेकिन हमारी हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन जो है हमारे लिए हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तृत से जानेंगे नाइट्रोजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, साथ ही हम जानेंगे कि हमें इसे अपने खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए आदि महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
6: हूँ आपके साथ मोनालिसा। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुराक है और इसलिए किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसलों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का काफी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसे फसलों के लिए एक दोस्त के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब यही नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो ये हानिकारक भी बन सकता है। यानी कि यही जो नाइट्रोजन है जो दोस्त है वो एक दुश्मन का रूप ले सकता है। तो ऐसे में किसानों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए, क्या और किस तरह के नुकसान इससे हो सकते हैं, चाहे पर्यावरण की बात हो चाहे मानव स्वास्थ्य की बात हो, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श के कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज विचार विमर्श कार्यक्रम का जो विषय है वो है नाइट्रोजन, दोस्त भी दुश्मन भी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तीन प्रधान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार,
7: नमस्कार,
6: और इसके साथ ही डॉक्टर आरती भाटिया,
8: नमस्कार,
6: और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर डीके शर्मा भी मौजूद हैं,
9: नमस्कार।
6: आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
10: नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल की प्रमुख गैस है। वायुमंडल में इसकी हिस्सेदारी 78% है। ये आम तौर पर निष्क्रिय ही रहती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी गैस इसके संपर्क में आती है ये तुरंत सक्रिय होकर इस्तेमाल योग्य नए उत्पाद बना लेती है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजन के उत्पाद हैं। इनका इस्तेमाल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में कच्चे माल के तौर पर होता है। हालांकि फसलों के लिए नाइट्रोजन धारी उर्वरक जरूरी खुराक हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक साबित हो रहा है। इन उर्वरकों का कुछ हिस्सा तो पौधे ले लेते हैं, लेकिन बड़ा भाग वायुमंडल में वापस चला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का कुछ हिस्सा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर भूजल में भी चला जाता है। इस तरह ये उर्वरक भूजल और वायुमंडल दोनों को प्रदूषित कर देते हैं। उर्वरकों के अलावा जलते जीवाश्म ईंधन और उद्योगों से भी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं जो वायु प्रदूषक हैं। दूसरी ओर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। भारत की ही बात करें तो 1991 से 2001 के बीच जहां 52% नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित हुआ था, वहीं 2001 से 2011 के बीच ये मात्रा बढ़कर 69% हो गई। नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर काबू पाने में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है।
4: जी हाँ किसान साथियों, आवश्यकता से अधिक जब हम किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो किसान साथियों, आज का जो हमारा कृषि का जो विषय है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है और इससे क्या लाभ है हमें और क्या इसके हानिकारक और दुष्परिणाम हो सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों की राय।
7: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, जैसा आप समझते हो कि पौधों को अपनी बढ़वार के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ऊपर है वो है नाइट्रोजन। यूरिया का नाम सभी किसान भाई जानते हैं, या नाइट्रोजन के जो दूसरे उर्वरक हैं जैसे डीएपी से भी 18% नाइट्रोजन मिलती है, ये सब बातें आप जानते हैं। आपकी फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है, ये आपकी फसल में कल्ले बढ़ाती है, उसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाती है, वनस्पतिक व्यवहार के लिए बहुत जरूरी होती है, साथ ही साथ ये प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाती है। दूसरे अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो किसान भाई जानते हैं कि पत्तों का रंग पीला हो जाता है, फसल पीली पड़ जाती है, किसानों को चिंता हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें, जो अन्न का उत्पादन हो रहा है, दालों का, तिलहन का, सब तरह का, वहां पे भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। समस्या कब आती है, जब हम इसका ज्यादा उपयोग कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं, उससे काफी कई तरह के इसमें नुकसान होते हैं।
6: बिल्कुल, तो कई नुकसान इससे हो सकते हैं, और जो एक चिंता का सबब बनता चला जा रहा है नाइट्रोजन प्रदूषण जिसे अब कहा जा रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि ये नाइट्रोजन प्रदूषण है क्या और क्या कुछ इसके कारण होते हैं।
8: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अगर हम नाइट्रोजन का अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमारी पृथ्वी मृदा में, जल में, वायु में ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि प्रदूषण जो हमारा जो वातावरण है, चाहे इसमें जल है, वायु है, मिट्टी है, उसमें जब नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनिया की मात्रा एक आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हम उसको नाइट्रोजन प्रदूषण की संज्ञा दे सकते हैं। तो हमको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बताया बहुत आवश्यक है, लेकिन यही महत्वपूर्ण तत्व अगर आवश्यकता से हम अधिक डालेंगे मृदा में तो वो प्रदूषण का रूप धारण कर लेता है।
6: जी बिल्कुल, तो ऐसे में डॉक्टर भाटिया, आज की स्थिति को अगर हम देखना और समझना चाहें तो हमें बताएं कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है भारत में आज, वो कितना है या इस पर?
9: देखिए, आपको अभी डॉक्टर शर्मा ने जैसे बताया कि हम लोग की जो मृदा है, जो पानी है, इसमें हमारा जो मात्रा है नाइट्रोजन की वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका लगातार प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो आप मानेंगे कि जैसे कि पानी में, हमारे भूजल में जो नाइट्रेट है उसकी जो मात्रा है, जो कि मतलब 40 से 45 ppm होनी चाहिए, जब इससे ज्यादा अधिक हो जाती है तो ये हमारे भूजल का प्रदूषण करता है। तो ये सब, जैसे आपने अभी पूछा कि ये जो इनकी मात्राएं हैं, हमारे 2000 से 2011 तक जो हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, जो हवा में पाए गए, उनकी मात्रा में कम से कम 50% तक बढ़ोतरी हुई। और आप मानेंगे अब 2011 से लेके 2020 तक इनकी मात्रा में 70% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो लगातार आप देखिए कि साल पर साल हमारा नाइट्रोजन के प्रदूषण की मात्रा हमारे वायुमंडल में, हमारी पानी में, हमारी मृदा में बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मतलब नाइट्रोजन उर्वरक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नियमित तौर से नहीं कर रहे हैं।
6: बिल्कुल, तो डॉक्टर दिनेश, जब स्थिति ऐसी है कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है ये वायु, जल, मिट्टी सबको प्रदूषित कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह आशंका होती है कि इसका मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर दिनेश
7: जी, मानव स्वास्थ्य पे भी नाइट्रोजन का बुरा असर आ सकता है, क्योंकि जैसे पानी प्रदूषित होता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर, भूमि के अंदर जो जल है, भूजल है, उसमें कई बार नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और ये नाइट्रेट कई तरह के रोग भी इंसानों में कर देता है।
6: जी,
7: और खास करके बच्चों में ये समस्या लाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की आती है। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि सतह पे भी ये सतही जल जो है उसके साथ भी बह के नदियों में मिल जाता है, समंदर में चला जाता है, वहां भी ये समस्याएं पैदा करता है और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता उसको प्रभावित करता
6: बिल्कुल।
7: है।
6: डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि और विस्तार से हमें इसके होने वाले नुकसानों के बारे में बताएं, खासतौर पर अगर मानव स्वास्थ्य की ये बात करें तो कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम का अभी जिक्र किया है, तो किस तरह के लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने की जो समस्या है वो नाइट्रोजन के प्रदूषण से हो रही है?
8: देखिए, जो नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है, जब इसकी मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो ये हानिकारक के स्तर पर आ जाता है। जैसे हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर इसकी मात्रा लगभग 100 के करीब पहुंच गई है, कुछ स्थानों पर देखा गया है। तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, तो हमको इस दिशा में सचेत होने की जरूरत है कि किस तरह से हम भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा को नियंत्रित रखें, कौन कौन सी हम शस्य विधियां अपनाएं ताकि हम नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित कर सकें। जैसे जैसा कि बताया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, अगर बच्चा उस जो प्रदूषित जल है उसका सेवन करता है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, जो उसकी जो ऑक्सीजन संवहन की जो क्षमता है रक्त में वो प्रभावित होती है, इसलिए उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम दिया गया है। जब बच्चा कहते हैं ना नीला पड़ गया बच्चा, तो वो उसी की वजह से होता है। तो इसमें पोषण का विशेष ध्यान रखना है बच्चे का, और ऐसा जल इस्तेमाल करना है जो कि प्रदूषित ना हो। और रही बात यह कि मानव स्वास्थ्य पर जैसा बताया वो होता है, और नाइट्रोजन का ना केवल मानव स्वास्थ्य पर, हमारी मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन की अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मृदा अम्लीकृत हो जाती है। जब मृदा अम्लीकृत हो जाती है तो उसमें ऐसी जो माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, जो वहां के सूक्ष्म जीव है, उनकी आबादी में, उनकी संरचना में परिवर्तन आने लगता है। तो एक बहुत बड़े एक विषय है कि किस तरह से हमको नाइट्रोजन के कारण जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। तो इस सब का हमको ध्यान रखना है, जो असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु हैं हमारी जो मृदा है उनमें परिवर्तन हो सकता है, तो इन सब पे अध्ययन की, विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। इस दिशा में बहुत कार्य किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये मृदा, वायु और मानव स्वास्थ्य को हानिकारक ढंग से प्रभावित करता है।
9: इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी, इसलिए जल का सेवन करते हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहती है, तो उससे हमारे में कैंसर और गोइटर होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत एहतियात हमें बरतना पड़ेगा हमारे नाइट्रोजन के उर्वरकों को, कि भूजल को ये प्रदूषित ना करे, क्योंकि भूजल का इस्तेमाल आप देखिए ना, जगह जगह पे हमारे को सिंचाई के लिए नहीं, इवन पीने के लिए भी इनका, इस जल का प्रयोग किया जाता है।
7: साथ ही इसमें एक बात और है कि जब जरूरत से ज्यादा यूरिया वगैरह हम लगाते हैं जैसे, तो जो नाइट्रेट बनते हैं कुछ तो पानी में चले जाते हैं, कुछ पौधा ले लेता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारी सब्जियां हैं जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है, या और भी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, तो आपको सोच समझ के प्रयोग करना है, क्योंकि ये नाइट्रेट फिर आपकी सब्जी के माध्यम से इंसानों में चला जाता है और उसी तरह के नुकसान कर सकता है जो अभी बताए गए।
11: बिल्कुल। तो डॉक्टर भाटिया हमें ये बताएं कि जैसे कि आप इससे पहले भी हमें बता रही थी कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब 70% तक जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन क्या ये समस्या हमारे देश की ही है या ये एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है? साथ ही जिससे जलवायु परिवर्तन से भी हम सभी जूझ रहे हैं, एक वैश्विक चिंता इसको लेकर के हो गई है, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीजें हैं क्या उसमें भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है, भागीदारी होती है नाइट्रोजन पॉल्यूशन की?
9: जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल पते की बात कही है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, जब हम इसको मृदा में लगाते हैं तो इसमें कुछ तो पौधा, जैसे दिनेश जी ने बताया, ले लेता है, लेकिन कुछ ये जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है हमारी मृदा से, जो कि अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, ये हमारे, जब इसका उत्सर्जन होता है तो ये हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, ये जब जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती है, तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं हमारी धरती पे और फिर विकिरित होती हैं, इन किरणों को, जिनको कि हम IR रेडिएशन बोलते हैं, ये इन किरणों को, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, ये इनको अवशोषित करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे, जैसे जैसे एक जो इसको अवशोषित करने के बाद में, ये धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो कि हमारे वायुमंडल का ये तापमान बढ़ाती हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हम जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसके लिए सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर ये ही गैसें जो है, नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका एक जो कण है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 300 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे औद्योगिक धंधे हैं, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे ज्यादातर इसका उत्सर्जन होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारी धरती से, कृषि के क्षेत्रों से निकलती है, क्योंकि जहां नाइट्रोजन का प्रयोग होता है उस जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ही होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, 1 और 300, तो इतना ज्यादा गुना उसकी क्षमता है वायुमंडल में गर्मी पैदा करने की
11: जी, यानी कि भागीदारी भी इसकी सबसे ज्यादा है। और जो प्रदूषण का स्तर है जैसा कि बढ़ रहा है डॉक्टर दिनेश, और उसमें हम देखते हैं कि जो कृषि का योगदान है नाइट्रोजन प्रदूषण में वो सबसे ज्यादा है। बाकी भी कुछ और क्षेत्र हैं जिनका जिनकी भागीदारी इसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कृषि का ही आता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर पर जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है इसका। तो ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए कि ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी रोकथाम हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
7: बिल्कुल, जो यूरिया है या नाइट्रोजन है इसका बहुत से राज्यों में हमारे बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही असंतुलित प्रयोग हो रहा है। मोटे तौर पे ये बताया जाता है कि 4:2:1 के अनुपात में उर्वरकों का नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशधारी जो उर्वरक हैं इनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बहुत ही असंतुलन हो गया है हमारे नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश का, यानी फास्फोरस और पोटाश की तुलना में नाइट्रोजन का कई गुना प्रयोग किसान भाई कर रहे हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में ये अनुपात जो है लगभग 22:24:9:1 हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज हो रही है, फास्फोरस पोटाश का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, नाइट्रोजन से आपकी फसल गिर सकती है, जरूरत से ज्यादा उसकी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटाश पौधों को हमारे मजबूती देते हैं, एक तरह की ताकत देते हैं उसको, जिससे पौधा सीधा खड़ा रह सके। इसी तरह से कीड़े मकोड़े बीमारी फिर ज्यादा आती है नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग करने से, जिससे आपको फिर पीड़कनाशियों का, रसायनों का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है, यानी ये समस्या है। इसमें आपको नाइट्रोजन पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसको आप कम करके फास्फोरस और पोटाश भी डालें, साथ ही साथ जिंक है या सल्फर है, गंधक आजकल बहुत जगह जरूरत पड़ रही है, तो इन सब तत्वों का आपको संतुलित प्रयोग करना है, जिससे कि नाइट्रोजन के कुप्रभावों से आप बच सकें और संतुलित 4:2:1 मोटे तौर पर जैसे किसान भाई जानते हैं संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें।
11: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, क्या आप भी कोई सुझाव देना चाहेंगे विवेकपूर्ण इस्तेमाल करे किसान यूरिया का, इसके लिए अब क्या उन्हें करना चाहिए?
8: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि हमको 4:2:1 के अनुपात में इनको डालना है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स है, हरी खाद है, उनका प्रयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम हरी खाद या ऑर्गेनिक इनपुट्स या जो हमारे घूरे की खाद जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट है, उससे क्या करते हैं कि हम मृदा में कार्बन के स्तर को बरकरार रख सकते हैं। हम कहते हैं कि कार्बन इज द लॉर्ड ऑफ द रिंग, यानी कि अगर आपकी मृदा में कार्बन व्यवस्थित है तो बहुत सारे तत्वों का चक्रीकरण अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। तो कार्बन इनपुट बहुत जरूरी है, मतलब इनके सही ढंग से काम करने के लिए। तो कार्बनिक पदार्थों का चक्रीकरण मृदा में होना चाहिए, हरी खाद का हम प्रयोग करें, तो इस तरीके से हम। और एक दूसरी बड़ी बात है कि जो हम सीवेज स्लज इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसको जो हमारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हमको यूरिया की खपत आधी करनी है, तो वो किस तरह से होगी, वो इस तरह से आदि होगी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जो हमारे जो कार्बनिक खादे हैं, जो हरी खादे हैं, ये जो सीवेज स्लज है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका हम समन्वित ढंग से अपनी खेती में इस्तेमाल करें तो हम इसको काफी हद तक हल कर सकते हैं।
4: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना, अगर हम नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार अगर हमारे खेतों में हम प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से हमारे खेतों में इसे ना डालें, तो कहीं ना कहीं हम इसका जो दुष्परिणाम है इसे हम बच सकते हैं और हमारे खेतों की मृदा को, हमारे जल के स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नाइट्रोजन क्या हमारे लिए यह दुश्मन है या हमारा मित्र है, तो कैसे हमें नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके कैसे हम जो हमारे मिट्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो हमारी भूमि है वो जो ठोस बन रही है उससे भी हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो आइए इसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे एक्सपर्ट की मदद से।
1: आने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है
2: जी,
1: वो उसमें से यूरिया जो है जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा लगता है या सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आप कोई भी 80% तक हमारा यूरिया का ही उपयोग होता है
2: जी।
1: तो जो ये हमारा रासायनिक उर्वरक है ये 80% तक जिम्मेवार है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम ना करते हुए, अगर हम कम नहीं कर पाते तो उसका सही तरह से हम उपयोग करें। तो जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि भाई हमें उर्वरक को जैसे 4-2-2 की मात्रा में उसको लगाना है, लेकिन आप ये देखिए जो 4 भाग नाइट्रोजन के लगाने हैं वो हम इकट्ठा ना लगाएं, वो हम उसको बांट के स्प्लिट एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं कि भाई सही समय पे सही अनुपात में हमें उर्वरक लगाना है। उसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं एक बड़ा एक ये छोटा सा यंत्र है जो कि जिसको कि हम बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, ये बहुत ही सस्ता सा कुल मिला के 50 से 100 रुपए तक की इसकी मूल्य है। तो इसका प्रयोग करते हुए अगर आप नाइट्रोजन के उर्वरक को लगाएंगे तो इसमें क्या है आप देखेंगे, इसमें कई तरह के आपके जो हरे रंग के वो है माप
2: पट्टियां
1: बनी है। तो आप ये देखिएगा कि ना आपको जैसे ये है ये वाली जो बीच की पट्टी है, तो अगर इससे एक तरफ हल्की है एक तरफ गहरी है, तो आपको अपने पौधे के ऊपर की तीसरी पत्ती आप लेंगे और आप इसके साथ में पत्ती का मिलाव करेंगे तो आपको पता लग जाएगा अगर पत्ती का रंग हल्की तरफ आ रहा है या गहरी तरफ आ रहा है। अगर गहरी तरफ आ रहा है इसका मतलब आपको उर्वरक नहीं लगाना, और अगर हल्की तरफ आ रहा है पीलेपन में आ रहा है उसका हरा रंग कम आ रहा है तब आप अपना उर्वरक का जो एक भाग है, जैसे कि आपने अगर 100 किलो उर्वरक लगाना है तो आप इकट्ठा एक ही टाइम पे उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाग करके लगाएंगे, अगर 25 किलो 50 किलो एक टाइम पे लगाएंगे तो उससे क्या है पौधा को सही मात्रा में ले पाएगा और जो हमारे उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण में जा रहा है, जो हमारा भूजल में जा रहा है, उसमें हम काफी कमी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे कि आपको पता लग सकता है कि भाई वाकई में हमारे को उर्वरक लगाने की आवश्यकता है या नहीं। ये मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इसके हिसाब से आप अपने 8-10 पौधों को मिलाव करके देख लीजिए, और अगर आपको पता लगता है कि ज्यादातर इसकी वजह इसका जो रंग है वो की साइड पे है हल्का हरा है तब तो आप डेफिनेटली उर्वरक लगाइए, लेकिन अगर बीच के पट्टे से दाएं तरफ है तो ज्यादा गहरे में है तब इसका मतलब आपके पौधे को उर्वरक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उर्वरक को 1 हफ्ते या 5-7 दिन के लिए टाल सकते हैं। तो इससे आपका उर्वरक की मात्रा में भी कमी आएगी और जो हमारा ये जो प्रदूषण जो बताया है इसमें बिल्कुल बहुत सुधार होगा
2: बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, जैसा कि हम देखते हैं आपने भी बताया कि जो हमारे किसान है वो जरूरत से ज्यादा उर्वरक जो है यानी कि मात्रा में वो काफी ज्यादा डाल देते हैं अक्सर, कहना ये भी रहता है कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है वो भी एक समस्या है, और ऐसे में उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा अगर हम मात्रा में डालेंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा। तो पहले तो हमें ये बताएं कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है उसके क्या कारण होते हैं और कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है।
3: देखिए, जैसे किसान भाई यूरिया का या नाइट्रोजन धारी किसी भी उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले वो पौधे के काम आता है, कुछ हिस्सा पौधा ले लेता है, बाकी खास करके नाइट्रोजन इसका नुकसान एक तो वाष्पीकरण से हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन होता है, अमोनिया बन के ऊपर उड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक बहुत तेज बारिश आ गई तो यूरिया धुल के आपका नीचे चला जाता है जमीन में, या नाइट्रेट बनते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और धान के केस में तो ये नाइट्रेट जो है विनाइट्रीकरण होके ये हवा में चले जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, बार बार चर्चा हो रही है इसकी, नाइट्रोजन गैस के रूप में भी ये उड़ जाते हैं। तो ऐसे करके यूरिया का नुकसान हो जाता है और इस फसल में आपने डाला तो इसी फसल में यूरिया लगभग समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो उपयोग क्षमता है वो कम हो जाती है। मोटे तौर पर नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता 30-40% है, इसके आसपास है, यानी जो बाकी 60% हिस्सा है इसका वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में चला जाता है, चाहे पानी में जाए चाहे हवा में जाए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और इसी दिशा में जो है वो सरकार ने भी प्रयास किए हैं, आगे भी कर रही है और किसानों
2: नीम लिखित यूरिया का जो इस्तेमाल है जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि किस तरह से जो नीम लिखित यूरिया है वो इस समस्या का निदान साबित हो सकता है।
4: जी, जैसा सबसे बड़ी बात बताई दिनेश जी ने कि हम लगभग 30-40% हमारा जो नाइट्रोजन है इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी जो लगभग 60% है वो वायुमंडल में चला जाता है, चाहे वो अमोनिया के फॉर्म में है चाहे नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में है नाइट्रेट के रूप में। तो इस सब क्षति को रोकने के लिए भारत सरकार की एक ने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको नीम लेपित कर सकें ताकि वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन का काम करता है और उसकी वजह से जो उसका जो विघटन है वो कम होता है और वो लंबे समय तक पौधों को उपलब्ध हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहल है भारत सरकार की और जिसकी वजह से बहुत से हमारी जो यूरिया की बचत होगी और हमारा पर्यावरण संतुलित रह पाएगा।
2: बिल्कुल,
1: इसी में मैं बताना चाहूंगी कि अब जो हमारा बैग है यूरिया का वो 50 किलो की जगह पे 45 किलो का हो गया है। तो नीम लिपित यूरिया कम से कम आप देखिए ना 50 और 45, 10% तक हमारे उर्वरक की बचत इसके कारण किसान भाइयों के लिए वैसे ही हो रही है और आप देखिए आपकी उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है। तो ये तो हमारी सरकार का एक बहुत ही बढ़िया ये
2: कदम उठाया गया है। तो किसान की जो लागत है वो भी कम हो रही है और इसका जो बेहतर इस्तेमाल हो रहा है इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। तो ये दोहरा फायदा है किसानों के सामने अगर वो नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दिनेश, इसके अलावा और कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए जो नाइट्रोजन की भरपाई है उसे फसलों में करने के लिए? जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में भी हमें बताइए।
3: जी बिल्कुल, जैसे नाइट्रोजन है ये हमारे कई स्रोत हैं इसके, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, यूरिया है, एनपीके फर्टिलाइजर आ रहे हैं आजकल 17-17-17, 19-19-19 तमाम तरह के आ रहे हैं। इसी तरीके से अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया था कि जो हमारे जैविक खाद है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, ये सब साथ ही साथ इनके अलावा जो जैव उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन बनाने का काम करते हैं एक तरह से, राइजोबियम है या दूसरा आपका एजोटोबैक्टर है, एजोटोमोनास है, इन सारों का भी टीके किसान भाइयों को लगाने चाहिए। यानी संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है पहली, ये अलग बात है, और दूसरा जो हमारे पोषक तत्व के अलग अलग स्रोत हैं, जैविक स्रोत, रासायनिक स्रोत और आपके जैव उर्वरक, इनका सही सामंजस्य आपको बिठाना है। जहां तक आपके रासायनिक उर्वरकों की बात है तो इसमें समय की बात तो हमने बता दी कि भाई कब इसको लगाना चाहिए, लीफ कलर का चार्ट प्रयोग काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं स्रोत की, इसमें भी क्या होता है कि जैसे धान के केस में यूरिया के मुकाबले अमोनियम सल्फेट ज्यादा फायदा करता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर आता है वो भी काफी फायदा करता है। अभी अभी हाल में कुछ कंपनी बना रही है यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, ये द्रव फॉर्म में होता है, ये भी काफी अच्छा स्रोत है। यानी जो स्रोत होते हैं उनमें भी हमें विविधीकरण करना है, खाली यूरिया पर निर्भर ना रहे। एनपीके फर्टिलाइजर है, एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग आप करें तो साथ में फास्फोरस और पोटाश भी चली जाती है। इसी तरीके से जो मेथड है लगाने का, जो तरीका है, उसमें भी हमें परिवर्तन लाने हैं। जैसे यूरिया का छिड़काव करके हम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं, कुछ किसान भाई डीएपी को छिड़कते हैं, साथ ही साथ एनपीके फर्टिलाइजर को भी छिड़का जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिप सिस्टम से जो फर्टिगेशन सिस्टम है उसको अपना के भी हम उर्वरकों की क्षमता बढ़ा सकते हैं।
2: बिल्कुल, ड्रिप सिस्टम की यहाँ पर आपने बात की है, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी इस पर और थोड़े विस्तार से किसानों को बताएं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल वो अपनी खेती में कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश
3: जी बिल्कुल, आजकल ड्रिप सिस्टम खास करके जहाँ पे पानी की कमी है और पानी भी हमें बचाना है और उर्वरक भी बचाना है
2: जी।
3: तो ऐसी दशा में सरकार भी काफी मदद कर रही है ड्रिप सिस्टम लगाने का, सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं, इसमें आप फर्टिलाइजर का अटैचमेंट लगा सकते हैं और जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर हैं, जल में विलेय फर्टिलाइजर हैं, उनका आप बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से ड्रिप सिस्टम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई कर भी रहे हैं, समझते भी हैं, और निश्चित तौर पे पानी की बचत के अलावा इससे आपके उर्वरकों की बचत होगी और नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है उसमें भी आपके कमी आएगी फर्टिगेशन।
2: डॉक्टर शर्मा, जैव उर्वरकों की हम बात कर रहे थे, इससे पहले मैं चाहूंगी और विस्तार से बताएं किस किस प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं, राइजोबियम, एजोला जैसे कई विकल्प उनके पास है और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हमें
4: बताएं। जो जैव उर्वरक हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं। जैसा कि बहुत सारी जो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो अघुलनशील अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या करता है, जो फॉस्फेट है उसको सोल्युबल, उसको विलेय अवस्था में पौधे को उपलब्ध करा देता है। ऐसे ही एजोटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि मृदा में उपस्थित होने के कारण जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपस्थित करा देते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, इनके उसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। ना केवल वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, वो कई बार डिजीज जो हमारी जो जड़ों में रोग लगते हैं उसको भी एक हद तक नियंत्रण करने में योगदान देते हैं। तो अभी हमारी सरकार भी और बहुत सारे शोध संस्थान इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमको जो जैव उर्वरक है अपनी खेती में उनको इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ताकि हम केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर ना रहे, उससे हम 15-20% इवन 25% तक हम रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर सकते हैं।
2: जी डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगी, जैसे अगर फलीदार फसल किसी ने लगाई है या अनाज किसी ने लगाया है तो किस तरह के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, कुछ और विस्तार से उन्हें बताएं।
1: ये जैसे कि जो आपकी ये फलीदार फसलें हैं इनको तो वैसे आप देखिए कि इनको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें तो अगर आप जैव उर्वरक की थोड़ी सी मात्रा भी जो सीड का ट्रीटमेंट करके राइजोबियम के साथ में सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीज का ट्रीटमेंट करके अगर हम इसकी बुआई कर देते हैं तो केवल 10-20 किलो का ही अगर हम उर्वरक इसमें लगाएंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके बाद एक और फायदा इसका रहेगा वो ये होगा जो कि ना जब देखिए कि अगर जो जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उन लोगों के इन जीवाणुओं में ये भी क्षमता होती है कि जो ड्राउट जो कि कह रहे हैं ना सूखा जब मॉइस्चर की कमी या नमी की कमी हमारी मृदा में रहती है तो उसको भी किस तरह से भरपाई कर सके, तो ये भी इसका जो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है जो पौधे में थोड़ा सा विचलित हो पड़ते हैं पौधे उसको ओवरकम करने में ये जो हमारे सूक्ष्म जो कीटाणु है ये बहुत इनका बड़ा योगदान है। तो आजकल जलवायु परिवर्तन के टाइम पे जबकि आपका सूखा जो और जो बाढ़ टाइप की और ऐसे मतलब जो ज्यादा गर्मी हो रही है तो ऐसे में ये मतलब रासायनिक उर्वरण के साथ ये जैव हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको जो ये वायुमंडल के कष्ट हैं इनको निवारण करने में आपकी क्षमता, किसान भाइयों आपकी क्षमता में सुधार होगा।
2: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, ये बताएं कि क्या फसल चक्र में भी किसी तरह का बदलाव करके किसान अत्यधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच सकते हैं?
3: फसल चक्रों का अपनाना बहुत जरूरी है और खास करके पोषक तत्व प्रबंधन में फसल चक्रों का विशेष योगदान होता है। अगर हम एक ही तरह की फसलें लगातार लेते रहते हैं, जैसे आपके अनाज वाली फसलें धान गेहूं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की एक खास परत से ही पोषक तत्व लिए जाते हैं और उस परत के अलावा नीचे जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टी में उनका प्रयोग नहीं हो पाता। नाइट्रोजन अपनी जगह जहां किसान भाई डालते हैं खिसक के थोड़ा नीचे चली जाती है। अगर हम फसल चक्र में अलग अलग गहराई की जो जड़ें हैं जिनकी अलग अलग गहराई होती है जड़ों की, उस तरह की फसलों का चक्रण करें तो पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल होता है। दूसरे जो हमारे फसल चक्र हैं इनमें हमें दलहनी फसलों का समावेश करना बहुत जरूरी है।
2: जी,
3: तो दलहनी फसलों के समावेश करने से आपकी जो यूरिया की जरूरत है और जो नाइट्रोजन की जरूरत है उसमें निश्चित तौर पर कमी लाई जा सकती है। जैसे धान से पहले धान काट बोने के पहले अगर आप उसमें दलहनी फसल ले लेते हैं गर्मियों में, जैसे मूंग की फसल है या हरी खाद ले लेते हैं, तो फिर धान में आपको लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कम डालनी पड़ेगी, यानी आपको लगभग आधी नाइट्रोजन आपकी पहले से ही बचत हो जाती है। तो फसल चक्रों का विशेष महत्व है आपके नाइट्रोजन बचाने में और इसकी उपयोग क्षमता बढ़ाने में भी बहुत योगदान है।
2: बिल्कुल,
1: जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि आप दलहनी फसलें लीजिए, तो जैसे कि आप धान से पहले दलहनी फसल फसल ले रहे हैं, तो ये पाया गया है कि उसका जो आपको मतलब उसका नाइट्रोजन का प्रभाव धान में तो मिलेगा मिलेगा, उसके बाद अब जब गेहूं की फसल लेंगे तो तब भी आपको, जैसे कि इन्होंने बताया ना कि

0: दिशा में सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास हो रहे हैं?
1: देखिए, जैसा बताया कि हम अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं या दलहनी फसल लगाते हैं तो दिनेश जी ने बताया कि लगभग 60 किलो हम यूरिया की बचत कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर।
0: जी जी।
1: तो 60 किलो यूरिया का मतलब है कि हम कितनी पर्यावरणीय क्षति को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरक बनाने में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हम एक तरह से पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, जो पारिस्थितिक सेवा है जिसको हम इको सिस्टम सर्विसेज कहते हैं वो हम कर रहे हैं। अगर हम हरी खाद और दलहनी फसलें, जो दलहनी फसलों का मुख्य कार्य है, मतलब एक यह है कि वो पर्यावरण की अमूर्त रूप से सेवा कर रहे हैं अगर हम देखें
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: तो इसी तरह से अगर हम भारत सरकार की नीतियों की बात करें तो सबसे बड़ी नीति है सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि हम लोग अपने शरीर की जांच कराते हैं, हमको पता है हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा शुगर लेवल कितना है, हमारे कोलेस्ट्रॉल कितने हैं। तो ये सब चीज ध्यान में रख के हमको अपनी धरती माता की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन है, जिंक है, उन सबका अगर हमको ज्ञान रहेगा तो हम उनको समुचित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि हमारी जो मृदा है उसमें ऑलरेडी 200 किलो नाइट्रोजन है या इसमें इतना ऑलरेडी फास्फोरस है, इतना पोटेशियम है, इतने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो हम न केवल अपनी जो हमारी लागत है उसको कम कर पाएंगे बल्कि हम प्रदूषण को भी काफी हद तक हल कर सकते हैं। तो जो सॉयल हेल्थ कार्ड है एक बहुत अच्छी स्कीम है और वो सभी किसानों को मुहैया कराया जा रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए। और दूसरी स्कीम यह है कि किस तरह से नीम लेपित यूरिया की हम बात कर रहे हैं, नीम लेपित यूरिया के माध्यम से हम जो नाइट्रिफिकेशन लॉसेज हैं, जो हमारे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और जो उसकी जो हम नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण कदम हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमको अपनी यूरिया की खपत को 2022 तक कम करना है। और दूसरी चुनौती ये है कि अपनी खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपनी खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखना है और अपनी यूरिया की मात्रा को आधा करना है।
0: जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है। और जो जैविक खेती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी भूमिका, और इसमें काफी फायदा होता है। डॉक्टर दिनेश जानना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती है वो किस तरह से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसके सुधार में एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करती है, और किसान का हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान भी बहुत ज्यादा इस ओर बढ़ने भी लगा है।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि बात हुई अभी कि भारत सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो पहला जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड करना है, दूसरा यूरिया आ गया नीम लेपित यूरिया, तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से हम यूरिया का प्रयोग बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से, क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि जैविक खेती अपनाने पर हमें रासायनिक उर्वरकों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा, ना उसमें नाइट्रेट पोल्यूशन की समस्या आएगी, ना उसमें हमारे पेस्टिसाइड आएंगे। तो काफी हद तक जैविक खेती सभी तरीके के जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है उनमें कमी ला सकती है, और विशेषकर जो मृदा का स्वास्थ्य है उसमें तो ये बहुत बढ़ोतरी लाती है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें हम जैविक शोर डालते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब डालते हैं। लेकिन साथ साथ आजकल हम फसल अवशेष भी डालते हैं अपनी जैविक खेती में, जिनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
3: किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज कर हूँ बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टैंटिया भील 90.8 FM। हम लगातार नाइट्रोजन के लाभ और हानि के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हमें और कितना प्रयोग करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप एक्सपर्ट की मदद से, एक्सपर्ट की राय से हम इन महत्वपूर्ण जानकारियों को ले रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे गेहूं की कटाई हो जाती है उसके बाद जो उसका जो अवशेष बच जाता है, साथ ही हम धान की भी कटाई करते हैं उसका भी अवशेष बच जाता है तो अधिकतर किसान क्या करते हैं उसे जला देते हैं, तो क्या यह हमारे लिए उचित है, हमारे खेतों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या यह उचित है? आइए जानते हैं और यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: उसे जला देते हैं और वहां पर जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ाने में बल्कि और ज्यादा ये काम आता है, लेकिन इसका आप बता रहे हैं कि बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर भाटिया यहां पर हमें और विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये जो फसल अवशेष है इसका हम बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, उसको उससे प्रदूषण न करके बल्कि मिट्टी की सेहत को ही और बेहतर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
2: जी हाँ, बिल्कुल दिनेश जी ने सही बोला कि ये जो फसल अवशेष है, ये देखिए फसल अवशेषों में आपका नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो ना हमारा कुछ तो हमारे जो उसमें चला जाता है, जो हम काट लेते हैं जो हिस्सा बचता है उसके अंदर आपको नीचे का हिस्सा तो मिल जाता है लेकिन ऊपर का हिस्सा जो हम काट लेते हैं और उसको जला लेते हैं जिसको कि आपने पराली कहा, तो मैं किसान भाइयों से गुजारिश है कि पराली बिल्कुल ना जलाएं क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण तो हो ही रहा है बहुत हद तक, लेकिन आप अपना जो कीमती जो है पैसा उसको मतलब बचा सकते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन या तो आप इसका कंपोस्ट बना लें और आप अपने खेतों में लगाएं। अगर कंपोस्ट नहीं भी बना सकते तो आप इसको बिना जुताई की खेती करिए और इसको आप जो पराली है अपने ही खेतों में छोड़ दीजिए और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपका ये जैसे जैसे ये मृदा में मिलता जाएगा तो आपका नाइट्रोजन जो है वो आपके पौधों को मिलता जाएगा, तो आप बहुत हद तक 25-30% तक अपना नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं अगर आप ये पराली को अपने खेतों में छोड़ के ही जो आप जैसे सीधी बिजाई कीजिए और या फिर आप जो जीरो टिल जो हैप्पी सीडर वगैरह से आप अपनी जो जो बिजाई करेंगे तो उसमें ये एक चीज और है कि खाली प्रदूषण ही नहीं कम होगा, आप अगर फसल अवशेष आपके उस पे मृदा पे है तो आपको एक सिंचाई में भी कई बार फायदा हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है फसल अवशेषों की वजह से एक नमी बनी रहती है तो आपके मिट्टी में वो नमी रहती है तो आप अपनी सिंचाई भी बचा सकते हैं, तो दोनों तरफ से ये फायदेमंद है, तो इससे आपका नाइट्रोजन का उर्वरक की जो उपयोगिता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल, इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी और नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं जिनके बारे में
3: आप सुन रहे हैं। झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नाइट्रोजन दोस्त भी दुश्मन भी, और इस विषय पर चर्चा हमने की है कि किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं कई प्रकार के, और कैसे इस नुकसान को कम करने के लिए खेती के तौर तरीकों में किसानों को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो कई तरह के नुकसानों की चर्चा हुई है। लेकिन डॉक्टर शर्मा, इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैव विविधता का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है, क्या जो नाइट्रोजन दूषण है इसकी भी भागीदारी है जैव विविधता के खतरे को लेकर, और ऐसे में इन समस्याओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी, जो जैव विविधता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखें, हम हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं
2: जी।
4: तो इस बार जो जैव विविधता का जो ध्येय वाक्य था, उसका थीम था अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में है
2: जी।
4: जो इस बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसका भी जो ध्येय वाक्य था सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जैव विविधता के ऊपर भारत सरकार ने कानून भी बनाया है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया है। तो अगर हम देखें, अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है पर्यावरण में, तो उससे जैव विविधता पर क्या फर्क पड़ता है? तो दूसरी एक सबसे बड़ा होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे संवेदी वनस्पतियां होती हैं, संवेदी जीव जंतु होते हैं जो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा को सहन नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनकी आबादी, उनकी संख्या कम होती जाती है। एक शोध के मुताबिक देखा गया कैलिफोर्निया में कि जब नाइट्रोजन का स्तर बढ़ा तो वहां पे जो प्राकृतिक वनस्पतियां 70% तक कम हो गई। वहीं ये तो बात हुई, दूसरी बात होती है अगर नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यानी कि सुपोषण जिसको हम बोलते हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उसकी भी जैव विविधता पर खतरा मंडराता है। और तीसरी बात यह है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ सकता है। तो अगर हम ज्यादा जिस तरह से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, तो न केवल हमारे स्थलीय जीव, जलीय जीव एवं माइक्रोब्स जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जो कृषि के लिए मित्र हैं, उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो जैव विविधता एक बहुत ही संवेदनशील इशू है और इस पर हमको देखना है, इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है कि नाइट्रोजन, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन किस प्रकार जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है।
2: बिल्कुल, तो जैव विविधता एक संवेदनशील मुद्दा है और इसी के साथ इससे जुड़े हुए हैं पर्यावरण से जुड़े ये तमाम पहलू, जिसमें कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो भी शामिल है। तो ऐसे में इससे जुड़ी जो चिंताएं हैं सिर्फ भारत की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंताएं की जा रही है। और खासतौर पर नाइट्रोजन प्रदूषण की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब एक जिसका नाम है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और भी विस्तार से हम जाने। डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में हमें बताइए।
5: दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब, ये जो है एक कार्यक्रम है जो कि यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन जो ये इसके लिए अनुदान दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें 50 जो अनुसंधान केंद्र हैं वो जुड़े हुए हैं। और आप ये देखिएगा कि इसमें से 18 अनुसंधान केंद्र भारत के हैं। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के हर पहलू को, कृषि का पहलू है, इसके अलावा इसमें जो आपके जो वन क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से बढ़ती नाइट्रोजन की मात्रा उनको भी नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे जलीय जो कोरल रीफ्स हैं, तो हर पहलू नाइट्रोजन का, जहां जहां नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है, ये सब इसके अंदर इस पे अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन प्रमुख जो है वो जो 8 हमारे देश हैं साउथ एशिया के, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, तो और ये सारे हमारे 8 जो दक्षिण एशियाई कंट्री जो देश हैं, इनके ऊपर ज्यादातर इनमें इनके रिसर्च की जाएगी कि किस तरह से हम अपनी कृषि को बेहतर बना सके, कम उर्वरक में ज्यादा पैदावार ले सके। तो इसके लिए कौन से तरीके, कौन से हमें जो उर्वरक अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखें और प्रदूषण की मात्रा भी कम करें और पैदावार को भी बढ़ा सके। तो एक आप बोलिए एक लाभदायक कृषि, जो प्रॉफिटेबल कहते हैं ना, लाभदायक कृषि लेकिन स्वच्छ कृषि, तो ये दोनों इसके बहुत बड़े पहलू हैं दक्षिण एशिया नाइट्रोजन हब के।
2: डॉक्टर शर्मा को जोड़ना चाह रहे हैं
4: इसमें, जैसा कि भटिया जी ने बताया कि 22 अक्टूबर को कोलंबो में एक कोलंबो घोषणा की गई, उसमें जो जैसा कि बताया साउथ एशियन कंट्रीज और भी बहुत सारे देश पूरे विश्व के, तो उन्होंने स्वतः स्फूर्त ढंग से घोषणा की कि भाई हम नाइट्रोजन की खपत को खेती में किस बार कम करेंगे। और ये जो नाइट्रोजन का मुद्दा है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग SANH के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से एक नाइट्रोजन डिक्लेरेशन, एक कोलंबो डिक्लेरेशन की नाम दिया गया उसको, कि भाई सारे देश अपने स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने आप को कहेंगे कि भाई हमको इस क्षेत्र में नाइट्रोजन का ये उपयोग कम करना है।
2: बिल्कुल,
1: डॉक्टर दिनेश, विस्तार से हमने चर्चा की है आज की किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका जो इस्तेमाल है वो नुकसान पहुंचा सकता है पर्यावरण को, और इसका किस तरह से इसे कम करने के लिए खेती के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, और इसके लिए जो प्रयास है वो केवल हमारे भारत देश में ही नहीं हो रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में आपको किस तरह की चुनौतियां सामने आती हुई दिख रही हैं और कैसे इन चुनौतियों का सामना किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में?
6: जी बिल्कुल, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना जी। और साथ साथ नाइट्रोजन का प्रयोग हमें कम करना है, तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना एक बहुत गंभीर चुनौती है कि किस हद तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को उर्वरकों द्वारा कम कर सकते हैं जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की भी मांग या खाद्य पदार्थों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और उधर हम बहुत ज्यादा मान लो उर्वरकों की कमी कर दें तो वो बहुत मुश्किल होगी उसकी प्राप्ति। तो इस लेवल तक, इस स्तर तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को कम करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित ना हो। लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो भी हम नाइट्रोजन के उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस क्षमता के साथ करें, दक्षता के साथ करें कि प्रदूषण भी कम हो, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे और नाइट्रोजन के जो प्रदूषण है इसमें भी हमें कमी लानी है। इस दिशा में मोटे तौर पे किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग करना होगा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना होगा और सही समय पे सही मात्रा में सही दर से और सही विधि से उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें फर्टिगेशन का विशेष महत्व है, स्प्लिट एप्लीकेशन, नई नई विधियां आ रही हैं उनका प्रयोग करके, और साथ साथ आजकल कुछ किस्में भी विकसित की जा रही हैं जो कम नाइट्रोजन की दशा में अच्छी पैदावार दे सकती हैं।
0: जी हाँ किसान साथियों, हमें आवश्यकता अनुसार उसकी मात्रा में हमें अति नहीं करनी है, आवश्यकता के अनुसार ही हमें रसायनों का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी फसल मिल सकती है, साथ ही अपना पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, हमारी मृदा को बचा सकते हैं और हमारे जल स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे हमें जरूरत है एक मापदंड का इस्तेमाल करके हमारे खेतों में प्रयोग करने की। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टैंकाविल 90.8 एफएम के साथ।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग।

0: गीतों के संग, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जिनकी जिंदगी खुद एक कहानी होती है। आज हमारे साथ हैं जयपुर की एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। 73 इयर्स की उम्र में भी वो क्लासरूम में उतनी ही एनर्जी, उतने ही पैशन और उतने ही डेडिकेशन के साथ खड़ी रहने वाली एक एजुकेशनिस्ट हैं। फाउंडर प्रिंसिपल, मेंटर और हजारों बच्चों के फ्यूचर की एक आर्किटेक्ट, मिसेस नमिता गीर जी। तो चलिए जानते हैं नमिता जी को थोड़ा और सुनते हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग नमिता गीर जी के साथ। तो नमिता गीर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तनुषा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ होने से।
0: जी मैम, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं और हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपके लिए कि आप इतने एक्सपीरियंस से जो आप हेल करते हैं उसके बावजूद आपने हमें आपका समय दिया और आपने ये समय निकाला एसएन रेडियो के साथ इंटरव्यू के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स।
0: जी तो चलिए शुरू करते हैं मैम। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका ये जो 50 इयर्स का, लाइक 5 डेकेड्स का जो एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में, इतनी जनरेशंस आपके अंडर ग्रो हुई हैं, उनको आपने देखा है आपके सामने, लाइक यू नो वो सीड सो हुआ, वो कैसे यू नो ब्रांच आउट हुआ, कैसे वो पहले शर्ब बना फिर वो ट्री में कन्वर्ट हुआ, तो इट मस्ट हैव बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी टू विटनेस इतने सारे बच्चों की जर्नी ओवर द कोर्स ऑफ 50 लॉन्ग ईयर्स। तो जब आप आज जब हम बात कर रहे हैं तो कभी एक मोमेंट आता है, आई एम श्योर ऐसे मोमेंट्स आते होंगे जब आप खुद के साथ बैठते होंगे और ये सोचते होंगे कि ये सफर किस तरह से शुरू हुआ था और कहाँ आपकी जर्नी शुरू हुई थी और आज आपको वो मोमेंट्स किस तरह से सुकून देते हैं, किस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं जब आप मुड़ के देखते हैं अपने इस ग्लोरियस सफर को।
1: जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे पैशन था शुरू से पढ़ाने का, बच्चे मुझे बहुत पसंद थे, फिर धीरे धीरे वो इतना ज्यादा लगाव हो गया बच्चों से कि फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़ी। बहुत वो मेरे एक अभिन्न अंग बन गए थे मेरे, मुझे बच्चों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था। मैं सोचती थी, रात में सोती थी तभी भी मैं सोचती, अच्छा उनको और किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उनके लिए चीज इजी बनाई जाए, कैसे बेटर हुए चीजें जो बच्चे समझें। तो जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बहुत इस बात की खुशी होती है कि आज वो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, सब इतने अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में। अब कभी कहीं बाहर जाती हूँ, कोई बच्चे मिल जाते हैं, पहुंच होते हैं, बोलते मैम आपने पहचाना, आप नमिता मैम है ना, तो इतना अच्छा लगता है। वो मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि हाँ उन्होंने, वो मुझे भूले नहीं, तो कुछ तो कहीं मैंने कोई छाप छोड़ी होगी उनको, कहीं मैं समझ में आई होंगी। तो जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो और ज्यादा वो सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते मैम आपको हमारा नाम याद है, कहा अपने बच्चों को भूलती नहीं हो। और जब पेरेंट्स आके थैंक यू बोलते हैं, बोलते मैम आपकी बेसिक फाउंडेशन की वजह से आज हमारा बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा है, तो उससे ज्यादा खुशी और उससे ज्यादा बेटर रिवॉर्ड मुझे लगता है और किसी फील्ड में हो ही नहीं सकता है। आज बच्चों के मतलब आज वो माता पिता बन गए और वो जब अपने बच्चों को मेरे यहाँ एडमिशन के लिए लाते हैं, तो मुझे, मैंने इनके बच्चों को भी मतलब इनको भी पढ़ाया है, इनके बच्चों को, फिर वो इतने खुशी से अपने बच्चों को बताते हैं कि ये हमारी भी मैम थी, ये हमारी भी मैम है, तो बहुत खुशी मिलती है।
0: वाह, किस तरह से ये चेंज शुरू होता है, कैसे एक टीचर एक कैटलिस्ट होता है इतने बड़े चेंज का, और एक्चुअली जनरेशंस की जनरेशंस आपने पढ़ाई होंगी, जैसे आपने बताया कि अब वो भी पेरेंट्स बन गए और उनके बच्चे भी आपके स्कूल में आते हैं, तो मैम दिस इज सच एन अचीवमेंट एंड सल्यूट टू यू, सल्यूट टू योर जर्नी, इतनी खूबसूरत जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड वंस अगेन हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं कि आज आपने हमें ज्वाइन किया और अपने एक्सपीरियंसेस साझा करने के लिए आप हमारे साथ तत्पर हैं आज के इस एपिसोड में। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत, आज फिर जीने की तमन्ना है। फिल्म गाइड।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक नमिता मैम। आगे चलते हैं मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी जी आगे चलते हैं मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे फाउंडेशंस क्रिएट किए स्कूल्स के लिए, आपने उन्हें सिर्फ मैनेज नहीं किया, उन्हें शुरुआत से बिल्ड किया, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यू क्रिएटेड देम। तो जब आप एक स्कूल खड़ा करते हैं, जब आप उसके फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, आप उसकी फाउंडेशनल स्टोन रखते हैं, तो बहुत इमोशनल और बहुत यू नो फिजिकल लेवल पे चैलेंजेस आते होंगे। तो सबसे बड़ा इमोशनल स्ट्रगल क्या रहा आपके लिए, और सबसे बड़ा यू नो एक फिजिकल एक सर्कमस्टेंशियल जो स्ट्रगल था वो क्या रहा? आई एम श्योर बहुत सारे, अनलेस आप अपनी फैमिली के फर्स्ट जनरेशन टीचर हैं या आपकी फैमिली में यू नो देयर हैव बीन टीचर्स इन योर पास्ट, दैट ऑल्सो इफ यू कैन एड्रेस दैट, वॉज इट अ लेगेसी जो आपने कैरी फॉरवर्ड करी, या आप फर्स्ट जनरेशन टीचर हैं अपनी फैमिली के, तो ये किस तरह से सफर बिल्ड हुआ, क्या स्ट्रगल्स थे इमोशनली एंड फिजिकली सर्कमस्टेंशियली, वो अगर हमारे साथ साझा करें।
1: मैं अपने फैमिली की फर्स्ट टीचर थी, और इनफैक्ट मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, इट वॉज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, राजपूत फैमिली, एंड बहुत पर्दा सिस्टम और सब था। और ये सोचा जाता था कि हाँ ठीक है, पढ़ ली, स्कूल कर लिया, उसके बाद में तो शादी करनी है। बट मेरे फादर को मुझसे बहुत उम्मीदें थी। माय फादर वाज अ वेरी फार साइटेड पर्सन, वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ूं, मैं कुछ करूं अपना, उनको बहुत उम्मीद थी मुझसे। वो शुरू में किसी ने सोचा नहीं था कि हाँ इस तरह का भी मैं कुछ करूंगी। और 1988 में जब मैंने अपना पहला स्कूल खोला, तो बहुत डिफिकल्ट था उस वक्त, मीन्स सब मुझे डिस्करेज कर रहे थे कि लाइक जॉब कर रहे हो, फिक्स सैलरी आ रही है, व्हाई डू यू वांट टू ओपन योर ओन स्कूल, क्या आईडिया स्कूल चलेगा। मुझे लगता था कि नहीं, जब हम मेहनत करते हैं, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो मैं उनको दूंगी, मुझे मालूम है कि बच्चे बहुत इजीली सिलेक्ट होंगे। इट वाज अ प्री स्कूल, तो उस वक्त सबका मन ये होता था कि हमारी डॉटर है तो एमजीडी में जाए, बेटा है सेंट जेवियर्स में जाए, एसएमएस में जाए, ये उन लोग का टारगेट होता था कि ये स्कूल में जाना है। तो मुझे लगता था जो मैं उनको दूंगी बच्चों को, तो डेफिनेटली मैं पीछे नहीं हट सकूंगी। मुझे मालूम था कि हाँ मुझे आगे ही जाऊंगी मैं,
0: राइट।
1: और फिजिकल चैलेंजेस की जैसे आपने बात की, तो मेरे मदर की हवेली में ही मैंने अपना फर्स्ट स्कूल खोला था। पुराने वो गोडाउन होते थे ग्राउंड फ्लोर पे, उनको सारा डन अप कराना, चूने का काम होता था, था चूने वाले मिलना मतलब ये सब तो बाद में सीमेंट और ये सब चीज चालू हो गई थी
0: बिल्कुल
1: टाइम पर, क्योंकि सब लोग डिस्करेज कर रहे थे, तो दे वांटेड टू सी कि मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। तो मैं मई जून की गर्मी में, जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था 1988 में, और मैं दोपहर में जाकर के, सुबह जाके मजदूर ला रही हूँ, चूने वाले के पास जा रही हूँ, सीमेंट वाले के पास जा रही हूँ, इलेक्ट्रिशियन को बार बार मैं फोन कर रही हूँ, कार्पेंटर से फर्नीचर की तैयारी करवा रही हूँ। तो ये सब चीजें बहुत आसान नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट था। जब मन आप कोई चीज बना ले कि हाँ मुझे ये करना है, तो आई थिंक भगवान भी साथ देता है। और मैं इस चीज को बिलीव करती हूँ, जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको टीथिंग प्रॉब्लम हर उसमें आती है, हर मतलब कोई भी आप चीज स्टार्ट करेंगे तो सबके लिए ही है ये बात, ना स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल, टीथिंग प्रॉब्लम्स होती ही हैं, और इनसे घबरा कर अगर हम बैठ जाएं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर अ पार्ट ऑफ इट। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि क्यों, यू नो क्या गारंटी है। मैंने सबको फिर, क्योंकि जब बहुत अच्छा चला, मेरे हर बच्चे का एडमिशन जहाँ वो चाहते थे वो जाता था, तो दैट वाज लाइक यू नो सबको, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी कभी।
0: बिल्कुल, आपका काम बोलता था जी।
1: हाँ, पैशन होना चाहिए, जो भी काम करें उसके लिए पैशन होना चाहिए, बेसिकली सबसे बहुत जरूरी चीज है।
0: राइट राइट। और सब लोग सिर्फ एक एंड प्रोडक्ट देखते हैं, वो ग्लिटर देखते हैं, वो गोल्ड देखते हैं, बट उसके पीछे के जो स्ट्रगल्स हैं, जो उसके पीछे की मेहनत है और जो ग्राउंड वर्क है, जो लिटरली आपको एकदम निचोड़ के रख देता है, जो सिर्फ आपको पता है कि आप उसको कैसे गो थ्रू करते हैं, वो बहुत कम लोग देखते हैं. बट आई थिंक जैसे आपने कहा, डेडिकेशन, पैशन एंड कंसिस्टेंसी, कि मेरा ड्रीम है एंड आई हैव टू फुलफिल
1: बिल्कुल
0: इट. तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल मैम आपकी जर्नी में. अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट 50 लॉन्ग ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू एंड योर पर्सनैलिटी एंड योर डेडिकेशन. सो आगे चलते हैं मैम. आपने फाउंडेशनल लिटरेसी पे बहुत फोकस रखा है आपकी टीचिंग में, आपके एजुकेशन सिस्टम में. आपके लिए बहुत कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है. तो किस हिसाब से आप जब एक 4 से 5 साल का बच्चा या उससे भी छोटा बच्चा जब आता है, तो उसकी पर्सनालिटी और उसके कॉन्फिडेंस को किस तरह से फाउंडेशनल लिटरेसी शेप कर सकती है? क्या फायदे होते हैं उसके, अगर आप थोड़ा सा एजुकेट करना चाहें तो?
1: तनुषा जी, वो 4-5 साल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों की जिंदगी में. उनके जो माइंड्स होते हैं, दे आर लाइक स्पॉन्ज. उसमें हम जितना उनको दे सकते हैं, हम लोग शायद दे ही नहीं पाते हैं
0: जी
1: उस उम्र में. दे आर केपेबल ऑफ लर्निंग 4 to 5 languages एट अ टाइम. इतना उनकी कैपेबिलिटी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है. आज हर जगह स्कूल खुल गए हैं, है ना. पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का, अगर जैसे पेरेंट्स का मन होता है कि हम हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करें, बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ द आवर.
0: करेक्ट,
1: इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. बाकी हर लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है. हिंदी क्योंकि हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी पे भी मैंने बहुत फोकस किया कि हिंदी की मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए. तो मेरा कोई ठीक है, जो स्कूल में सिलेबस एक प्रिस्क्राइब्ड होता है, बट मैं खेलने के माध्यम से, थ्रू प्ले वे मेथड ढूंढी, मैं उनको पढ़ाया करती थी, है ना. बिकॉज जब बच्चे को अगर आप बुक लेकर के आ रहे हैं, हाँ. तो कोई सोचता प्री स्कूल के बच्चे को प्रेपोजिशन कौन कर पाता है. वो वहीं पे हम नींव उनकी मजबूत कर रहे हैं, हम वहीं पे उनको फाउंडेशन ले कर रहे हैं. तो खेलने खेलने में ट्रायल्स रख देते थे, द जंप अक्रॉस, सो दे यू नो विथ योर एक्शन आप बता रहे हो कि अक्रॉस, सो दे नो कि हाँ इधर से उस तरफ चले जाएंगे, तो दैट इज अक्रॉस.
0: हाउ अमेजिंग.
1: टायर लिया, टायर में से अच्छा गो थ्रू दिस, टनल में से कम ऑन गो थ्रू दिस, तो उनको थ्रू, फिर ये वाली जो प्लेसमेंट है, पोजिशन है, ये पता होनी बहुत जरूरी है. सो इस तरह से खेल खेल में उन्होंने बहुत सुने, और फिर जब सीखते हैं खुद करके, तो वो कभी भूलते नहीं है. हाँ, रोट लर्निंग नहीं हुई है उनकी, उनको याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है. एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स करवाना इज नॉट द क्राइटेरिया. लेवल पर जाकर उन्हें सिखाना पड़ता है. अच्छा डिफरेंट है. हाँ, वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिफरेंट वेज, वेरिड वेज, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो.
0: और
1: सबसे इम्पोर्टेंट वही है.
0: जी जी. और उसके लिए खुद को कितना प्रिपेयर होना पड़ता है, खुद के पास इतने सारे मेथड्स होने पड़ेंगे डिवाइस करने के लिए, कितना दिमाग खुलना पड़ेगा और कितनी मेहनत बिहाइंड द सीन्स करनी पड़ेगी टू एक्चुअली कम अप विद दीज नोवस मेथड्स. जैसे कि आपने बताया कि अक्रॉस समझाने के लिए, प्रेपोजिशन समझाने के लिए, वो बच्चा शायद कभी नहीं भूलेगा अगर वो टायर से अक्रॉस और थ्रू का कॉन्सेप्ट समझ जाए, जो बहुत बहुत सारे लोग गलती करते हैं आज भी, जिनकी इंग्लिश अदरवाइज शायद बहुत अच्छी हो बट देन प्रेपोजिशन रॉन्ग होते हैं हमारे. तो ये जो नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग है ऑफ थिंग्स, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द एक्सपीरियंस जो आपके पास है मैम. और अगर कोई मेथड, अगर आप कुछ नोवस मेथड हमारे साथ साझा करना चाहें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये कॉन्वर्जेशन, सो इफ वी कैन जस्ट एक्सटेंड दिस आंसर थोड़ा सा.
1: श्योर. हम लोग फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं बच्चों को, तो जैसे पार्क लेके जाते हैं. पेरेंट्स को जनरली लगता है कि नहीं, पिकनिक पे लेके जा रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट द पिकनिक. हम उनको लेके जाते हैं तो उनको वहां पे एक्सप्लोर करने देते हैं कि अच्छा पिकअप डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स, तो देखते हैं शेप सबका अलग है, साइज सबका अलग है ना. मोस्ट लीव्स आर ग्रीन. तो ये जब ये साइंस में आगे क्लास 3 में 2 में पढ़ते हैं, उससे पहले इनको सब आ गया प्री स्कूल में कि लीव्स कैन बी डिफरेंट शेप्स, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, है ना. कौन गार्डन को लुक आफ्टर करता है, कौन पार्क को लुक आफ्टर कर रहा है, क्या इंसेक्ट्स है वहां पर. tree, हम बोलते हैं go and hug the tree, you know, make a like circle around the tree, just circle around आ गया उनको, hug the heart, tree trunk, तो उनको tree trunk मतलब you know vocabulary build करना होता है बच्चों की, तो हम कहीं भी जाते हैं parents को बताना चाहूंगी कि जब ये बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक हम जिंदा हैं, हम कोई समय नहीं है सीखने का, हम पूरे समय सीखते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो जैसे हम कार में जा रहे हैं, बच्चों को बोलते हैं ओके देखो दिस इज अ बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के प्रॉप रूट्स होते हैं, तो जब तक जब उनको देखते हैं तो अब बुक्स में पढ़ने से ये सब चीजें नहीं आती है,
0: नहीं आ सकती जी,
1: इतना अच्छे क्लियर मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता इतना,
0: बिल्कुल.
1: तो इस तरह से मेरे फील्ड ट्रिप्स भी मेरा बहुत एक यू नो बड़ा वो रहा है, ले जाने से उनको बहुत सीखने को मिलता है, तो जब उनके कोर्स में जब ये सब चीजें आती हैं तब तक उनको ऑलरेडी पता होती है वो चीजें,
0: तो फिजिकल वर्ल्ड में उसको फील कर चुके
1: हैं, राइट. एंड आई थिंक टू फोनिक्स, तो फोनिक्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, एबीसीडी करके.

0: वो हर स्पेलिंग बच्चा नहीं लर्न कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल. जितना साउंड से हम करा सकते हैं, साइट वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड से नहीं रिलेशन है, तो वो हम बच्चे को खाली उतना सा ही लर्न करने का, यू नो, तो हम उनका बर्डन कम कर सकते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं, राइट.
0: हाँ जी, तो उससे क्या रीडिंग बहुत अच्छे से आती है, एंड व्हेन द चिल्ड्रन लिसन टू एनी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे कोई और भाषा हो, जब वो सुनते हैं तो धीरे धीरे उनको समझ आने लगती है. जब समझ आएगी तो फिर वो बोलने की कोशिश करेंगे.
1: बिल्कुल.
0: व्हाट दे लैक इज वोकैबुलरी, तो हम वोकैबुलरी उनकी बिल्ड करते हैं. बच्चे को पानी पीना है, जनरली मदर बोलती है मम्मम, तो आप ये ऐसे वाले बेबी वर्ड्स अगर आप बच्चों को सिखा रहे हो तो आप बच्चों के लिए ठीक नहीं कर रहे हो.
1: बिल्कुल
0: है ना, उनको बोलना चाहिए वाटर, वांट वाटर. हिंदी तो वो सीख ही रहे हैं, अपने माहौल से सीख ही रहे हैं, अपने
1: एनवायरमेंट
0: में. आप कोई भी भाषा सिखाना चाह रहे हैं तो आप उसके वर्ड्स आप प्रोवाइड करेंगे बच्चों को.
1: करेक्ट करेक्ट, तो लेट देम ग्रो ऑन देम इजीली, एफर्टलेसली. जी
0: जी हाँ, और आई थिंक रीडिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए. रीडिंग आ गई, समझ आ गया, तो लिखने में तो बच्चा कभी भी लिख लेगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो सोच ही डेवलप होगी रीडिंग से.
0: जी हाँ, वोकैबुलरी बिल्ड होगी, सोच डेवलप होगी. कितना आप जानोगे, वर्ल्ड को जानोगे, पूरी दुनिया जानोगे आप. एंड जब छोटे छोटे वर्ड्स इनको केजी में, लोअर केजी में सब सिखा लेते हैं, आई टेल द पेरेंट्स होर्डिंग्स वगैरह इनको पढ़ने दीजिए. जो पढ़ रहे हैं उसका क्या है, why is it important?
1: Correct. और वो क्या वहाँ क्यों है, वो बिलबोर्ड वहाँ क्यों है. करेक्ट
0: राइट राइट
1: करेक्ट.
0: मैथ्स हम जब सिखाते हैं तो उनको बोलते हैं कि नहीं आप बाजार जाते हैं बच्चे को, तो ये ना टिप्स है पेरेंट्स के लिए कि अगर वो मनी उनको हैंडल करने दें, दे विल नो. अगर आप प्लस माइनस, अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं जानोगे, आपको तो कोई भी चीट कर लेगा.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: इस तरह से
1: जी मैं कई बार ये सोचती हूँ, और बहुत हाल ही में मेरा कोई डिस्कशन भी हुआ था कि हम जब छोटे थे, लाइक आवर जनरेशन आई थिंक वाज द लास्ट जनरेशन जिनको घर से बाहर भेजा जाता था कि जाओ 1 किलो टमाटर लेके आओ, भाग के हम साइकिल पे जाते थे और अपनी शायद 1 रुपए की टॉफी के लालच में वो टमाटर लेके आते थे भरी दोपहरी में, आई मुझे याद है. और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता था, बस जाओ ये कहा जाता था. तो वो जो प्रैक्टिकल एक्सचेंज होता था, चाहे वो सब्जी वाले से, चाहे वो वहां चार खड़े लोगों से, चाहे उनसे जो व्यवहार डेवलप होता है, एंड ऑफकोर्स जो मैथमेटिक्स आप लर्न, जिसकी आपने भी बात की, तो दीज आर सच स्मॉल थिंग्स जो हम अनोइंगली अनकॉन्शियसली जस्ट सेटल्स आपकी आपने भी बात की तो दीज आर सच स्मॉल थिंग्स जो हम अनोइंगली अनकॉन्शियसली जस्ट सेटल्स आपके अंदर और आप सीख जाते हैं. वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अब बिल्कुल यू नो एलियन होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. तो आई एम वेरी श्योर कि इस तरह के स्कूल्स और आपके स्कूल्स जैसे आपके प्री स्कूल्स जैसी जो लर्निंग है, मॉड्यूल्स हैं, उनसे बच्चे सच में वापस प्रैक्टिकल लेवल्स पे आ सकते हैं, वापस उन रूट लेवल प्रैक्टिसेस पे आ सकते हैं जो एक टाइम पे आम होती थी, वो दे वर अ वे ऑफ लिविंग. तो वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैम, इसी एहसास के साथ हम सुनते हैं हमारा अगला गीत, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, फिल्म इम्तिहान.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक नमिता मैम।
1: जी
0: मैम आज भी आई डोंट वांट टू टेक योर एज, बट मैं चाहती हूं कि मेरे लिसनर्स आपकी एज जाने और इंस्पायर हों कि इस एज में भी कोई इतना पैशनेट हो सकता है, कोई इतना डेडिकेटेड हो सकता है टुवर्ड्स देयर कॉज। तो एट दिस एज ऑल्सो व्हेन यू आर 73, आप क्लासरूम टीचिंग उतने ही पैशन से करती हैं और खुद क्लास में जाती हैं, पढ़ाती हैं। तो आपको ये एनर्जी और ये लव फॉर टीचिंग आता कहाँ से? व्हाट इज योर फ्यूल? आई जस्ट वांट टू नो क्या आपको ट्रिगर करता है, क्या आपको फ्यूल करता है, क्या आपको लुक फॉरवर्ड एवरी डे करने के लिए इंस्पायर करता है, वो अगर आप साझा करना चाहें। क्योंकि हम बहुत सारे इस जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं जो शायद 10 साल के अपने कॉर्पोरेट लाइफ में आफ्टर 10 ईयर्स दे गिव अप बिकॉज दे आर लाइक ब्रेन रॉट हो रहा है, या हम डाई आउट हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज डाई आउट हो जाती हैं और वी फील बर्न आउट। सो दिस पैशन, द काइंड ऑफ पैशन दैट यू गेट फॉर टीचिंग, आज भी वो कहाँ से आता है? व्हाट इज योर, यू नो, व्हाट इज योर सोर्स, इफ वी कैन टैप इनटू दैट सोर्स?
1: My students give me that energy. I love that age group, you know, the preschoolers. मुझे इतने मैं उनको देख के मेरा चेहरा खिल जाता है। सब थकान, सब टेंशन अगर कोई होती है, हर चीज दूर हो जाती है। उस वक्त आपको सिर्फ बच्चे दिखते हैं और उन उनसे जो खुशी मिलती है वो बयान नहीं कर पा सकती हूँ और किसी और चीज में मिल ही नहीं सकती है। When they come, they hug me, you know. ऐसा दूर दूर नहीं रखती हूँ मैं बच्चों को। दे कम, दे हग मी, दे टेल मी मैम आई लव यू। चिल्ड्रन हु पास आउट, लाइक यू नो, हु ग्रेजुएट फ्रॉम माय क्लास एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास इन ग्रेड वन एंड ऑल, व्हेन दे कम, मैम आई एम मिसिंग यू, आई सेड आई एम ऑलवेज हियर। सो लाइक यू नो, जब उनको टाइम मिलता है बीच बीच में आकर के, मैम यू नो दे लाइक टू पीप इन माई क्लास, कैन वी कम एंड हग यू, मैम आई लव यू। संडे सैटरडे या कोई छुट्टियां आती हैं, कोई कोई बच्चा आके मुझे मैम वी मिस्ड यू, मैम आई मिस्ड यू, ये मेरे लिए एक बहुत टॉनिक का काम करता है और इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ हो ही नहीं सकता है। बिकॉज यू नो इतने प्यारी एज होती है ये, इतनी अच्छी एज होती है,
0: बिल्कुल
1: बहुत। हाँ, सो दिस मी लॉट ऑफ मोटिवेशन एनर्जी। जैसे पेरेंट्स जब आके बोलते हैं कि नहीं मैम हमें घर में कुछ नहीं कराना पड़ता, वो उसको ऑलरेडी आता है, जब स्कूल से आता है हम पूछते हैं तो उसको आता है, लगता है कि हाँ यू रियली नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स और बच्चे के लिए, और कितना हम और कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो ये जो प्योरिटी है ये आपको भी यंग रखती है, आपको भी हमेशा फूल की तरह खिले रहने की एक इंस्पिरेशन देती है, बिकॉज आई थिंक चिल्ड्रन आर अ गार्डन ऑफ फ्लावर्स। तो मैम कोई ऐसा इंस्टेंस, अगर कोई ऐसा वाकया किसी एक बच्चे के साथ, या कोई एक स्पेशल मोमेंट अगर अभी हमसे बात करते करते आपके जहन में आ रहा है जो आपके लिए बहुत स्पेशल चाइल्ड था, या कोई एक मोमेंट जो आपके साथ रह गया जो आज भी आप सोचते हैं तो यू नो इट जस्ट आपको मूव कर देता है, अगर कुछ आप साझा करना चाहें?
1: हाँ, एक बच्चा था, मैंने अपनी कैथोरिक का ऑपरेशन हुआ था, मेरी सर्जरी हुई थी।
0: हाँ जी।
1: तो मैं उन दिनों क्लास नहीं थी, बट वहां पर एक अपने रूम में थी मैं, एंड उन्होंने मेरे सन से पूछा, डॉटर से पूछा कि व्हाई इज मैम नॉट कमिंग, व्हाई इज मैम, वेयर इज मैम। मैंने कहा मैम इज जस्ट, उनकी सर्जरी हुई है, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है। वो बच्चा घर जाकर के उसने अपने मम्मी को बोला मेरी मैम का ऑपरेशन हुआ है, वो तो ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं। हाँ, उसने अपना पिगी बैंक तोड़ा और नेक्स्ट डे वो पैसे, उसकी मदर ने आके मुझे बताया कि मैम ही कॉल्ड मी अप और बोला कि मेरे लिए ना फ्लावर्स लेके आना, मैम को फ्लावर्स देने हैं मुझे। दे वो अपना पिगी बैंक का जितना भी पैसा था वो ही ब्रॉट इट टू मी मैम,
0: इमेजिन।
1: तो वो चीजें मैं भूल ही नहीं सकती हूँ।
0: वाओ, सच अ स्पेशल फीलिंग, कितने मासूम,
1: इतने मासूम,
0: बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत। आगे चलते हैं, आप खुद एक एक्स एमजीडियन हैं, बहुत अच्छी स्कूल से आपकी स्कूलिंग हुई है मैम, तो आपको क्या लगता है कि स्कूलिंग और टीचर्स का जो अंदर इफेक्ट होता है हमारे हमारे कॉन्फिडेंस पे, हमारी वैल्यू पे, हमारी फाउंडेशन पे, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? और इससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं आज, कि स्कूलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और कैसे वो उस स्कूलिंग से कॉम्प्रोमाइज ना करें अपने बच्चों के लिए? अगर कुछ मैसेज आप बताना चाहें और अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें बीइंग एन एक्स एमजीडियन।
1: हर स्कूल में कोई ना कोई जरूर ऐसी टीचर्स होती हैं जो आप इंस्पायर करती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं कि हम उनके जैसे बने। वो कहीं ना कहीं हमारी इंस्पिरेशन बन जाते हैं. एंड पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि अगर टीचर उनके लिए कुछ बोल रही हैं, बच्चे को अगर कभी जरूरत होती है डांटने की भी, जब यू नो डिसिप्लिन जहां आता है, अगर हम डिसिप्लिन नहीं करेंगे, बिकॉज डिसिप्लिन एंड यू नो लव दे शुड गो हैंड इन हैंड.
0: एब्सोल्युटली,
1: है ना. खाली प्यार प्यार करने से बच्चा, आप अगर सोचें कि बहुत अच्छा एक ह्यूमन बींग आप क्रिएट कर रहे हैं, नहीं.
0: बिल्कुल,
1: डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है. टाइम से आना, टाइम से पढ़ना, हर चीज का एक समय होना चाहिए. तो अगर पेरेंट को टीचर कुछ बोल रही है तो उनको समझना चाहिए कि हाँ, जो ये बता रही है वो एक्सपीरियंस से बता रही है.
0: करेक्ट.
1: इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट ऑल द टीचर्स. आई मीन टीचर बता रही है उनको, आप घर में रह रहे हैं, आप इतना अच्छा शायद नहीं कर, क्योंकि उनका प्रोफेशन है. क्योंकि वो ज्यादा जानती हैं कि हाँ, क्या चीज आपके बच्चे के लिए हिट करे, क्या चीज बेटर है आपके बच्चे के लिए.
0: राइट.
1: मतलब छोटी छोटी चीजें अगर मैं बोलूं, यू नो दरवाजा, कभी पेरेंट्स देखते हैं दरवाजा बच्चे के लिए खोल देते हैं, नहीं, हम हिंडर कर रहे हैं उनका ग्रोथ.
0: करेक्ट.
1: बच्चे को अपने आप खोलना, हमें सिखाना चाहिए क्या करना चाहिए. और एक जो आजकल रोकते हैं पेरेंट्स के, नहीं नहीं धूप में मत खिलाइए बच्चों को. हम धूप से विटामिन डी मिलता है. डॉक्टर्स बोलते हैं विटामिन डी की कमी है, धूप में बिठाओ, विटामिन डी कैप्सूल्स दो. तो इट इज बेटर कि बच्चा धूप में खेले. हम लोग सब खेले हैं, आप भी खेले हैं, हम भी खेले हैं.
0: करेक्ट.
1: धूप तो उतनी थी, गर्मी तो उतनी थी.
0: करेक्ट.
1: जब मई जून में हम लोग नानी के घर जाते थे, कहीं जाते हैं, तो क्या हम घर में बैठे रहते थे एसी में, कूलर्स में? नहीं,
0: बिल्कुल नहीं. बिल्कुल.
1: जहाँ खेत खलियान थे, लोग खेत खलियानों में भी जाते थे, सब करते हैं. तो बच्चे को हमें स्ट्रांग बनाना है, हमें बच्चों को वीक नहीं बनाना है.
0: यस,
1: ये हम पे डिपेंड करता है.
0: वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम, वेरी इंपॉर्टेंट.
1: तो बच्चे को बहुत इतना ज्यादा पैम्पर ना करा जाए कि बच्चा आगे जाके तकलीफ बच्चे को ही मिलेगी.
0: करेक्ट. आप थोड़ी उसके सर्कमस्टेंस में उसके साथ खड़े रहेंगे. जब वो एक्चुअल धूप में जाएगा तो उसको वो धूप सहनी पड़ेगी, जैसे हर इंसान को सहनी पड़ती है.
1: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल.
1: तो खाली धूप का मतलब कई चीजें होती है ना.
0: यस यस यस, बिल्कुल.
1: तो हमें तो स्ट्रांग बनाना है. पेरेंट्स को यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे को स्ट्रांग बनाइए, वीक नहीं बनाइए कि हाँ ये नहीं करना चाहिए. ये खेलने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए, उसको मजे से करने दीजिए. कभी कोई चीज गिर जाती है, दूध फैल गया बच्चे से, डांटने की जगह उस वक्त हो गया, वो चीज हो गई.
0: करेक्ट.
1: है ना, उसको खराब वो मत करिए, उसके मेमोरीज में के लिए खराब उसको वो मत करिए. उसको ठीक है, हो गया, चलो हम मिलकर के उसको साफ कर देते हैं.
0: करेक्ट.
1: तो एक वो आएगा कि हाँ कोई चीज ऐसे हो गई हम उसको. और हर इंसान गलती करता है.
0: करेक्ट.
1: हम भी करते हैं एज टीचर्स, पेरेंट्स भी करते हैं. तो बच्चे को ये भी सिखाना बहुत जरूरी है कि गलतियां होती हैं, बट दैट इज लाइफ, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स.
0: बिल्कुल.
1: पर वो मिस्टेक हम दोबारा ना करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए.
0: करेक्ट. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत ही खूबसूरत आपने एग्जाम्पल दिया, दूध गिर गया कोई बात नहीं, बट अब उसे ये सिखाएं कि अब इसको साफ हम मिलके करें. और कैसे अगर फ्यूचर में भी आपसे गलतियां होती हैं, चाहे लाइफ में चाहे ये छोटी मोटी गलतियां, तो गलती हो गई, अब हो गई, बट उसको ठीक कैसे किया जाए, उससे वापस खड़ा कैसे हुआ जाए, तो
1: exactly.
0: वो सिखाना. और सिर्फ मौलिक

0: मैम, वो मोमेंट्स आपके लिए कैसे थे? इमोशनली किस तरह से उन्होंने आपको मूव किया? एंड हाउ प्राउड यू फील अबाउट दोज मोमेंट्स? बिकॉज इट्स श्योर हार्ड वर्क जिसने आपको वहां पे पहुंचाया है. तो ये किस तरह से आपको ये अवार्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लगते हैं, अचीवमेंट्स लगते हैं, या मिक्स ऑफ बोथ?
1: बहुत
0: जी
1: आपको बहुत खुशी होती है जब आपके काम को सराहा जाता है, आपके काम को की वैल्यू समझ के कोई अगर आपके अप्रिशिएट करता है. आई थिंक दैट्स ह्यूमन नेचर, सबको अच्छा लगता है. बट यू यू नो आपके लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. एक लगता है आपको कि ठीक है, अब इससे भी ज्यादा अच्छा हमें करना है. एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. और जब पेरेंट्स आपके भरोसे बच्चे टीचर को भरोसे जब बच्चा छोड़ते हैं, टीचर की पूरी ड्यूटी होती है कि हर चीज वो अपने ऊपर लेके पूरी उसी के टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे का भविष्य को देखते हुए जो कर सकें. तो अवार्ड जब मिलता है तो उसे रिकग्निशन है, ठीक है आपने किया, आपको मिला उसका रिवॉर्ड. पर सबसे जैसे मैंने पहले बताया, जब पेरेंट्स खुश होके जब बताते हैं अपने बच्चे के कि नहीं इट इज बिकॉज ऑफ यू, तो वो उससे बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो सकता है. जब बच्चे आपको पहचान करके और वापस से आपको आके एंड यू नो दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू यू नो कीप इन टच विथ यू बड़े होने के बाद में भी, दैट इज नो ये और बहुत बड़े रिवॉर्ड है.
0: प्राइसलेस.
1: तो ये ज्यादा प्रेशियस है. बट यस, जब आपका वर्क रिकग्नाइज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, तो यू फील वेरी नाइस.
0: राइट राइट वेरी लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन टू यू मैम. जी जी. तो चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत एहसास के साथ, इन्हीं प्यारी बातों के बीच हम सुनेंगे हमारा अगला रेजिलियंट गीत, जिंदगी की ना टूटे लड़ी. क्रांति.

0: मैम आपने बच्चों को इंग्लिश और हिंदी फ्लुएंटली बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उनका डिक्शन ठीक किया, तो अब आपके हिसाब से जब एक टीचर से सब्जेक्ट सिखाता है, विजिबली जब एक टीचर उस सब्जेक्ट के साथ साथ वैल्यूज ऑफ लाइफ सिखाता है, क्योंकि पहले जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस, जिससे हम बहुत सारे एक्चुअल वैल्यूज लेसन वाइज सीखते थे और शायद कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो अब्सॉर्ब होते थे। आज के जमाने में कितना डिफरेंस है उसमें कि जब टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट लर्निंग करता है, सब्जेक्ट डिलीवर करता है बच्चे को, बट साथ में वो जो वैल्यू सिस्टम है रीइन्फोर्स करना, उसका खुद पे यकीन डेवलप करना, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उन सब पे जब एक टीचर काम करे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंज कैटलाइज हो सकता है और कितना जरूरी है वो आज के जमाने में, जब हम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे मॉरल साइंस एनी मोर, बट इट इज इम्पोर्टेंट नन द लेस आई थिंक। सो अगर आप इस पे
1: एब्सोल्युटली,
0: हमारे व्यूज दें। जी
1: वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज
0: जी
1: कॉन्फिडेंस आपको आगे लाइफ में बहुत वही हेल्प करेगा।
0: राइट
1: इंग्लिश हिंदी मतलब लैंग्वेजेस यहाँ पे फिर आकर के इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएंगी, जो जितना आपका कॉन्फिडेंस आपका इम्पोर्टेंट रहता है। हर बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो, तो टीचर शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स डेफिनेटली।
0: राइट राइट
1: हाँ जी, और ये वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, तो जब मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है कि टीचर को उसमें बुक से पढ़ाने की मॉरल साइंस की जरूरत नहीं है।
0: राइट
1: रोज जो हम चीजें होती हैं उसी में अगर हम रोज बताएं, टीचर्स के पास में बच्चा कोई काम हो गया खत्म, कोई नेक्स्ट पीरियड के लिए वेट करने, तो अगर 5 मिनट भी होते हैं, 2 मिनट भी होते हैं, हम उस वक्त क्यों नहीं उनसे अच्छी बातें कर सकते हैं, क्यों नहीं हम उनसे इन बारों बातें में इन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ना। हम जब उनको बोलते हैं कि हाँ कोई बच्चा सच बोल रहा है, बोले दैट इज वेरी गुड,
0: बिल्कुल
1: डजंट मैटर। और जब ये लोग जब डिक्टेशन वगैरह दिया जाता है, कुछ काम दिया जाता है, तो आई ऑलवेज टेल देम कि लाइक नहीं, चीटिंग नहीं करेंगे, डजंट मैटर इफ इट इज रॉन्ग, इट्स
0: राइट
1: एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि
0: करेक्ट
1: रॉन्ग होएगा तो हमें पता चलेगा कि ठीक है हमको ये नहीं आता है, हम उसको दोबारा लर्न करेंगे।
0: करेक्ट
1: पर चीटिंग, सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, तो ये अगर हम यहीं से बिल्ड करेंगे कि नो चीटिंग इज रॉन्ग, है
0: राइट
1: ना, सच बोलना है, डजंट मैटर क्या होएगा, आपको गुस्सा करेगा कोई, कोई बात नहीं है, हम क्योंकि हमने गलती की है तो हमें थोड़ा गुस्सा भी बेयर करना पड़ सकता है कभी,
0: राइट
1: बस इतने हमें, हाँ, तो वो चीज उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस होएगा तो आप लाइफ में सच भी बोलेंगे, राइट।
0: बिल्कुल
1: एंड हाँ, तो ये चीजें तो बहुत जरूरी है, बेझिझक अपनी बात कह सकें वो बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें।
1: पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें अपना।
0: जी,
1: जी
0: बहुत ही सुंदर मैम। अब मैं हमारे आखिरी सवाल और आखिरी सेगमेंट की तरफ जाऊंगी, जहां ऑलरेडी आपने बहुत सारी सीख हमारे लिसनर्स के साथ साझा की है, बहुत सारी बातें हमने ऐसी की हैं जिनसे बहुत सारी चीजों का एक सार समझ आया है, एक तरीका समझ आया है, एक एक रास्ता आपने हमें दिखाया है। इसी के साथ अगर एंड में कोई प्रैक्टिकल मैसेज अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए, जो अभी नए पेरेंट्स हैं या नए टीचर्स हैं जो इस फील्ड में कदम रख रहे हैं, उनके लिए
1: जी
0: अगर आप कोई मैसेज देना चाहें जिससे वो बच्चों को इमोशनली सिक्योर, कॉन्फिडेंट और काइंड चिल्ड्रन बना सकें, तो वो क्या
1: जी
0: होगा?
1: तो आज के पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी, टीचर्स को यही कहना चाहूंगी, स्पेशली पेरेंट्स को, अभी बच्चों को फोन और टीवी से दूर रखें, थोड़ा बच्चों पे ध्यान दें, फोन अपनी जगह नहीं ले सकते, वो उनकी जगह, पेरेंट्स की जगह नहीं ले सकते, ना ही एक्सपेंसिव टॉयज उनकी जगह ले सकते हैं, उनके साथ खेलिए, क्योंकि बचपन बार बार में नहीं आएगा, उनको कहानियां सुनाइए, स्टोरी बुक्स खरीद के दीजिए, टॉयज खरीदने की जगह, टैबलेट्स खरीदने की, क्लास 2 3 में मैम आई हैव गॉट अ टैबलेट, माई फादर्स गिव मी अ टैबलेट, नॉट रिक्वायर्ड, तो रॉन्ग थिंग्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो चला गया, इफ इट इज लॉस्ट इट विल नेवर कम बैक अगेन, प्यार की जगह प्यार दीजिए, बट एट द सेम टाइम लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इतना मत पैम्पर कीजिए, क्योंकि सही गलत सब चीज को हम सही माने, है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ना। एंड डोंट से नेगेटिव थिंग्स टू द चिल्ड्रन, वेदर इट्स टीचर्स और पेरेंट्स, डोंट से नेगेटिव थिंग्स टू द चिल्ड्रन और क्रिटिसाइज देम, एंड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ देम,
0: राइट
1: स्पेशली इन फ्रंट ऑफ देम,
0: राइट
1: बिकॉज अगर हम बार बार मैं बच्चे को बोलूंगी ये बेवकूफ है या वॉट एवर, वो बच्चे के दिमाग में बैठा जाएगा, वो बोलते नहीं मैम ये सुनता ही नहीं है, तो वो नहीं सुनेगा। आप जब बार बार मैं उसको बोलूंगी ये सुनता ही नहीं है, ये बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये नमस्ते नहीं करता है, आप करेंगे वो आपको देख करके जरूर फॉलो करेंगे, आपके बोलने से नहीं करेंगे, पर आपके जो आप जो करेंगे वो उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे वो।
0: Absolutely. बहुत कॉमनली मैं भी ये सुनती हूँ, ये सुनता ही नहीं है, तो हमेशा वंडर करती हूँ कि ये किस तरह की माँ है जो अपने बच्चे के सामने ये बोल रही कि मेरी सुनता नहीं है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं एज अ पेरेंट, तो बहुत दुख होता है
1: उनको। एक्चुअली जो मैं देख रही हूँ बहुत टाइम्स बहुत समय से
0: जी.
1: तो ये देख रही हूँ कि मदर्स चाहती हैं कि नहीं फादर का डर होए, क्यों? जब आपके सामने बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो आप अपने लेवल पे बात करिए, है ना, फादर अपने लेवल पे बात करेंगे, टीचर अगर को कुछ कहना है तो नहीं मैं टीचर का डर बेटा आज मैं तुम्हारे टीचर को बोल दूंगी, मैं स्कूल में बोल दूंगी, क्यों?
0: बिल्कुल
1: आपके सामने गलत कर रहा है आप उसको चेक करिए, इट इज नॉट रॉन्ग एंड द चाइल्ड इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। जब बड़ा हो जाएगा जब समझ आ जाएगी बच्चा जानेगा कि हाँ मेरे मदर ने मुझे चेक किया, मैं गलत था, मदर ने मुझे थप्पड़ मारा,
0: करेक्ट,
1: दैट इज ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप,
0: करेक्ट, वरना गलत बच्चा जी जी
1: गलत नहीं है। अगर कोई चीज के लिए हमें बहुत जोर से डांटना पड़े बच्चा रोए, ठीक है कोई बात नहीं है,
0: एब्सोल्युटली वो भी एक लर्निंग है, प्रोसेस है,
1: दैट इज ऑल्सो लर्निंग, बिल्कुल
0: राइट।
1: बट क्रिटिसाइज कभी भी ना करें बच्चे को, बच्चे के सामने तो कभी भी ना करें, अगर कोई प्रॉब्लम्स है टीचर और पेरेंट मिलकर के सुलझाएं, है ना, और बहुत जरूरी है कि टीचर से बराबर कॉन्टेक्ट रखें पेरेंट्स, ऐसे नहीं पेरेंट टीचर मीट में गए तो बस, वो नहीं, जब अगर कोई प्रॉब्लम है इमीडिएटली जाएं पेरेंट टीचर से बात करें, टीचर को कोई प्रॉब्लम है टीचर पेरेंट से बात करें, बिकॉज दोनों का मकसद तो एक ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पेरेंट चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, टीचर भी चाहती है मेरा बच्चा, दोनों के लिए बच्चा तो उनका अपना है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसके लिए मेरा बच्चा है, टीचर के लिए भी मेरा बच्चा है, तो दोनों एक ही उस पर जब फोकस कर रहे हैं तो बच्चे को तो अच्छा होना ही है जब मिलकर के करेंगे।
0: बिल्कुल, और जब ये इतना क्लियर और यू नो स्मूथ कम्युनिकेशन रहेगा इंस्टेड ऑफ वन पीटीएम मीटिंग जैसे आपने बताया। जी
1: जी हाँ, मैं कभी भी कोई दिक्कत होती है साथ बात करें, और जब तीनों मिलकर के करते हैं उस चीज को, बच्चा पेरेंट एंड द चाइल्ड, चाइल्ड टीचर एंड द पेरेंट, तो 100% द चाइल्ड इज गोइंग टू एक्सेल, द चाइल्ड इज गोइंग टू डू वंडर्स, गारंटीड मैं बोलती हूँ ये चीज।
0: राइट Right.
1: अगर तीनों मिलकर करेंगे हो ही नहीं सकता है कि बच्चा कमजोर हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एक करी कमजोर रहेगी इफेक्ट बच्चे पे आएगा।
0: राइट राइट, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं आपके बच्चों से मिल पाती, बिकॉज आई कैन नॉट इमेजिन हाउ अमेजिंग किड्स यू मस्ट हैव रेज्ड मैम, सच अ ब्यूटिफुल थॉट प्रोसेस, इतना इवॉल्व, इतना विजनरी थॉट प्रोसेस है आपका, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी सटीक और इतनी गहरी बातें साझा करने के लिए। मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ एंड आई एको ऑल द थॉट्स। आई विश ये कॉन्वर्जेशन थोड़ी और चला सकती मैं और थोड़ी और बातें कर सकती, बिकॉज इट्स रियली इंटरेस्टिंग, बट देन समय बलवान है और समय के साथ हमें हमारा शो अब वाइंड अप करना पड़ेगा, तो थैंक यू सो मच नमिता मैम, अगर आपके कोई एंडिंग थॉट्स हैं तो, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू टू हैव दिस विजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम।
1: थैंक यू तनुषा जी, थैंक यू सब व्यूअर्स को, थैंक यू
0: जी,
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी देयर, थैंक यू
0: जी जी। तो दोस्तों, नमिता जी से आज बात करके हमने ये एक्सपीरियंस किया कि रोशनी होती कैसी है, एक रोशनी जो दूसरों को इतना रास्ता दिखाए कि उनका रास्ता आसान हो जाए और जीवन बन जाए, जीवन बदल जाए। टीचर सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो जिंदगियां गढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, मिलूंगी आपसे फिर से एक नए सफर के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के संग। नमस्कार
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जावा की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें।
7: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी, तो लीजिए सुनिए।
8: एक समय की बात है, एक राजा अपने वजीर से बहुत नाराज हो गया। राजा ने उसे बहुत ऊंची मीनार के ऊपर कैद कर दिया। एक तरह से ये देखा जाए तो मृत्यु दंड ही था। ना उतने ऊपर तक कोई भोजन पहुंच सकता था और ना ही उस गगनचुंबी मीनार से कूदकर भागने की कोई संभावना थी। जिस समय उसे ले जाया जा रहा था, लोगों ने देखा कि वो जरा सा भी चिंतित और दुखी नहीं है, हमेशा की तरह प्रसन्न है। उसकी पत्नी ने रोते हुए उसे विदा दी और पूछा, अजी तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? उसने कहा, अगर रेशम का एक बहुत पतला सूत भी मेरे तक पहुंचाया जा सकेगा ना, तो मैं आजाद हो जाऊंगा, क्या तुम ये काम कर पाओगी? पत्नी ने बहुत सोचा, पर इतनी ऊंची मीनार तक धागा पहुंचाने के कोई उपाय उसको समझ नहीं आया। उसने गांव के एक समझदार माने जाने वाले व्यक्ति से पूछा तो व्यक्ति ने कहा, भृंग नाम के कीड़े को पकड़ो, उसके पैर में रेशम के धागे को बांध दो और उसकी मूंछ के बाल पर शहद की एक बूंद रखकर उसका मुंह चोटी की ओर करके मीनार पर छोड़ देना। उसी रात को ऐसा किया गया। वह कीड़ा शहद की गंध पाकर उसे पाने के लोभ में ऊपर की ओर चढ़ने लगा और आखिर

उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली। अब रेशम के धागे का एक छोर कैदी के हाथ में पहुंच गया। अब धीरे धीरे सूत की धागे से डोरी और डोरी से मोटी रस्सी बनती चली गई। उस रस्से के सहारे वजीर कैद से बाहर हो गया और वह अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चला गया। खास बात यही है दोस्तों कि जिंदगी के अंधेरों तमाम उठापटक से बाहर निकलने के लिए रोशनी की एक किरण ही काफी होती है। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, खुद की तुलना किसी और के साथ करना अब बंद कीजिए। आप सबसे बेहतर हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

जिंदगी की शिकायतें। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आते ही बोले, चलिए पेपर के लिए तैयार हो जाइए, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। बच्चों को पहले से इस टेस्ट के बारे में कोई जानकारी ना थी, तो वो घबरा गए, जल्दी जल्दी किताबों के पन्ने पलटने लगे, सर के दिए हुए नोट्स पढ़ने लगे। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब कुछ काम नहीं आएगा, मैं टेस्ट पेपर आपके सामने रख रहा हूं, जब सारे पेपर बट जाएं, आप उसे तभी पलट कर देखिएगा। टेस्ट पेपर बट गए, पर ये क्या, इसमें तो कोई क्वेश्चन प्रश्न था ही नहीं। सफेद पेपर पर एक काला धब्बा बना हुआ था। ये क्या है सर, इसमें तो कोई क्वेश्चन, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, छात्रों ने पूछा। प्रोफेसर बोले, जो कुछ भी है यही है, आपको बस इसी के बारे में लिखना है, आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। बच्चे अपना उत्तर लिखने में लग गए। समय खत्म हुआ, प्रोफेसर ने पेपर जमा कर लिए। लगभग सभी ने ब्लैक स्पॉट को अपनी अपनी तरह से समझाने की कोशिश की थी। प्रोफेसर गंभीरता से बोले, इस टेस्ट का आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं इसके लिए आपको कोई मार्क्स देने वाला हूं, अंक देने वाला हूं, लेकिन इसके जरिए मैं आपको जीवन का एक सच समझाना चाहता हूं। देखिए, इस पूरे टेस्ट पेपर का 99% हिस्सा सफेद है, पर आप में से किसी ने इसके बारे में नहीं लिखा, और अपना 100% 100% सिर्फ उस एक चीज के बारे में बताने में लगा दिया जो मात्र 1% था। यही बात हमारे जीवन में भी देखने को मिलती है। समस्याएं हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होती हैं, पर हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं पर लगा देते हैं। कोई लुक्स को लेकर परेशान है, तो कोई अपने करियर को लेकर टेंशन में है, कोई बस पैसों का ही रोना रोता रहता है। प्रोफेसर ने आगे कहा, जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है, पर हमारा ध्यान कुछ 1-2 चीजों पर अटक के रह गया है, हम खुश हो ही नहीं पाते, जो है उसके लिए थैंक यू कह ही नहीं पाते। हम हमारे परिवार, अच्छे दोस्तों, किसी के लिए भी शुक्रगुजार नहीं हो पाते। हम जीवन की उस 99% चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते जो सचमुच हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए। दिल से फैसला करो तुम्हें क्या करना है, दिमाग अपने आप तरकीब निकाल लेगा।

मशीनरी बेच देना चाहता है। उसके मित्रों ने कहा, अबे कौन खरीदेगा, अभी तक तो सबको पता चल ही चुका है कि पहाड़ पर कुछ है ही नहीं। पर उसने कहा कि कोशिश करने में क्या बुराई है, शायद कोई हो जो मुझसे ज्यादा हिम्मती हो। और फिर एक आदमी मिल ही गया। उसने 3 करोड़ रुपए दिए और पूरा पहाड़ और पूरी मशीनरी खरीद ली। जिसने खरीदा उसे भी सब लोगों ने बहुत मना किया। मित्रों ने समझाया कि सामने वाला व्यक्ति तो पूरा बर्बाद हो गया है, उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, जहां तक पहाड़ खोदा गया है वहां तक सोना नहीं है, ये तो साफ है। मामला काफी हो चुका है, अब उसके नीचे सोना हो सकता है। जहां तक खोदा गया है वहां तक सोना नहीं है, वह आदमी मेहनत कर चुका है, अब आगे मेहनत करनी है। पहाड़ काफी कट चुका है। लोगों ने कहा कि इस झंझट में मत पड़ो, जमीनें बहुत हैं जिन पर ऊपर ही सोना पड़ा है। पर आदमी नहीं माना, उसने पहाड़ खरीद ही लिया। अब आश्चर्य की बात यह थी कि पहले दिन की खुदाई में ही 1 फुट मिट्टी की परत हटाते ही सोना निकल आया। कॉलोराडो की सबसे बड़ी सोने की खदान मिल गई और वह आदमी कॉलोराडो का सबसे बड़ा खरबपति बन गया। संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जल

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कभी

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ। दोस्त, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।

0: पंचायतों से,
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: 1980 के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने, और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए, हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था, छिड़कता जा रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए, पेश खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

नौकरी चांद चुराने आए, चमचा चिलम चकोर चुरैया चूचू चू चल रहा है, भैया चूचू का मुरब्बा, भैया चूचू का मुरब्बा। टकला टकलू टाक टवोरी टकिया टपकी।

सांप सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा सा संग समाए, समय सबक समझाए, खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा है। फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए, फिरते फिरते फेरा फेरी, फेरे से

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: रक्स करती हुई लहरों का है जादू मुझ पर, रक्स करती हुई लहरों का है जादू मुझ पर, चांदनी देती है मौजों को हवा रात भर। हाय, लब कांप गए और थी खामोश जुबां, हाय लब कांप गए और थी खामोश जुबां, हुए खुश रंग तेरे दस्ते हिना रात गए। नमस्कार, आदाब और एक बहुत ही खूबसूरत शाम मुबारक हो आप तमाम सुनने वाले दोस्तों को। 90.8 FM रेडियो की तरंगों पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के इस रूहानी मोड़ पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त हार्थी रॉय और एक बार फिर दहलीज पर दस्तक दे चुकी हूं आपके सबसे अजीज प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि ये जो हमारे भीतर एक खामोशी होती है वो अक्सर किसी और की आवाज बनकर बाहर क्यों आती है? जब दिल के जज्बात हद से बढ़ने लगते हैं तो वो शायरी का लिबास ओढ़ लेते हैं। अल्फाज से एहसास तक महज एक शो नहीं है बल्कि ये आपके और मेरे दिलों के बीच वो पुल है जहां हम दुनिया की आपाधापी को भूल कर कुछ पल सुकून से गुजारते हैं। आज की इस महफिल में हम यादों की कुछ ऐसी पुरानी किताबों को खोलेंगे जिनकी खुशबू आज भी उतनी ही ताजा है। आज सुरों का कारवां कुछ ऐसी राहों से गुजरेगा जहां मोहब्बत का सुकून भी होगा और जुदाई का वो मीठा सा दर्द भी जो सीधे रूह को छू लेता है। तो अपनी मसरूफियात को जरा किनारे रख लीजिए, आराम से टेक लगा लें या आंखें बंद करके लेट भी सकते हैं और खुद को मुकम्मल तौर पर सौंप दीजिए सुरों और एहसासों के इस हसीन सफर के नाम। तो आइए बिना और देरी किए हुए आगाज करते हैं आज की इस खास और सहर अंगेज महफिल का। शेर सुनिए। नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जस्तजू ही सही, नहीं विसाल तो जीने की आरजू ही सही। फिर इसके बाद, नजर न आए तो क्या है, नजर ना आए तो क्या है वो कशिश शौक, हर एक गाम पर सरगर्म गुफ्तगु ही सही। यानी अगर वो महबूब या मंजिल दिखाई नहीं भी दे रही हो तो क्या है, तो भी उस चाहत की कशिश इतनी है आपकी सफर के हर एक गाम यानी कदम पर दिल उसी से गुफ्तगू में मसरूफ रहता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उर्दू अदब के अजीम और बाकमाल शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब के उस शाहकार की, जिसे जब सूफी मौसीकी की बेताज मलिका आबिदा परवीन जी अपनी बुलंद और रूहानी आवाज देती हैं, तो सुनने वालों की रूह वज्द में यानी स्पिरिचुअल आनंद में आ जाती है। आबिदा परवीन जी ने इस गजल को जिस सोज और रूहानी अंदाज में गाया है, वो सीधे हमारे दिलों के बंद दरवाजों को खोल देता है। तो आइए तमाम मसरूफियातों को भूलकर खो जाते हैं फैज़ साहब के इन खूबसूरत अल्फाजों और आबिदा परवीन जी की सूफियाना गायकी में। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल तो जीने की आरजू ही सही। शौक फरमाइए।

रज़िया सुल्तान की उस तारीखी सोज के बाद अल्फाज और एहसास तक के इस बेहद हसीन मोड़ पर चलिए आपको लेकर चलती हूँ उर्दू शायरी के सुनहरी दौर में, जहाँ मोहब्बत के शिकवों में भी एक गज़ब की नफासत और पाकीज़गी हुआ करती थी। अजीम शायर मोमिन खान मोमिन साहब की लिखी इस शाहकार गज़ल को इतिहास के कई दिग्गजों ने गाया है, लेकिन जब हमारे दौर की सबसे सुरीली और मखमली गुलुकारा श्रेया घोषाल ने इस कलाम को अपनी मीठी सी आवाज़ में गाया तो इसने सीधे दिलों के तारों को छू लिया। उनके सुरों में वो मिठास है जो बीते हुए कल की हसीन यादों को हमारे सामने लाख खड़ा करती है। तो चलिए ज्यादा तकरीर न करते हुए श्रेया घोषाल की इन मखमली सुरों और मोमिन साहब के इन लाफानी अल्फाजों के नाम हमारी ये पेशकश गजल के बोल हैं। वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, आपकी नजर।

दोस्तों, श्रेया घोषाल जी की सुरीली आवाज में मोमिन साहब की उस हसीन गजल के बाद अल्फाज से एहसास तक के इस आखिरी मोड़ पर आज मैं आपको एक ऐसे नगमे से जोड़ने जा रही हूँ जो महज एक नगमा नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा है। साल 1983 की मशहूर फिल्म सदमा के इस नगमे को जब भी सुनो तो बिखरती हुई जिंदगी को एक नया हौसला मिल जाता है। मोहतरम गुलजार साहब के लिखे इन बेमिसाल अल्फाजों को उस्ताद इलियाराजा ने साहब ने अपनी जादुई संगीत से संवारा है और जब इस कमाल की धुन को सुरेश वाडेकर साहब ने अपनी पुरकशिश और संजीदा आवाज दी तो ये नगमा हमेशा हमेशा के लिए लाफानी हो गया। गुलजार साहब इस कलाम में लिखते हैं, हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे पे घर भर लिया,

को गले से लगाया है ना। और श्री देवी की याद आ गई। दोस्तों, इस अंतरे के दौरान वो गधे की सवारी करती हैं तो कितनी मासूम सी लग रही होती हैं। वक्त बेरहम है या तकदीर,

तो दोस्तों, आबिदा परवीन की जुस्तजू से शुरू हुआ ये सफ़र, कब्बन मिर्ज़ा की यादों के हिजर हिजर और श्रेया घोषाल के हसीन शिकवों से गुजरता हुआ सुरेश वाडेकर जी की आवाज़ में, ऐ जिंदगी गले लगाने के बाद इस खूबसूरत से

मोड़ पर आकर ठहर गया है। ये वक्त आपके साथ की वजह से कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लफ्ज खत्म हो सकते हैं लेकिन एहसास कभी खत्म नहीं होते, वो तो बस यादों के झरोखों में ताजा रहते हैं। और जब भी हम अकेले होते हैं तो संगीत के साए में लौट आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सुरों और जज्बातों का ये गुलदस्ता आपकी रूह को छू गया होगा। अब वक्त हो चला है आपसे रुख्सत लेने का। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगी कुछ नए अल्फाज, कुछ अनकहे एहसास और कुछ नायाब सुरों के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपनों से बेहद मोहब्बत कीजिएगा और खुश रहिएगा। आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन 90.8 FM पर SN रेडियो और रेडियो टांटिया भी। अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय को अब दीजिए इजाजत। शब खैर, शुभ रात्रि।

0: दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारा किसान है उसकी आजीविका सशक्त बने, साथ ही अपने खेतों में हो रहे बदलावों को वो समझ सके और नवीनतम खेती कर सके, साथ ही जो उन्नत खेती है, जो व्यवसाय में जो लाभकारी खेती है, वह खेती हमारा किसान कर सके। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बदलते इस दौर में हमारी प्रकृति, न केवल हमारी प्रकृति में बल्कि हमारे खेतों में, हमारी कृषि भूमि में भी बदलाव दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का किसान जो है वह व्यवसायिक खेती करने लगा है और अधिक से अधिक उपज की आस में हमारा जो किसान है वो अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करता है, जिससे न केवल हमारी मृदा लेकिन हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन जो है हमारे लिए हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तृत से जानेंगे नाइट्रोजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, साथ ही हम जानेंगे कि हमें इसे अपने खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
6: हूँ आपके साथ मोनालिसा। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुराक है और इसलिए किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसलों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का काफी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसे फसलों के लिए एक दोस्त के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब यही नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो ये हानिकारक भी बन सकता है, यानी कि यही जो नाइट्रोजन है, जो दोस्त है, वो एक दुश्मन का रूप ले सकता है। तो ऐसे में किसानों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए, क्या और किस तरह के नुकसान इससे हो सकते हैं, चाहे पर्यावरण की बात हो चाहे मानव स्वास्थ्य की बात हो, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श के कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज विचार विमर्श कार्यक्रम का जो विषय है वो है नाइट्रोजन, दोस्त भी दुश्मन भी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 3 प्रधान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार,
7: नमस्कार,
6: और इसके साथ ही डॉक्टर आरती भाटिया,
8: नमस्कार,
6: और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर डीके शर्मा भी मौजूद हैं,
9: नमस्कार।
6: आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर।
10: नाइट्रोजन
7: नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल की प्रमुख गैस है। वायुमंडल में इसकी हिस्सेदारी 78% है। ये आम तौर पर निष्क्रिय ही रहती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी गैस इसके संपर्क में आती है, ये तुरंत सक्रिय होकर इस्तेमाल योग्य नए उत्पाद बना लेती है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजन के उत्पाद हैं। इनका इस्तेमाल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में कच्चे माल के तौर पर होता है। हालांकि फसलों के लिए नाइट्रोजन धारी उर्वरक जरूरी खुराक हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक साबित हो रहा है। इन उर्वरकों का कुछ हिस्सा तो पौधे ले लेते हैं, लेकिन बड़ा भाग वायुमंडल में वापस चला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का कुछ हिस्सा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर भूजल में भी चला जाता है। इस तरह ये उर्वरक भूजल और वायुमंडल दोनों को प्रदूषित कर देते हैं। उर्वरकों के अलावा जलते जीवाश्म ईंधन और उद्योगों से भी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं, जो वायु प्रदूषक हैं। दूसरी ओर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। भारत की ही बात करें तो 1991 से 2001 के बीच जहां 52% नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित हुआ था, वहीं 2001 से 2011 के बीच ये मात्रा बढ़कर 69% हो गई। नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर काबू पाने में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है।
5: जी हाँ किसान साथियों, आवश्यकता से अधिक जब हम किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो किसान साथियों, आज का जो हमारा कृषि का जो विषय है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है और इससे क्या लाभ है हमें और क्या इसके हानिकारक और दुष्परिणाम हो सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों की राय।
8: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, जैसा आप समझते हो कि पौधों को अपनी बढ़वार के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ऊपर है वो है नाइट्रोजन। यूरिया का नाम सभी किसान भाई जानते हैं या नाइट्रोजन के जो दूसरे उर्वरक हैं जैसे DAP से भी 18% नाइट्रोजन मिलती है, ये सब बातें आप जानते हैं। आपकी फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है। ये आपकी फसल में कल्ले बढ़ाती है, उसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाती है, वनस्पतिक बढ़वार के लिए बहुत जरूरी होती है, साथ ही साथ ये प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाती है। दूसरे, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो किसान भाई जानते हैं कि पत्तों का रंग पीला हो जाता है, फसल पीली पड़ जाती है, किसानों को चिंता हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें, जो अन्न का उत्पादन हो रहा है, दालों का, तिलहन का, सब तरह का, वहां पे भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। समस्या कब आती है, जब हम इसका ज्यादा उपयोग कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं, उससे काफी कई तरह के इसमें नुकसान होते हैं।
6: बिल्कुल, तो कई नुकसान इससे हो सकते हैं और जो एक चिंता का सबब बनता चला जा रहा है नाइट्रोजन प्रदूषण जिसे अब कहा जा रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि ये नाइट्रोजन प्रदूषण है क्या और क्या कुछ इसके कारण होते हैं।
9: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अगर हम नाइट्रोजन का अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमारी पृथ्वी मृदा में, जल में, वायु में ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि प्रदूषण जो हमारा जो वातावरण है, चाहे इसमें जल है, वायु है, मिट्टी है, उसमें जब नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनिया की मात्रा एक आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हम उसको नाइट्रोजन प्रदूषण की संज्ञा दे सकते हैं। तो हमको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बताया एक बहुत आवश्यक है, लेकिन यही महत्वपूर्ण तत्व अगर आवश्यकता से हम अधिक डालेंगे मृदा में तो वो प्रदूषण का रूप धारण कर लेता है।
6: जी बिल्कुल, तो ऐसे में डॉक्टर भाटिया, आज की स्थिति को अगर हम देखना और समझना चाहे तो हमें बताएं कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है भारत में आज वो कितना है या इस पर।
10: देखिए, आपको अभी डॉक्टर शर्मा ने जैसे बताया कि हम लोग की जो मृदा है, जो पानी है, इसमें हमारा जो मात्रा है नाइट्रोजन की वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका लगातार प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो आप मानेंगे कि जैसे कि पानी में हमारे भूजल में जो नाइट्रेट है उसकी जो मात्रा है जो कि मतलब 40 से 45 ppm होनी चाहिए, जब इससे ज्यादा अधिक हो जाती है तो ये हमारे भूजल का प्रदूषण करता है। तो ये सब जैसे आपने अभी पूछा कि ये जो इनकी मात्राएं हैं हमारे 2000 से 2011 तक जो हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं जो हवा में पाए गए उनकी मात्रा में कम से कम 50% तक बढ़ोतरी हुई। और आप मानेंगे अब 2011 से लेके 2020 तक इनकी मात्रा में 70% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो लगातार आप देखिए कि साल पर साल हमारा नाइट्रोजन के प्रदूषण की मात्रा हमारे वायुमंडल में, हमारी पानी में, हमारी मृदा में बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मतलब नाइट्रोजन उर्वरक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नियमित तौर से नहीं कर रहे।
11: बिल्कुल। तो डॉक्टर दिनेश, जब स्थिति ऐसी है कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है ये वायु, जल, मिट्टी सबको प्रदूषित कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह आशंका होती है कि इसका मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर दिनेश
8: जी, मानव स्वास्थ्य पे भी नाइट्रोजन का बुरा असर आ सकता है, क्योंकि जैसे पानी प्रदूषित होता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर, भूमि के अंदर जो जल है, भूजल है, उसमें कई बार नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है और ये नाइट्रेट कई तरह के रोग भी इंसानों में कर देता है और खास करके बच्चों में ये समस्या लाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की आती है। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि सतह पे भी ये सतही जल जो है उसके साथ भी बह के नदियों में मिल जाता है, समंदर में चला जाता है, वहां भी ये समस्याएं पैदा करता है और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता उसको प्रभावित करता है।
11: बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि और विस्तार से हमें इसके होने वाले नुकसानों के बारे में बताएं, खासतौर पर अगर मानव स्वास्थ्य की ये बात करें तो कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम का अभी जिक्र किया है, तो किस तरह के लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने की जो समस्या है वो नाइट्रोजन के प्रदूषण से हो रही है?
9: देखिए, जो नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है, जब इसकी मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो ये हानिकारक के स्तर पर आ जाता है। जैसे हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर इसकी मात्रा लगभग 100 के करीब पहुंच गई है, कुछ स्थानों पर देखा गया है। तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो हमको इस दिशा में सचेत होने की जरूरत है कि भी किस तरह से हम भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा को नियंत्रित रखें, कौन कौन सी हम शस्य विधियां अपनाएं ताकि हम नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित कर सकें। जैसा कि बताया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, अगर बच्चा उस जो प्रदूषित जल है उसका सेवन करता है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, जो उसकी जो ऑक्सीजन संवहन की जो क्षमता है रक्त में वो प्रभावित होती है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम दिया गया है। जब बच्चा कहते हैं ना नीला पड़ गया बच्चा, तो वो उसी की वजह से होता है। तो इसमें पोषण का विशेष ध्यान रखना है बच्चे का और ऐसा जल इस्तेमाल करना है जो कि प्रदूषित ना हो। और रही बात यह कि मानव स्वास्थ्य पर जैसा बताया वो होता है, और नाइट्रोजन का ना केवल मानव स्वास्थ्य पर, हमारी मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन की अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मृदा अम्लीकृत हो जाती है। जब मृदा अम्लीकृत हो जाती है तो उसमें ऐसी जो माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, जो वहां के सूक्ष्म जीव है, उनकी आबादी में, उनकी संरचना में परिवर्तन आने लगता है। तो एक बहुत बड़े एक विषय है कि किस तरह से हमको नाइट्रोजन के कारण जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। तो इस सबका हमको ध्यान रखना है, जो असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु हैं हमारी जो मृदा है उनमें परिवर्तन हो सकता है, तो इन सब पे अध्ययन की, विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। इस दिशा में बहुत कार्य किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये मृदा, वायु और मानव स्वास्थ्य को हानिकारक ढंग से प्रभावित करता है।
10: इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी, इसलिए कि जल का सेवन करते हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहती है तो उससे हमारे में कैंसर और गॉइटर होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत एहतियात हमें बरतना पड़ेगा हमारे नाइट्रोजन के उर्वरकों को, कि भूजल को ये प्रदूषित ना करें, क्योंकि भूजल का इस्तेमाल आप देखिए ना, जगह जगह पे हमारे को सिंचाई के लिए नहीं, इवन पीने के लिए भी इनका, इस जल का प्रयोग किया जाता है।
8: साथ ही साथ ही इसमें एक बात और है कि जब जरूरत से ज्यादा यूरिया वगैरह हम लगाते हैं जैसे, तो जो नाइट्रेट बनते हैं कुछ तो पानी में चले जाते हैं, कुछ पौधा ले लेता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारी सब्जियां हैं जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है या और भी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण है। तो आपको सोच समझ के प्रयोग करना, क्योंकि ये नाइट्रेट फिर आपकी सब्जी के माध्यम से इंसानों में चला जाता है और उसी तरह के नुकसान कर सकता है जो अभी बताए गए।
11: बिल्कुल। तो डॉक्टर भाटिया हमें ये बताएं कि जैसे कि आप इससे पहले भी हमें बता रही थी कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 70% तक जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन क्या ये समस्या हमारे देश की ही है या ये एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है, साथ ही जिससे जलवायु परिवर्तन से भी हम सभी जूझ रहे हैं, एक वैश्विक चिंता इसको लेकर के हो गई है, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीजें हैं क्या उसमें भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है, भागीदारी होती है नाइट्रोजन पॉल्यूशन की?
10: जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल पते की बात कही है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, जब हम इसको मृदा में लगाते हैं तो इसमें कुछ तो पौधा, जैसे दिनेश जी ने बताया, ले लेता है, लेकिन कुछ ये जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है हमारी मृदा से, जो कि अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, ये हमारे, जब इसका उत्सर्जन होता है तो ये हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, ये जब जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती है तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं हमारी धरती पे और फिर विकिरित होती हैं, इन किरणों को, जिनको कि हम IR रेडिएशन बोलते हैं, ये इन किरणों को, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये इनको अवशोषित करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे, जैसे जैसे एक जो इसको अवशोषित करने के बाद में ये धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो कि हमारे वायुमंडल का ये तापमान बढ़ाती हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हम जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसके लिए सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर ये ही गैसें जो है नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका एक जो कण है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 300 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है।

0: तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे औद्योगिक धंधे हैं, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे ज्यादातर इसका उत्सर्जन होता है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारी धरती से, कृषि के क्षेत्रों से निकलती है, क्योंकि जहां नाइट्रोजन का प्रयोग होता है उस जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ही होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, 1 और 300 तो इतना ज्यादा गुना उसकी क्षमता है वायुमंडल में गर्मी पैदा करने की।
1: जी, यानी कि भागीदारी भी इसकी सबसे ज्यादा है। और जो प्रदूषण का स्तर है जैसा कि बढ़ रहा है डॉक्टर दिनेश, और उसमें हम देखते हैं कि जो कृषि का योगदान है नाइट्रोजन प्रदूषण में वो सबसे ज्यादा है। बाकी भी कुछ और क्षेत्र है जिनका, जिनकी भागीदारी इसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कृषि का ही आता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे किसान है वो बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर पर जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है इसका। तो ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए कि ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी रोकथाम हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
2: बिल्कुल, जो यूरिया है या नाइट्रोजन है इसका बहुत से राज्यों में, हमारे बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही असंतुलित प्रयोग हो रहा है। मोटे तौर पर यह बताया जाता है कि 4:2:1 के अनुपात में उर्वरकों का, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशधारी जो उर्वरक है इनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बहुत ही असंतुलन हो गया है हमारे नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश का। यानी फास्फोरस और पोटाश की तुलना में नाइट्रोजन का कई गुना प्रयोग किसान भाई कर रहे हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में यह अनुपात जो है लगभग 22:24:9:1 हो सकता है। मतलब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज हो रही है, फास्फोरस पोटाश का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। नाइट्रोजन से आपकी फसल गिर सकती है, जरूरत से ज्यादा उसकी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटाश पौधों को हमारे मजबूती देते हैं, एक तरह की ताकत देते हैं उसको, जिससे पौधा सीधा खड़ा रह सके। इसी तरह से कीड़े मकोड़े, बीमारी फिर ज्यादा आती है नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग करने से, जिससे आपको फिर पीड़कनाशियों का, रसायनों का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। यानी ये समस्या है। इसमें आपको नाइट्रोजन पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसको आप कम करके फास्फोरस और पोटाश भी डालें, साथ ही साथ जिंक है या सल्फर है, गंधक आजकल बहुत जगह जरूरत पड़ रही है, तो इन सब तत्वों का आपको संतुलित प्रयोग करना है, जिससे कि नाइट्रोजन के कुप्रभावों से आप बच सकें। और संतुलित 4:2:1 मोटे तौर पे, जैसे किसान भाई जानते हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, क्या आप भी कोई सुझाव देना चाहेंगे, विवेकपूर्ण इस्तेमाल करे किसान यूरिया का, इसके लिए क्या उन्हें करना चाहिए?
3: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि हमको 4:2:1 के अनुपात में इनको डालना है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट से हरी खाद है उनका प्रयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम हरी खाद या ऑर्गेनिक इनपुट से या जो हमारे घूरे की खाद जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट है, उससे क्या करते हैं कि हम मृदा में कार्बन के स्तर को बरकरार रख सकते हैं। हम कहते हैं कि कार्बन इज द लॉर्ड ऑफ द रिंग, यानी कि अगर आपकी मृदा में कार्बन व्यवस्थित है तो बहुत सारे तत्वों का चक्रीकरण अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। तो कार्बन इनपुट बहुत जरूरी है, मतलब इनके सही ढंग से काम करने के लिए। तो कार्बनिक पदार्थों का चक्रीकरण मृदा में होना चाहिए, हरी खाद का हम प्रयोग करें तो इस तरीके से हम। और एक दूसरी बड़ी बात है कि जो हम सीवेज स्लज इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसको जो हमारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हमको यूरिया की खपत आधी करनी है, तो वो किस तरह से आदि होगी? वो इस तरह से आदि होगी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जो हमारे जो कार्बनिक खादे हैं, जो हरी खादे हैं, ये जो सीवेज स्लज है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका हम समन्वित ढंग से अपनी खेती में इस्तेमाल करें तो हम इसको काफी हद तक हल कर सकते हैं।
4: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना, अगर हम नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार अगर हमारे खेतों में हम प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से हमारे खेतों में इसे ना डालें, तो कहीं ना कहीं हम इसका जो दुष्परिणाम है इसे हम बच सकते हैं और हमारे खेतों की मृदा को, हमारे जल के स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नाइट्रोजन क्या हमारे लिए यह दुश्मन है या हमारा मित्र है, तो कैसे हमें नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके कैसे हम जो हमारे मिट्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो हमारी भूमि है वो जो ठोस बन रही है उससे भी हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो आइए इसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे एक्सपर्ट की मदद से।
1: आने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है
2: जी,
1: वो उसमें से यूरिया जो है जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा लगता है, या सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आप कोई भी 80% तक हमारा यूरिया का ही उपयोग होता है
2: जी।
1: तो जो ये हमारा रासायनिक उर्वरक है ये 80% तक जिम्मेवार है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम ना करते हुए, अगर हम कम नहीं कर पाते तो उसका सही तरह से हम उपयोग करें। तो जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि भाई हमें उर्वरक को जैसे 4-2-2 की मात्रा में उसको लगाना है, लेकिन आप ये देखिए जो 4 भाग नाइट्रोजन के लगाने हैं वो हम इकट्ठा ना लगाएं, वो हम उसको बांट के स्प्लिट एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं कि भाई सही समय पे सही अनुपात में हमें उर्वरक लगाना है। उसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं एक बड़ा एक ये छोटा सा यंत्र है जो कि जिसको कि हम बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, ये बहुत ही सस्ता सा, कुल मिला के 50 से 100 रुपए तक की इसकी मूल्य है। तो इसका प्रयोग करते हुए अगर आप नाइट्रोजन के उर्वरक को लगाएंगे तो इसमें क्या है, आप देखेंगे इसमें कई तरह के आपके जो हरे रंग के वो है माप
2: पट्टियां
1: बनी है। तो आप ये देखिएगा कि ना आपको जैसे ये है ये वाली जो बीच की पट्टी है, तो अगर इससे एक तरफ हल्की है एक तरफ गहरी है, तो आपको अपने पौधे के ऊपर की तीसरी पत्ती आप लेंगे और आप इसके साथ में पत्ती का मिलाव करेंगे तो आपको पता लग जाएगा अगर पत्ती का रंग हल्की तरफ आ रहा है या गहरी तरफ आ रहा है। अगर गहरी तरफ आ रहा है इसका मतलब आपको उर्वरक नहीं लगाना, और अगर हल्की तरफ आ रहा है, पीलेपन में आ रहा है, उसका हरा रंग कम आ रहा है, तब आप अपना उर्वरक का जो एक भाग है, जैसे कि आपने अगर 100 किलो उर्वरक लगाना है तो आप इकट्ठा एक ही टाइम पे उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाग करके लगाएंगे। अगर 25 किलो 50 किलो एक टाइम पे लगाएंगे तो उससे क्या है, पौधा उसको सही मात्रा में ले पाएगा और जो हमारे उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण में जा रहा है, जो हमारा भूजल में जा रहा है, उसमें हम काफी कमी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे कि आपको पता लग सकता है कि भाई वाकई में हमारे को उर्वरक लगाने की आवश्यकता है या नहीं। ये मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसके हिसाब से आप अपने 8-10 पौधों को मिलाव करके देख लीजिए, और अगर आपको पता लगता है कि ज्यादातर इसकी वजह इसका जो रंग है वो हल्की साइड पे है, हल्का हरा है, तब तो आप डेफिनेटली उर्वरक लगाइए। लेकिन अगर बीच के पट्टे से दाएं तरफ है तो ज्यादा गहरे में है, तब इसका मतलब आपके पौधे को उर्वरक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उर्वरक को 1 हफ्ते या 5-7 दिन के लिए टाल सकते हैं। तो इससे आपका उर्वरक की मात्रा में भी कमी आएगी और जो हमारा ये जो प्रदूषण जो बताया है इसमें बिल्कुल बहुत सुधार होगा।
2: बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, जैसा कि हम देखते हैं, आपने भी बताया कि जो हमारे किसान है वो जरूरत से ज्यादा उर्वरक जो है यानी कि मात्रा में वो काफी ज्यादा डाल देते हैं अक्सर, कहना ये भी रहता है कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है वो भी एक समस्या है, और ऐसे में उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा अगर हम मात्रा में डालेंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा। तो पहले तो हमें ये बताएं कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है उसके क्या कारण होते हैं और कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है।
3: देखिए, जैसे किसान भाई यूरिया का या नाइट्रोजन धारी किसी भी उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले वो पौधे के काम आता है, कुछ हिस्सा पौधा ले लेता है, बाकी खास करके नाइट्रोजन इसका नुकसान एक तो वाष्पीकरण से हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन होता है, अमोनिया बन के ऊपर उड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक बहुत तेज बारिश आ गई तो यूरिया धुल के आपका नीचे चला जाता है जमीन में, या नाइट्रेट बनते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और धान के केस में तो ये नाइट्रेट जो है है विनाइटीकरण होके ये हवा में चले जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, बार बार चर्चा हो रही है इसकी, नाइट्रोजन गैस के रूप में भी ये उड़ जाते हैं, तो ऐसे करके यूरिया का नुकसान हो जाता है। इस फसल में आपने डाला तो इसी फसल में यूरिया लगभग समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो उपयोग क्षमता है वो कम हो जाती है। मोटे तौर पर नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता 30-40% है, इसके आसपास है, यानी जो बाकी 60% हिस्सा है इसका वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में चला जाता है, चाहे पानी में जाए चाहे हवा में जाए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी दिशा में जो है वो सरकार ने भी प्रयास किए, आगे भी कर रही है, और किसानों
2: नीम लेपित यूरिया का जो इस्तेमाल है जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि किस तरह से जो नीम लेपित यूरिया है वो इस समस्या का निदान साबित हो सकता है।
4: जी, जैसा सबसे बड़ी बात बताई दिनेश जी ने कि हम लगभग 30-40% हमारा जो नाइट्रोजन है इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी जो लगभग 60% है वो वायुमंडल में चला जाता है, चाहे वो अमोनिया के फॉर्म में, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में या नाइट्रेट के रूप में। तो इस सब क्षति को रोकने के लिए भारत सरकार की एक ने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको नीम लेपित कर सकें, ताकि वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन का काम करता है और उसकी वजह से जो उसका जो विघटन है वो कम होता है और वो लंबे समय तक पौधों को उपलब्ध हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहल है भारत सरकार की, और जिसकी वजह से बहुत से हमारी जो यूरिया की बचत होगी और हमारा पर्यावरण संतुलित रह पाएगा।
2: बिल्कुल
1: डॉक्टर भाटिया, इसी में मैं बताना चाहूंगी कि अब जो हमारा बैग है यूरिया का वो 50 किलो की जगह पे 45 किलो का हो गया है। नीम लिपित यूरिया कम से कम आप देखिए ना 50 और 45, 10% तक हमारे उर्वरक की बचत इसके कारण किसान भाइयों के लिए वैसे ही हो रही है, और आप देखिए आपकी उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है। तो ये तो हमारी सरकार का एक बहुत ही बढ़िया ये
2: कदम उठाया गया है। किसान की जो लागत है वो भी कम हो रही है और इसका जो बेहतर इस्तेमाल हो रहा है इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है, तो ये दोहरा फायदा है किसानों के सामने अगर वो नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दिनेश, इसके अलावा और कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए जो नाइट्रोजन की भरपाई है उसे फसलों में करने के लिए? जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में भी हमें बताइए।
3: जी बिल्कुल, जैसे नाइट्रोजन है ये हमारे कई स्रोत हैं इसके, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, यूरिया है, एनपीके फर्टिलाइजर आ रहे हैं आजकल 17-17-17, 19-19-19 तमाम तरह के आ रहे हैं। इसी तरीके से अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया था कि जो हमारे जैविक खाद है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, ये सब साथ ही साथ इनके अलावा जो जैव उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन बनाने का काम करते हैं एक तरह से, राइजोबियम है या दूसरा आपका एजोटोबैक्टर है, एजोटोमोनास है, इन सारों का भी टीके किसान भाइयों को लगाने चाहिए। यानी संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है पहली, ये अलग बात है, और दूसरा जो हमारे पोषक तत्व के अलग अलग स्रोत है, जैविक स्रोत, रासायनिक स्रोत और आपके जैव उर्वरक, इनका सही सामंजस्य आपको बिठाना है। जहां तक आपके रासायनिक उर्वरकों की बात है तो इसमें समय की बात तो हमने बता दी कि भाई कब इसको लगाना चाहिए, लीफ कलर का चार्ट प्रयोग काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं स्रोत की, इसमें भी क्या होता है कि जैसे धान के केस में यूरिया के मुकाबले अमोनियम सल्फेट ज्यादा फायदा करता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर आता है वो भी काफी फायदा करता है। अभी अभी हाल में कुछ कंपनी बना रही है यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, ये द्रव फॉर्म में होता है, ये भी काफी अच्छा स्रोत है। यानी जो स्रोत होते हैं उनमें भी हमें विविधीकरण करना है, खाली यूरिया पर निर्भर ना रहे। एनपीके फर्टिलाइजर है, एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग आप करें तो साथ में फास्फोरस और पोटाश भी चली जाती है। इसी तरीके से जो मेथड है लगाने का, जो तरीका है, उसमें भी हमें परिवर्तन लाने हैं। जैसे यूरिया का छिड़काव करके हम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं, कुछ किसान भाई डीएपी को छिड़कते हैं, साथ ही साथ एनपीके फर्टिलाइजर को भी छिड़का जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिप सिस्टम से जो फर्टिगेशन सिस्टम है उसको अपना के भी हम उर्वरकों की क्षमता बढ़ा सकते हैं।
2: बिल्कुल, ड्रिप सिस्टम की यहाँ पर आपने बात की है, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी इस पर और थोड़े विस्तार से किसानों को बताएं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल वो अपनी खेती में कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश
3: जी बिल्कुल, आजकल ड्रिप सिस्टम खास करके जहाँ पे पानी की कमी है और पानी भी हमें बचाना है और उर्वरक भी बचाना है
2: जी।
3: तो ऐसी दशा में सरकार भी काफी मदद कर रही है ड्रिप सिस्टम लगाने का, सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं। इसमें आप फर्टिलाइजर का अटैचमेंट लगा सकते हैं और जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर हैं, जल में विलेय फर्टिलाइजर हैं, उनका आप बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से ड्रिप सिस्टम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई कर भी रहे हैं, समझते भी हैं, और निश्चित तौर पे पानी की बचत के अलावा इससे आपके उर्वरकों की बचत होगी और नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है उसमें भी आपके कमी आएगी फर्टिगेशन।
2: डॉक्टर शर्मा, जैव उर्वरकों की हम बात कर रहे थे, इससे पहले मैं चाहूंगी और विस्तार से बताएं किस किस प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। राइजोबियम, एजोला जैसे कई विकल्प उनके पास है और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में हमें बताएं।
4: जो जैव उर्वरक हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं। जैसा कि बहुत सारी जो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो अघुलनशील अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या करता है, जो फॉस्फेट है उसको सोल्युबल, उसको विलेय अवस्था में पौधों को उपलब्ध करा देता है। ऐसे ही एजोटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि मृदा में उपस्थित होने के कारण जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपस्थित करा देते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, इनके उसके

0: अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं, ना केवल वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, वो कई बार डिजीज जो हमारी जो जड़ों में रोग लगते हैं उसको भी एक हद तक नियंत्रण करने में योगदान देते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अभी हमारी सरकार भी और बहुत सारे शोध संस्थान इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमको जो जैव उर्वरक है अपनी खेती में उनको इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ताकि हम केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर ना रहे, उससे हम 15 से 20% इवन 25% तक हम रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगी, जैसे अगर फलीदार फसल किसी ने लगाई है या अनाज किसी ने लगाया है तो किस तरह के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, कुछ और विस्तार से उन्हें बताएं।
2: ये जैसे कि जो आपकी ये फलीदार फसलें हैं इनको तो वैसे आप देखिए कि इनको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें तो अगर आप जैव उर्वरक की थोड़ी सी मात्रा भी जो सीड का ट्रीटमेंट करके राइजोबियम के साथ में सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीज का ट्रीटमेंट करके अगर हम इसकी बुआई कर देते हैं तो केवल 10 से 20 किलो का ही अगर हम उर्वरक इसमें लगाएंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके बाद एक और फायदा इसका रहेगा वो ये होगा जो कि ना जब देखिए कि अगर जो जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उन लोगों के इन जीवाणुओं में ये भी क्षमता होती है कि जो ड्राउट जो कि कह रहे हैं ना सूखा जब मॉइस्चर की कमी या नमी की कमी हमारी मृदा में रहती है तो उसको भी किस तरह से भरपाई कर सके, तो ये भी इसका जो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है जो पौधे में थोड़ा सा विचलित हो पड़ते हैं पौधे उसको ओवरकम करने में ये जो हमारे सूक्ष्म जो कीटाणु है ये बहुत इनका बड़ा योगदान है। तो आजकल जलवायु परिवर्तन के टाइम पे जबकि आपका सूखा जो और जो बाढ़ टाइप की और ऐसे मतलब जो ज्यादा गर्मी हो रही है तो ऐसे में ये मतलब रासायनिक उर्वरण के साथ ये जैव हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको जो ये वायुमंडल के कष्ट हैं इनको निवारण करने में आपकी क्षमता किसान भाइयों आपकी क्षमता में सुधार होगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, ये बताएं कि क्या फसल चक्र में भी किसी तरह का बदलाव करके किसान अत्यधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच सकते हैं?
3: फसल चक्रों का अपनाना बहुत जरूरी है और खास करके पोषक तत्व प्रबंधन में फसल चक्रों का विशेष योगदान होता है। अगर हम एक ही तरह की फसलें लगातार लेते रहते हैं जैसे आपकी अनाज वाली फसलें धान गेहूं तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की एक खास परत से ही पोषक तत्व लिए जाते हैं और उस परत के अलावा नीचे जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टी में उनका प्रयोग नहीं हो पाता। नाइट्रोजन अपनी जगह जहां किसान भाई डालते हैं खिसक के थोड़ा नीचे चली जाती है। अगर हम फसल चक्र में अलग अलग गहराई की जो जड़ें हैं जिनकी अलग अलग गहराई होती है जड़ों की उस तरह की फसलों का चक्रण करें तो पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल होता है। दूसरे जो हमारे फसल चक्र हैं इनमें हमें दलहनी फसलों का समावेश करना बहुत जरूरी है।
1: जी,
3: तो दलहनी फसलों के समावेश करने से आपकी जो यूरिया की जरूरत है और जो नाइट्रोजन की जरूरत है उसमें निश्चित तौर पर कमी लाई जा सकती है। जैसे धान से पहले धान काट बोने के पहले अगर आप उसमें दलहनी फसल ले लेते हैं गर्मियों में जैसे मूंग की फसल है या हरी खाद ले लेते हैं तो फिर धान में आपको लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कम डालनी पड़ेगी, यानी आपको लगभग आधी नाइट्रोजन आपकी पहले से ही बचत हो जाती है। तो फसल चक्रों का विशेष महत्व है आपके नाइट्रोजन बचाने में और इसकी उपयोग क्षमता बढ़ाने में भी बहुत योगदान है।
1: बिल्कुल,
2: जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि आप दलहनी फसलें लीजिए तो जैसे कि आप धान से पहले दलहनी फसल ले रहे हैं तो ये पाया गया है कि उसका जो आपको मतलब उसका नाइट्रोजन का प्रभाव धान में तो मिलेगा उसके बाद अब जब गेहूं की फसल लेंगे तो तब भी आपको जैसे कि इन्होंने बताया ना कि रासायनिक उर्वरक तो लगाते ही एकदम थोड़े से अगर सिंचाई कर दी या तापमान बढ़ गया तो या तो वो हवा में चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, लेकिन ये जो हरी खाद है या दलहनी फसलें हैं ये धीरे धीरे हमारे मृदा में मिनरलाइज होंगी, इनका नाइट्रोजन जो है वो हमारे पौधों को धीरे धीरे मिलता है और लगातार मिलता रहता है और लंबे समय तक मिलता है, तो अगली फसल में भी आप देखेंगे इसका आपको अनुकूल प्रभाव इसका दिखाई देगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, इन बातों में अगर आप भी को जोड़ना चाहे साथ ही सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है इसे कम करने की दिशा में सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास हो रहे हैं।
0: देखिए जैसा बताया कि हम अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं या दलहनी फसल लगाते हैं तो दिनेश जी ने बताया कि लगभग 60 किलो हम यूरिया की बचत कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर
1: जी, जी।
0: तो 60 किलो यूरिया का मतलब है कि हम कितनी पर्यावरणीय क्षति को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरकों की बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरक बनाने में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है
1: जी।
0: तो हम एक तरह से पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, जो पारिस्थितिक सेवा है जिसको हम इको सिस्टम सर्विसेज कहते हैं वो हम कर रहे हैं। अगर हम हरी खाद दलहनी फसलें, जो दलहनी फसलों का मुख्य कार्य है, मतलब एक यह है कि वो पर्यावरण की अमूर्त रूप से सेवा कर रहे हैं अगर हम देखें तो। तो इसी तरह से अगर हम भारत सरकार की नीतियों की बात करें तो सबसे बड़ी नीति है सॉयल हेल्थ कार्ड
1: जी।
0: सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि हम लोग अपने शरीर की जांच कराते हैं, हमको पता है हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा शुगर लेवल कितना है, हमारे कोलेस्ट्रॉल कितने हैं। तो ये सब चीज ध्यान में रखकर हमको अपनी धरती माता की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन है, जिंक है, उन सबका अगर हमको ज्ञान रहेगा तो हम उनको समुचित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि हमारी जो मृदा है उसमें ऑलरेडी 200 किलो नाइट्रोजन है या इसमें इतना ऑलरेडी फास्फोरस है, इतना पोटेशियम है, इतने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो हम न केवल अपनी जो हमारी लागत है उसको कम कर पाएंगे बल्कि हम प्रदूषण को भी काफी हद तक हल कर सकते हैं। तो जो सॉयल हेल्थ कार्ड है एक बहुत अच्छी स्कीम है और वो सभी किसानों को मुहैया कराया जा रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए। और दूसरी स्कीम यह है कि किस तरह से नीम लेपित यूरिया की हम बात कर रहे हैं, नीम लेपित यूरिया के माध्यम से हम जो नाइट्रिफिकेशन लॉसेज हैं, जो हमारे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और जो उसकी जो हम नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण कदम है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमको अपनी यूरिया की खपत को 2022 तक कम करना है। और दूसरी चुनौती यह है कि अपनी खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपनी खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखना है और अपनी यूरिया की मात्रा को आधा करना है।
1: जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है और जो जैविक खेती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी भूमिका और इसमें काफी फायदा होता है। डॉक्टर दिनेश जानना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती है वो किस तरह से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसके सुधार में एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करती है और किसान का हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान भी बहुत ज्यादा इस ओर बढ़ने भी लगा है।
3: जी बिल्कुल, जैसे कि बात हुई अभी कि भारत सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो पहला जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड करना है, दूसरा यूरिया आ गया नीम लेपित यूरिया, तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से हम यूरिया का प्रयोग बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से, क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि जैविक खेती अपनाने पर हमें रासायनिक उर्वरकों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा, ना उसमें नाइट्रेट पोल्यूशन की समस्या आएगी, ना उसमें हमारे पेस्टिसाइड आएंगे। तो काफी हद तक जैविक खेती सभी तरीके के जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है उनमें कमी ला सकती है और विशेषकर जो मृदा का स्वास्थ्य है उसमें तो ये बहुत बढ़ोतरी लाती है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें हम जैविक शोर डालते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब डालते हैं, लेकिन साथ साथ आजकल हम फसल अवशेष भी डालते हैं अपने जैविक खेती में जिनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है
1: जी।
4: किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइटिया 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्या भील 90.8 FM। हम लगातार नाइट्रोजन के लाभ और हानि के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हमें और कितना प्रयोग करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप एक्सपर्ट की मदद से, एक्सपर्ट की राय से हम इन महत्वपूर्ण जानकारियों को ले रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे गेहूं की कटाई हो जाती है, उसके बाद जो उसका जो अवशेष बच जाता है, साथ ही हम धान की भी कटाई करते हैं उसका भी अवशेष बच जाता है, तो अधिकतर किसान क्या करते हैं उसे जला देते हैं, तो क्या यह हमारे लिए उचित है, हमारे खेतों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या यह उचित है? आइए जानते हैं और यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: उसे जला देते हैं और वहां पर जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ाने में बल्कि और ज्यादा ये काम आता है, लेकिन इसका आप बता रहे हैं कि बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर भाटिया यहां पर हमें और विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये जो फसल अवशेष है इसका हम बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, उसको उससे प्रदूषण न करके बल्कि मिट्टी की सेहत को ही और बेहतर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
2: जी हाँ, बिल्कुल दिनेश जी ने सही बोला कि ये जो फसल अवशेष है, ये देखिए फसल अवशेषों में आपका नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो ना हमारा कुछ तो हमारे जो उसमें चला जाता है, जो हम काट लेते हैं, जो हिस्सा बचता है उसके अंदर आपको नीचे का हिस्सा तो मिल जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो हम काट लेते हैं और उसको जला लेते हैं, जिसको कि आपने पराली कहा, तो मैं किसान भाइयों से गुजारिश है कि पराली बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण तो हो ही रहा है बहुत हद तक, लेकिन आप अपना जो कीमती जो है पैसा उसको मतलब बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन या तो आप इसका कंपोस्ट बना लें और आप अपने खेतों में लगाएं, अगर

0: चीज और है कि खाली प्रदूषण ही नहीं कम होगा, आप अगर फसल अवशेष आपके उस पे मृदा पे है तो आपको एक सिंचाई में भी कई बार ये फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है फसल अवशेषों की वजह से एक नमी बनी रहती है
1: जी।
0: तो आपके मिट्टी में वो नमी रहती है तो आप अपनी सिंचाई भी बचा सकते हैं, तो दोनों तरफ से ये फायदेमंद है। तो इससे आपका नाइट्रोजन का उर्वरक की जो उपयोगिता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल, इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी और नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं जिनके बारे में।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: नाइट्रोजन दोस्त भी दुश्मन भी, और इस विषय पर चर्चा हमने की है कि किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं कई प्रकार के, और कैसे इस नुकसान को कम करने के लिए खेती के तौर तरीकों में किसानों को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। तो कई तरह के नुकसानों की चर्चा हुई है, लेकिन डॉक्टर शर्मा इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैव विविधता का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है, क्या जो नाइट्रोजन दूषण है इसकी भी भागीदारी है जैव विविधता के खतरे को लेकर, और ऐसे में इन समस्याओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: जी, जो जैव विविधता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखें हम हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं
1: जी,
3: तो इस बार जो जैव विविधता का जो ध्येय वाक्य था उसका थीम था अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में है
1: जी।
3: जो इस बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका भी जो ध्येय वाक्य था सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जैव विविधता के ऊपर भारत सरकार ने कानून भी बनाया है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया है। तो अगर हम देखें अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है पर्यावरण में तो उससे जैव विविधता पर क्या फर्क पड़ता है, तो दूसरी एक सबसे बड़ा होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे संवेदी वनस्पतियां होती हैं, संवेदी जीव जंतु होते हैं जो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा को सहन नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनकी आबादी उनकी संख्या कम होती जाती है। एक शोध के मुताबिक देखा गया कैलिफोर्निया में कि जब नाइट्रोजन का स्तर बढ़ा तो वहां पे जो प्राकृतिक वनस्पतियां 70% तक कम हो गई। वहीं ये तो बात हुई, दूसरी बात होती है अगर नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यानी कि सुपोषण जिसको हम बोलते हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उसकी भी जैव विविधता पर खतरा मंडराता है। और तीसरी बात यह है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ सकता है। तो अगर हम ज्यादा जिस तरह से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो न केवल हमारे स्थलीय जीव जलीय जीव एवं माइक्रोब्स जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं जो कृषि के लिए मित्र हैं उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो जैव विविधता एक बहुत ही संवेदनशील इशू है और इस पर हमको देखना है, इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है कि नाइट्रोजन अधिक मात्रा में नाइट्रोजन किस प्रकार जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है।
1: बिल्कुल, तो जैव विविधता एक संवेदनशील मुद्दा है और इसी के साथ इससे जुड़े हुए हैं पर्यावरण से जुड़े ये तमाम पहलू जिसमें कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो भी शामिल है। तो ऐसे में इससे जुड़ी जो चिंताएं हैं सिर्फ भारत की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंताएं की जा रही है और खासतौर पर नाइट्रोजन प्रदूषण की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब एक जिसका नाम है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और भी विस्तार से हम जानें। डॉक्टर भाटिया इसके बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में हमें बताइए।
0: दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब ये जो है एक कार्यक्रम है जो कि यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन जो ये इसके लिए अनुदान दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 50 जो अनुसंधान केंद्र हैं वो जुड़े हुए हैं और आप ये देखिएगा कि इसमें से 18 अनुसंधान केंद्र भारत के हैं। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के हर पहलू को, कृषि का पहलू है, इसके अलावा इसमें जो आपके जो वन क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से बढ़ती नाइट्रोजन की मात्रा उनको भी नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे जलीय जो कोरल रीफ्स हैं, तो हर पहलू नाइट्रोजन का, जहां जहां नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है ये सब इसके अंदर इस पे अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन प्रमुख जो है वो जो 8 हमारे देश हैं साउथ एशिया के, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, तो और ये सारे हमारे 8 जो

0: दक्षिण एशियाई कंट्री जो देश हैं इनके ऊपर ज्यादातर इनमें इनके रिसर्च की जाएगी कि किस तरह से हम अपनी कृषि को बेहतर बना सके, कम उर्वरक में ज्यादा पैदावार ले सके, तो इसके लिए कौन से तरीके, कौन से हमें जो उर्वरक अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखें और प्रदूषण की मात्रा भी कम करें और पैदावार को भी बढ़ा सके। तो एक आप बोलिए एक लाभदायक कृषि जो प्रॉफिटेबल कहते हैं ना, लाभदायक कृषि लेकिन स्वच्छ कृषि, तो ये दोनों इसके बहुत बड़े पहलू हैं दक्षिण एशिया नाइट्रोजन हब के।
1: डॉक्टर शर्मा को जोड़ना चाह रहे हैं
2: इसमें, जैसा कि भटिया जी ने बताया कि 22 अक्टूबर को कोलंबो में एक कोलंबो घोषणा की गई, उसमें जो जैसा कि बताया साउथ एशियन कंट्रीज और भी बहुत सारे देश पूरे विश्व के, तो उन्होंने स्वतः स्फूर्त ढंग से घोषणा की कि भाई हम नाइट्रोजन की खपत को खेती में किस बार कम करेंगे। और ये जो नाइट्रोजन का मुद्दा है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसपे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग SANH के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से एक नाइट्रोजन डिक्लेरेशन, एक कोलंबो डिक्लेरेशन की नाम दिया गया उसको कि भाई सारे देश अपने स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने आप को कहेंगे कि भाई हमको इस क्षेत्र में नाइट्रोजन का ये उपयोग कम करना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, विस्तार से हमने चर्चा की है आज की किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका जो इस्तेमाल है वो नुकसान पहुंचा सकता है पर्यावरण को, और इसका किस तरह से इसे कम करने के लिए खेती के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, और इसके लिए जो प्रयास है वो केवल हमारे भारत देश में ही नहीं हो रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में आपको किस तरह की चुनौतियां सामने आती हुई दिख रही हैं और कैसे इन चुनौतियों का सामना किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में?
3: जी बिल्कुल, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना और साथ साथ नाइट्रोजन का प्रयोग हमें कम करना है, तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना एक बहुत गंभीर चुनौती है कि किस हद तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को उर्वरकों द्वारा कम कर सकते हैं जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की भी मांग या खाद्य पदार्थों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और उधर हम बहुत ज्यादा मान लो उर्वरकों की कमी कर दें तो वो बहुत मुश्किल होगी उसकी प्राप्ति। तो इस लेवल तक, इस स्तर तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को कम करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित ना हो। लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो भी हम नाइट्रोजन के उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस क्षमता के साथ करें, इस दक्षता के साथ करें कि प्रदूषण भी कम हो, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे और नाइट्रोजन के जो प्रदूषण है इसमें भी हमें कमी लानी है। इस दिशा में मोटे तौर पे किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग करना होगा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना होगा और सही समय पे सही मात्रा में सही दर से और सही विधि से उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें फर्टिगेशन का विशेष महत्व है, स्प्लिट एप्लीकेशन, नई नई विधियां आ रही हैं उनका प्रयोग करके, और साथ साथ आजकल कुछ किस्में भी विकसित की जा रही हैं जो कम नाइट्रोजन की दशा में अच्छी पैदावार दे सकती हैं।
4: जी हाँ किसान साथियों, हमें आवश्यकता अनुसार उसकी मात्रा में हमें अति नहीं करनी है, आवश्यकता के अनुसार ही हमें रसायनों का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी फसल मिल सकती है, साथ ही अपना पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, हमारी मृदा को बचा सकते हैं और हमारे जल स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे हमें जरूरत है एक मापदंड का इस्तेमाल करके हमारे खेतों में प्रयोग करने की। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम टेबल 90.8 FM के साथ।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
0: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: घर सूर्य घर।
7: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो, टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, 90.8 FM।
8: किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, आप सभी का एक बार पुनः हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM 6 बजे की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि हमारा जो किसान है वो कृषि में हो रहे बदलावों को समझे, साथ ही कृषि में जो नए तकनीकी है उसे जाने पहचाने और कैसे हम कम लागत में अच्छी से अच्छी फसल ले सकें, इन सब जानकारियों को आप तक पहुंचाने के इन प्रयासों में रेडियो टांडिया भील 90.8 FM हमेशा आपके लिए कार्यरत है। तो किसान साथियों, आशा करते हैं कि आप भी हमारे कार्यक्रम रेडियो टांडिया भील के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी के माध्यम से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप ले रहे होंगे और अपने खेतों में इसका प्रयोग कर रहे होंगे। और साथ ही किसान साथियों, आशा करते हैं कि आप जैसे कि आप आपके कॉल के माध्यम से और हमारे नैरोकास्टिंग के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशा करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहो और अपने जितने भी सवाल है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, साथ ही जो हमारी टीम अपने आपके आपके खेतों तक आती है उन्हें भी आप ये सारी आपकी जो समस्याएं हैं वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही हम केवीकी के माध्यम से आपको जो भी सहायता हो सकती है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं
9: कनाजू की, और उनके जरिए कैसे जो पोषण सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सकेगी। लगातार सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि कैसे हम जो पोषक अनाज यानी जो मोटे अनाज हैं इनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इनकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ जो पोषण सुरक्षा है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन इसमें चुनौतियां कई हैं, कैसे जो किसान है उनका रुझान हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं पोषक अनाजों के लिए, कैसे बेहतर भाव जो है वो एक किसानों को मिल पाएगा और कैसे ना सिर्फ हमारा जो घरेलू बाजार है बल्कि वहां से निकलकर जो हमारे पोषक अनाज हैं वो वैश्विक बाजार में अपनी एक अहम जगह बना पाएंगे, इसके लिए तमाम जो कोशिशें चल रही हैं आज उसके ऊपर खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे। और इसके लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अशोक दलवई जी, आप CEO हैं नारा के और इसके साथ साथ चेयरमैन हैं DAC के। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अशोक दलवई। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ब्लास पिनौती जी, आप डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च तेलंगाना हैदराबाद से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर ब्लास। और साथ ही आपको बता दें इसी संस्थान से हमारे साथ जो प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बी दयाकर राव जी, वो भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो आपके साथ हम जो चर्चा है वो शुरू करेंगे, आइए लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर।
10: Our coarse grains and millets have high nutrition value. They can be called nutrition rich and climate smart crops. This will raise incomes of some of the poorest of the poor farmers.
0: आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया. जो जौ हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो, सामा हो, बाजरा हो, सामा हो, लेकिन धीरे धीरे हमारी ये सारी चीजें थालियां से गायब होती गई. और इसलिए इस थाली को भी ये खाएं मतलब गरीब, उसको टैग लगा दिया, तो फिर मैं गरीब नहीं हूं ये कहने के लिए भी उसने थाली छोड़ दी. जिस अनाज को कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं होता था वो सैकड़ों रुपए किलो के हिसाब से आज दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं.
11: लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं. मैं आज एफएओ को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है.
10: वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट आयुर्वेदा एंड आहार इन द टाइम टू कम. फूड आइटम्स रिलेटिंग टू आयुर्वेदा एंड फूड आइटम्स दैट फर्दर गुड हेल्थ. मैनी ऑफ यू वुड बी अवेयर दैट ए फ्यू डेज एगो द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 2023 टू बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. लेट अस स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स.
3: 2023 में पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जाएगा. इसके तहत पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. मोटे अनाजों के विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का सकारात्मक प्रभाव भी हुआ है. जैसे 2017-18 में मिलेट्स का जो उत्पादन 164 लाख टन था वो साल 2020-21 में बढ़कर 176 लाख टन हो गया. वहीं साल 2017-18 में उत्पादकता 1163 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी जो साल 2020-21 में बढ़कर 1239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है. हमारे देश में लगभग 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 250 लाख टन मिलेट्स का उत्पादन होता है. भारत का मिलेट्स उत्पादन एशिया का 80 और वैश्विक उत्पादन का 20% है. पोषक अनाज यानी मिलेट्स जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें हैं, जिनकी खेती 131 देशों में की जाती है. इन पोषक अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट शामिल है. हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है. इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं. बात अगर पोषण की करें तो बदलती जीवन शैली के कारण मोटापा, डायबिटीज जैसे रोग तेजी से पांव पसार रहे हैं. इन पर काबू पाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज वाली फसलें काफी अहम साबित होती है. महिलाओं में अक्सर आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड की कमी पाई जाती है. ऐसे में महिलाओं में इन कमियों को दूर करने के लिए मोटा अनाज एक सस्ता और अच्छा साधन है. इसके अलावा मोटे अनाजों में जिंक, विटामिन ए, डी, ई और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं. हाल ही में प्रकाशित स्मार्ट फूड स्टडी बताती है कि मोटे अनाजों से भरपूर भोजन बच्चों के विकास में 50% तक का इजाफा कर सकता है.
9: तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से लगातार जो पोषक अनाज है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और इसके परिणाम भी अब हमारे सामने आने लगे हैं कि जो किसान हैं उनका रुझान बढ़ रहा है मोटे अनाज यानी पोषक अनाज की खेती के लिए। आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं यहां पर डॉक्टर अशोक दलवाई जी का। डॉक्टर अशोक, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से लगातार जो सरकार की कोशिश भी रही है और कहीं ना कहीं जो पोषक अनाज का महत्व है या मोटे अनाज का महत्व है वो अब किसान जो है कहीं ना कहीं समझने लगा है।
12: धन्यवाद। पहली बात ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इसको पोषक अनाज कहा
9: जी।
12: पहले हम इसको कोर्स ग्रेन कहते थे, मोटे अनाज कहते थे
9: जी।
12: जब से सरकार ने ये तय की कि हमारे देश में क्लाइमेट चेंज के कारण से, रेनफेड एरियाज के कारण से और हमारे जो कंज्यूमर्स
9: जी
12: है ना, उनके हित दृष्टि से न्यूट्री सीरियल्स जो इंग्लिश में कहते हैं
9: जी,
12: इनको हम प्रमोट करना शुरू करें। ये देखा गया कि पिछले 40 साल में हमारे जो क्षेत्र फल था ये पोषक अनाज में बहुत घट गया है
9: जी।
12: लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर था 1983 में
9: जी,
12: वो घटकर अब 16-17 मिलियन हेक्टेयर को आकर पहुंच गया।
9: एक बड़ी कमी जो है वो दिखाई देती है इसमें।
12: यस, उसके साथ जो हमारा प्रोडक्शन जो था वो जितना था लगभग उतना ही रहा। अब वो 18 मिलियन टन हम उत्पादन कर दें देश में
9: जी,
12: क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ा इसलिए हमारा प्रोडक्शन जितना था उतना ही रह गया है
9: जी।
12: ये क्यों हुआ? ये मूलभूत कारण था कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टेक्नोलॉजी में बहुत कम पैदावार पर हमारा ये जो लक्ष्य रहा, जैसे वीट या पैडी
9: जी,
12: और जैसे इरिगेशन एरिया बढ़ता गया जो मिलेट्स में था वो पैडी वीट के लिए, शुगर के लिए कॉटन के लिए डाइवर्ट होता गया
9: जी।
12: मगर हमारे देश में दो बहुत मुख्य कारण है ये जो पोषक अनाज को प्रमोट करने के लिए
9: जी।
12: एक है कि हमारे देश में बहुत उत्पादन के बाद भी बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है आज
9: जी, पोषण सुरक्षा नहीं।
12: हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ जिससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग अंडर नरिश्ड है, मैल नरिश्ड है
9: जी,
12: वेस्टेड ग्रोथ है बच्चों में, स्टंटेड ग्रोथ है
9: जी,
12: इसके साथ हमारा महिलाएं जो है उनमें आयरन डिफिशियंसी है।
9: यानी कहीं ना कहीं तो डॉक्टर दलवाई एक आवश्यकता महसूस की गई कि जो खाद्य सुरक्षा है, जैसे हमने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है उसी तरीके से पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी और पोषक अनाज के तहत वो और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। डॉक्टर राव, आपका रुख कर लेते हैं या आपसे भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी थी, अगर हमें पैदावार की अगर हम लगातार बात करते हैं, रकबे की हम लगातार बात करते हैं तो किसान का रुझान तभी बढ़ेगा जब अच्छा उत्पादन वो ले सकेगा। इसके लिए संस्थान की तरफ से किस तरह के जो कदम है वो उठाए गए हैं?
13: जो पोषक अनाज की बात जो चल रही है
9: जी,
13: तो इसमें सप्लाई का इश्यू कम है, डिमांड का इश्यू ज्यादा है, खाने वाले कम हो गए इसलिए उसका पैदावार भी कम हो गया
9: जी।
13: तो अभी सरकार इस दृष्टि में, अभी डॉक्टर दलवाई साहब ने बताया कि अभी इसका यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यही होगा कि न्यूट्रिशन होता है सबसे पहले, तो ये डिमांड साइड की अभी जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वैल्यू एडिशन के द्वारा
9: जी,
13: वैल्यू चेन डेवलपमेंट करके इनका जो कंजम्पशन जो घट गया फिर दोबारा वापस कैसे लेके आओ
9: जी,
13: तो ये प्रोसेसिंग और न्यूट्रिशन को जुड़ाकर एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और न्यूट्रिशन, ये तीन डिसिप्लिन और इसका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करके लास्ट माइल कनेक्टिविटी जब फार्मर के कंज्यूमर के, फार्मर और कंज्यूमर का जो गठबंधन करते हैं तब तो उनका आमदनी बढ़ जाए
9: जी।
13: ताकि फार्म गेट वैल्यू एडिशन जो करते हैं, जैसे अभी अनाज वो जो भेजेंगे उसके अंतर्गत अगर वैल्यू एडिशन किए तो उनको कम से कम दो गुना या समटाइम्स मोर देन टू टाइम्स का इनकम बढ़ सकता है, क्योंकि फार्म लेवल पे कुछ ये कैसे है, इसमें दो तरह के हैं, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। माइनर मिलेट्स खास करके तो प्राइमरी प्रोसेसिंग की बहुत ही जरूरत है, उसके ऊपर का छिलका निकालना पड़ता है, तो ऐसी चीज क्लीनिंग ग्रेडिंग वो सारे अगर फार्म गेट लेवल पे करके प्राइमरी प्रोसेसिंग ग्रेन लाए उसका उसका मूल्य बढ़ जाएगा, ताकि वैल्यू एडिशन के द्वारा फार्मर को और भी लाभ मिल जाएगा। तो ये इसका ज्यादा एम्फोसिस देने की बहुत जरूरत है, गवर्नमेंट इसी दिशा में आगे चल रहे हैं।
9: जी बिल्कुल, लगातार सरकार जो इसी दिशा में काम कर रही है और पूरा साथ जो है वो किसानों का भी मिल रहा है। जैसे आपने कहा कि अगर हम वैल्यू एडिशन यानी मूल्य संवर्धन इन जो हमारे पोषक अनाज है इसमें करते हैं तो और ज्यादा हमें लाभ मिल सकता है। डॉक्टर दलवाई, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अब जो किसान है ना सिर्फ इन मोटे अनाज यानी पोषक अनाज की पैदावार के लिए भी कोशिश कर रहा है बल्कि प्रसंस्करण के जरिए उसका मुनाफा जो है बढ़ सकता है, और ये अब एक किसान जो है वो बेहतर तरीके से जानता है।
12: मैं सहमत हूँ, जैसे डॉक्टर दयाकर राव बोल रहे थे
9: जी,
12: हमको पहले डिमांड को क्रिएट करना चाहिए। डिमांड क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। हम उपभोक्ताओं को ये न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे वो ये पोषक अनाज से मिल सकता है उनको
9: जी,
12: और आसान से एक्सेसिबिलिटी उनको देना पड़ेगा। इसके साथ जैसे हम डिमांड क्रिएट करते जाएंगे उसके साथ सप्लाई पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। डिमांड और सप्लाई की ओर अगर हमारा एक ही समय का लक्ष्य रहेगा तो हम जो चाहते हैं कि इसके पोषक अनाज के लिए एरिया बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े
9: जी,
12: और साथ साथ देश भर अवेलेबिलिटी हो, तब ही जो हम चाहते हैं ये जो पोषक अनाज का भूमिका बढ़ाने के लिए देश में वो हो पाएगा
9: जी।
12: ये डिमांड साइड जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल पूरा देश में हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में
9: जी,
12: हम ज्यादातर गेहूं या राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
9: जी,
12: मगर मिलेट डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पर नहीं है, जहां होता है बहुत कम स्तर पर हो रहा है। तो हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम पीडीएस के माध्यम से जहां लोग ये जो मिलेट्स खाना चाहेंगे उनको मिलेट्स को अवेलेबल करें
9: जी।
12: तो इसलिए तो हर राज्य को लिखा गया है
9: यानी मिलेट्स में भी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस तरह के प्रयास हमें करने होंगे।
12: आज कुछ कुछ हो रहा है, कुछ राज्यों में जैसे उड़ीसा कर्नाटक में कुछ स्तर पर हो रहा है
9: जी,
12: मगर हम चाहेंगे कि ये हम ऑप्शन दे हमारे उपभोक्ताओं को, अगर वो मिलेट्स खाना चाहेंगे तो वो पीडीएस में उपलब्ध होनी चाहिए, अगर वो गेहूं चाहेंगे तो गेहूं खा सकते हैं। मगर इतना पीडीएस में चैनलाइज करने के लिए हमारा प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा
9: जी।
12: मैंने कह रहा था कि हमारा खाली 18 मिलियन टन मात्र मिलेट्स हो रहा है
9: जी,
12: कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो नया टेक्नोलॉजी चाहिए या इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की आवश्यकता है ये सब उपलब्ध करना पड़ेगा उनको, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये मिलेट्स जो है या पोषक अनाज जो है ये सब ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स है, ये तो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स है
9: जी।
12: तो क्योंकि एक तरफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है और दूसरी तरफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारे देश में है
9: जी, बिल्कुल।
12: तो हम ये दोनों चैलेंजेस है इनको मिला के एक रिकंसाइल करके किसानों को और उपभोक्ताओं को एक नया ऑप्शन हम दे सकते हैं
9: जी, एक तो नया विकल्प जो है यानी वो उपभोक्ताओं को मिल सकता है। डॉक्टर राव क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनौती हमारे सामने ये है कि कैसे इसका जो उत्पादकता है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और जो दो बड़ी समस्याएं हैं वैश्विक स्तर पर भी अगर हम देखते हैं, ना सिर्फ पोषण सुरक्षा की हम बात करें या जलवायु परिवर्तन की हम बात करें, इसका भी जो खतरा है कहीं ना कहीं फसलों पर भी अब हमें नजर आने लगा है, जबकि जो हमारे पोषक अनाज है उनमें काफी हद तक क्षमता इस तरह की कि वो इस तरह का जो परिवर्तन है वो सह सकते हैं। तो किस तरीके से आपको लगता है कि जो उत्पादकता है या उत्पादन है वो हमारे किसान बढ़ा पाएंगे, और इसके साथ साथ तकनीक जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होगी?
13: अच्छा, ये बहुत अच्छे प्रश्न आप बताए। जैसे प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम काफी क्रॉप्स में भी एक खास करके ये जो ग्रो करते हैं ड्राईलैंड रीजन्स वेयर वाटर और ये लैंड का कमजोरी है और लैंड्स पे ग्रो करते हैं, इसको अच्छे लैंड्स में आने के लिए उसमें उनको ये प्रॉफिट्स दिखाना है। सो प्रॉफिट्स दिखाना, और दूसरी चीज एक होती है या हमें कोई इंसेंटिवाइजेशन कर सकते हैं इसको क्रॉप का एरिया बढ़ाने के लिए
9: जी।
13: तो ये हम लगभग देखते हैं सारे क्रॉप्स का जो अदर क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स को वो एक टाइम था दूसरा टाइम को तो कभी ना कभी उसको दे हैव अवेल्ड दिस इंसेंटिवाइजेशन। ऐसी इंसेंटिवाइजेशन अभी ये पर ड्राई लैंड फार्मर्स को मिलना चाहिए क्योंकि अभी राइस व्हीट इन सब लोगों को मिल गया इरिगेशन सब्सिडी हो या कोई इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो ये तो ये क्रॉप्स को इरिगेशन ना ही है ना ही पावर का सब्सिडी है सो फर्टिलाइजर और केमिकल्स बहुत कम यूज करता। इस सिलसिले में अगर कुछ लोगों को अभी आजकल क्या होता है ये इनका जो कृषक लोग है यही करते हैं और सीड बोत देते हैं फिर बाद में जाके हार्वेस्ट करने शुरू करते हैं। इसका क्रॉप मैनेजमेंट के लिए जो जरूरी है जो मिनिमम फर्टिलाइजर हो नेचुरल फार्मिंग के अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो या अदर मिनिमम रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर जो करे तो उसका उत्पादन बढ़ सकता है और एक इरिगेशन देने से डबल होता है यील्ड। तो ये चीज हम देखना है और बेटर एनवायरमेंट्स में लेके जाने में हमें अगर सफल हो जैसे अभी आंध्र प्रदेश में सेकंड क्रॉप पैडी के बाद सेकंड क्रॉप इन कोस्टल एरिया में ले रहे हैं तो न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करते हुए आगे गए तो एरिया बढ़ सकती है और इसका प्रोडक्शन इंसेंटिव्स भी बढ़ सकते हैं। दूसरी है और एक मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये फार्म गेट वैल्यू एडिशन का बहुत महत्वपूर्ण है तो अगर हम ये मशीनरी जो सप्लाई करते हैं खास करके माइनर मिलेट्स को और इसका प्रोसेसिंग का जब आप करेंगे एट फार्म गेट लेवल पे कुछ सब्सिडाइज्ड थोड़ा छोटा क्लस्टर सब वी कैन मेक देम अवेलेबल टू द फार्मर्स उससे काफी काफी तक नहीं तो क्या होता है अभी ब्राउन टॉप मिलेट है वो नया मिलेट है अभी ग्रो करने लग गए तो दे उनका उत्पादन बहुत बढ़ गया मगर उसको ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए उसके प्रशंसक करने के लिए प्राइमरी प्रोसेसिंग करने के लिए मशीन नहीं है तो उसका बेचने के लिए उन लोग थर्ड पता है दे आर जस्ट गेटिंग एग्जॉस्टेड एंड दे कुड नॉट सेल देयर प्रोड्यूस। तो ऐसी चीज से नौबत नहीं आना चाहिए साइमल्टेनियसली जैसे हमारा डॉक्टर अशोक दलवाई जी ने बता रहा था साइमल्टेनियसली क्रॉप प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन ये सारे वी नीड टू गो साइड बाय साइड। ये जैसा है ना अंडा और मुर्गी का कहानी जैसा है तो कौन सा पहले तो साथ साथ चलना है
9: बिल्कुल ये एक साथ हमें लेके चलना होगा जो स्थिति हमारे सामने रहती है और किसान के सामने भी कुछ ऐसी स्थितियां रहती हैं। डॉक्टर दलवाई अगर देखा जाए क्योंकि जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक रुझान जो है हमारा हरित क्रांति के बाद या तो गेहूं की तरफ हुआ या धान की तरफ हुआ लेकिन आज के समय में आवश्यकता है जो विविधीकरण है उसको अपनाया जाए और उसमें पोषक अनाजों को किसान जो है शामिल करें।
14: यस आप ठीक कह रहे हैं
9: जी
14: हम तो चाहेंगे सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि क्रॉप सेक्टर में अलग अलग प्रकार के पैदावार करें साथ में लाइफ स्टॉक फिशरी पोल्ट्री ऐसे सब एक्टिविटीज को हम बढ़ाएं
9: जी
14: तभी हमारा जो रिस्क है एग्रीकल्चर सेक्टर में रिस्क का प्रभाव जो होता है किसानों की आमदनी पर वो कम होता जाएगा। और इरिगेशन जो है उसके लिए एक सीमित एक एरिया है कैपेसिटी हमारे देश में
9: जी।
14: क्योंकि हमारे देश में इतना पानी नहीं है जितना हम चाहेंगे पूरे 140 मिलियन हेक्टेयर को पानी देने के लिए व्यवस्था करने के लिए
9: जी।
14: इसलिए हमको जो ड्राईलैंड्स है रेनफेड है डेजर्ट एरिया एरिड सेमी एरिड एरिया है जहां पानी पहुंचने का संभावना नहीं है हमको तो रेनफेड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो रेनफेड टेक्नोलॉजी में लो वाटर ड्यूटी क्रॉप जैसे ही हमारा पोषक अनाज है पल्सेस है ऑयल सीड्स है इनको और ज्यादा महत्व देना पड़ेगा।
9: बिल्कुल डॉक्टर दलवाई और आपने तो खासतौर से जो हमारे ड्राई लैंड है या रेनफेड एरियाज हैं यहाँ पर हमने देखा है पिछले अगर कई सालों की भी हम बात करते हैं तो लगातार आप किसानों को जागरूक करते आए हैं उसके परिणाम हम मान सकते हैं कि अब सामने आने लगे हैं जो किसान है वो अब उनका रुझान जो है इन दूसरी फसलों पर भी नजर आता है।
14: अगर हम नया टेक्नोलॉजी देंगे टेक्नोलॉजी में क्या है सीड्स उदाहरण उसके साथ प्रोक्योरमेंट होगा या मार्केट एफिशिएंसी को हम बढ़ाएंगे निश्चय तौर पर किसान का रिस्पांस रहेगा
9: जी।
14: अब मिलेट्स में भी यही करना पड़ेगा मिलेट्स में थोड़ा ज्यादा चैलेंजेस है चैलेंज यही है कि हमको जितने नए वैरायटी चाहिए वो अभी तक हमको जितने स्तर पर चाहे उतना नहीं है। तो हमको यही करना है कि जितना ब्रीडिंग प्रोग्राम हुआ है आज तक मिलेट्स में, उस वैरायटीज को स्क्रीन करके जहां अच्छा वैरायटीज है उस वैरायटीज को सीड प्रोडक्शन करके हमें किसानों तक पहुंचाना पड़ेगा। यही देखा गया है कि जो हम फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं केवी के माध्यम से, वहां जितना प्रोडक्टिविटी हम देख पाते हैं उतना मेरे किसानों के खेत पर हम नहीं देख पा रहे हैं। लगभग 40% कम होता है। ये 40% क्यों कम हो रहा है? यही कारण है कि जो किसान उगाते हैं वो मोर डेजर्ट बंजर भूमि रहता है या लो एंडोर क्रॉप्स सॉइल्स रहता है, पानी ठीक नहीं दे पाते हैं या फर्टिलाइजर नहीं देते हैं। तो हमको ये नया वैरायटीज के साथ ये जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है इसके बारे में भी किसानों को अवगत करने का आवश्यकता है, तभी हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। और साथ साथ मिलेट्स में ये जो चैलेंज डॉक्टर दयाकर राव बोल रहे थे, हार्वेस्टिंग के बाद वो सीधा तो खा नहीं पाते हैं
15: बिल्कुल
14: उपभोग, इसके लिए डी हलिंग करना पड़ेगा, प्राइमरी प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। हमारे देश में आज तक जितने प्रकार के मशीनरी चाहिए इसके लिए अभी वो लोगों के पास नहीं, किसानों के पास नहीं है।
15: जी,
14: ये नहीं कि अगर वो उनका सोरगम है उसके साथ बाजरा है, अलग अलग प्रकार के मशीन को तो खरीद नहीं पाएंगे।
15: जी,
14: हमको ऐसे मशीनरी को डिजाइन करना पड़ेगा जैसे एक ही मशीनरी में हर प्रकार के कमोडिटीज को वो प्रोसेस कर पाएंगे,
15: यानी तकनीकी रूप से भी हमें सक्षम होना होगा और इसका फायदा जो है तभी हमारे ज्यादा किसानों को मिल भी सकेगा। डॉक्टर राव, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, तकनीकी रूप से हमें आवश्यकता है सक्षम होने की, जिसका जिक्र यहां अभी डॉक्टर दलवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हम बात करते हैं नई किस्मों की जिनके जरिए जो उपज है वो ज्यादा मिल सके, इस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है?
13: आई थिंक अभी जो दलवाई साहब ने बता रहा है कि वन मशीन जिससे हम पूरे सारे मिलेट्स का प्रोसेसिंग कर पाए, डीहलिंग कर पाए, तो उससे बट ये ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऐसा है, अभी कई बार अभी मध्य प्रदेश देखो कोड़ो कुटकी चलता है, और ये महाराष्ट्र गए तो कुछ और मिलेगा, आंध्र गए तो फॉक्सटेल मिलेगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कम किस्म के और अफोर्डेबल मशीनरी की बहुत जरूरत है। अभी फिलहाल जो हो रहे हैं वो जो मशीन हो रहे हैं डीहलिंग का मशीन का, उसका अभी देखो लिटिल मिलेट कहते हैं जो उसका एक लेयर रहता है ऊपर, और कोडो मिलेट रहता है सात लेयर रहता है, सभी जानदार है बहुत छोटे है, मगर इसका इतना अंतर है, एक ही मशीन में दो लाना थोड़ा चैलेंजिंग है। और इसके दिशा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कई और इंस्टीट्यूट के साथ कुछ काम चल रहा है, अभी 70% तक एफिशिएंसी बढ़ गया है, और हम सोचते हैं आने वाले दिन में इसका आगे भी बढ़ सकता है।
15: चलिए बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और ज्यादा जो उत्पादन है जो उपज है वो हमारे पोषक अनाजों की बढ़ सकेगी, और जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो पहले थाली से जो हमें पोषक अनाज जिसमें नजर आते थे वो गायब हो चुके थे, जिस तरीके से जो हमारी दलहनी फसलें उसमें अब शामिल होने लगी हैं, ऐसे ही जो हमारे पोषक अनाज हैं वो भी उसमें शामिल हो, तो इसके साथ साथ यानी हम कह सकते हैं पोषक अनाजों से जो पोषण सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सकेगी।
8: चर्चाओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ छबुआ की आवाज।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का खेती बाड़ी कार्यक्रम में। चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को, डालते हैं नजर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर।
1: कनाज से पोषण सुरक्षा की, और ब्रेक पे जाने से पहले भी आपने जाना किस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है और किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जो पोषक अनाज यानी जो मोटे अनाज हैं उसकी तरफ उनका रुझान कैसे हो सकता है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं इसकी जानकारी हम लेते हैं डॉक्टर विलास से भी। डॉक्टर विलास, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से संस्थान ने अलग अलग जो किस्में हैं वो लगातार किसानों के बीच तक पहुंचाई हैं और एक मिशन मोड में हम मान सकते हैं कि अब जो काम है वो किया जा रहा है पोषक अनाज यानी हमारे मिलेट्स जो है, मोटा अनाज जो है, उनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए।
2: जी बिल्कुल, तब सरकार के तरफ से और हमारे संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट मिलेट्स रिसर्च के तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं वो पांच सूत्रों के आधार पर हो रही है।
1: जी,
2: एक जो है किसान को अच्छे बीज की व्यवस्था हो, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का बढ़ावा हो
1: जी,
2: और के अलावा न्यूट्रिशन और हेल्थ एंड वेलनेस अवेयरनेस की एक प्रोग्राम बढ़ाने दो, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और आल्सो इंटरनेशनल आउटरीच पे और पॉलिसी इंटरवेंशन पे काम हो रही है
1: जी।
2: तो पोषक अनाज जो 5000 साल पहले डोमेस्टिकेट हुए, कृषि मूलम इदम धान्यम बताते हैं, कृषि के मूल थे ये धान्य। अभी इसको फिर बढ़ावा देने के लिए, क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो को बढ़ाने के लिए तो सरकार ने इसका प्रयास कर रहे हैं। न्यूट्री सीरियल और पोषक अनाज का दर्जा इनको दिया गया है
1: जी।
2: और मिशन मिलेट्स जो हम कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत इसको बढ़ावा देते हुए सबको पोषण सुरक्षा का जो अभियान चलाए हैं मिलेट के द्वारा दिलाने की हम ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं सर।
1: डॉक्टर विलास, इसके लिए जब हम बात करते हैं प्रसंस्करण क्षेत्र में हमें जाना होगा, प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं, क्या इसके लिए संस्थान की तरफ से भी किस तरह की जो ट्रेनिंग है वो आयोजित की जाती है?
2: जी, हम साल में करीब करीब 100 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग विषयों पर
1: जी।
2: ये प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे किया जाए फार्मर्स को होता है। दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के ऊपर जो प्रोसेसर्स है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या फार्मर्स के एफपीओ ग्रुप्स भी एज ए इंक्यूबेशन सेंटर पे हम लेते हैं। इन सबको अलग अलग पहलुओं पर हम ट्रेनिंग देते हैं। और दो चीजें हमारे पास आरकेबीवाई रफ्तार के अंडर दो प्रोग्राम चलते हैं, एक एनग्रेन प्रोग्राम है और इसके अंदर जो इनिशियल एंटरप्रेन्योर्स जो अपना कुछ करना चाहते हैं वैल्यू एडिशन और कोशिश करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप मिलेट्स के ऊपर, उनको 5 लाख की सहायता धन राशि मिलती है और ये ऑल इंडिया कंपटीशन बेसिस पे सिलेक्शन होता है। दूसरी चीज 25 लाख का सहायता धन राशि मिलती है जो ऑलरेडी ये बिजनेस में है, जो स्टार्टअप्स के रूप में उभर के आते हैं उनको हम इंक्यूबेट करते हुए 25 लाख की सहायता धन सपोर्ट ये आरकेबीवाई रफ्तार के प्रोग्राम के अंदर मिलता है। और अभी हम इसके वजह से करीब करीब 1 लाख लोगों को ट्रेन किया है और 500 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेन किया है, 400 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स उभर के आए हैं, 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स है, तो करीब इसका इकोसिस्टम 3000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस बनाते हुए अभी हम अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी मार्केट में पहुंचाए हैं। करीब 400 ब्रांड अभी मार्केट में उपलब्ध है सर
1: जी। डॉक्टर विलास, यानी हम मान सकते हैं जो हमारे पोषक अनाज हैं पोषण सुरक्षा तो दे ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा भी हम मान सकते हैं जिस तरीके से आप बताने के किस स्तर पर लगातार जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं, प्रशिक्षण जो है वो लगातार दिया जा रहा है अगर इसको देखा जाए तो।
2: जी बिल्कुल, अभी हमारी कोशिश यही होगी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, अभी देखिए सरकार के पॉलिसीज को जब हम एनालाइज करेंगे पिछले 20 साल में कोई भी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की तरफ पॉलिसी नहीं थी, जब लास्ट 10 साल में हम देखा जाए तो हम पल्सेस के ऊपर पॉलिसी बनाए, पल्स रेवोल्यूशन हो गया, अभी ऑयल सीड मिशन चल रहा है जो हमारे सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑयल की इंडिया में होना है, इंपोर्ट को कम करना है, वैसे ही मिलेट मिशन के अंदर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में कैसे मुनाफा फार्मर्स का बढ़ाया जाए, इसी की कोशिश हो रही है। जब एरिया एक्सपेंशन होगा डिमांड ड्रिवन पॉलिसीज की तरफ से, जैसे कि अवेयरनेस बढ़ रही है, डिमांड मिलेट्स के ऊपर बढ़ रहा है क्योंकि मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसका एक अभिप्राय लोगों में आ गया है। अभी इसके तहत जब डिमांड ड्रिवन पॉलिसीज गवर्नमेंट सपोर्ट में आ रहे हैं, इंसेंटिवाइजिंग कल्टिवेशन, फार्म गेट प्रोसेसिंग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की वजह से, प्रोसेसिंग की सपोर्ट जो मिल रही है
1: जी।
2: और अलग अलग जो स्कीम्स आ रहे हैं, तो इसके वजह से फार्मर्स में मिलेट कल्टीवेशन की इंटरेस्ट आ रही है और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जब बढ़ रहे हैं, वो अपना ब्रांडिंग करके लोकल, रीजनल और नेशनल स्तर पर भी अपने ब्रांड्स मार्केट्स में और एंटायर वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करते हुए हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ ये काम करते हुए हम फार्मर को मार्केट के साथ लिंक करने की एक प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में हम यशस्वी भी हो रहे हैं
1: जी। बिल्कुल, लगातार जो प्रयास है देखिए वो फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। और खासतौर से डॉक्टर विलास, अगर देखा जाए क्योंकि ना सिर्फ पोषण सुरक्षा बल्कि इसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जो दो वैश्विक समस्याएं हमें नजर आती हैं जो कि कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां भी हैं, एक जलवायु परिवर्तन का खतरा और दूसरा कुपोषण की अगर बात की जाए, तो इन दोनों बड़ी समस्याओं के विकल्प के तौर पर अगर हम देखते हैं, समाधान के तौर पर देखते हैं, तो शायद पोषक अनाज जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आने वाले समय में भी।
2: जी बिल्कुल, अभी देखिए जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम, तो इस जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमको ऐसे धान्य चाहिए जो एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई भी करे और पोषण सुरक्षा भी दे। अभी देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस के हैं, SDG 2 जो जीरो हंगर है, माल न्यूट्रिशन को दूर करना है, SDG 3 है हेल्दी लाइव्स को बढ़ाना है, SDG 12 जो है सस्टेनेबल प्रोडक्शन कंजम्पशन सिस्टम्स को लाना है, SDG 13 क्लाइमेट चेंज की है। तो अभी मिलेट्स जो है क्लाइमेट चेंज के एक प्रतिबिंब है और एक रिप्रेजेंटेटिव्स है, क्योंकि बहुत ही कम वर्षा में 400 से मिलीमीटर से कम वर्षा में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हुए
1: जी।
2: किसान को दाना भी देते हैं और चारा भी मिलता है पशुओं को, तो इस न्यूट्रिशियस थिंग एनिमल सिक्योरिटी एंड देयर लाइवलीहुड और पोषक अनाज से पोषण सुरक्षा जो न्यूट्रिशियल से पोषक अनाज या मोटा अनाज से मिलेगा, ये भरपूर अगले आने वाले समय में हमारे देश को ये जरूरत है, क्योंकि जैसे कि हम राइस वीट के इकोसिस्टम में इरिगेटेड एग्रीकल्चर को बल दिया है, मगर जब पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुकी है, तब हमारे नॉर्दर्न स्टेट पंजाब, यूपी, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट, इन सब में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर जरूरी है। तो हमने हमारे ट्रायल से ये मालूम हुआ कि इनके प्रोडक्टिविटी लेवल्स करीब 4 गुना ज्यादा है पंजाब, यूपी, हरियाणा में, तो इसलिए ये क्रॉप भी वहां आ गए। तो राइस, वीट, पोटैटो की जो मोनोक्रॉपिंग सिस्टम है इसको हम डाइवर्सिफाई करने में भी सफल होंगे, पानी को बचाने में सफल होंगे और जो अधिक मात्रा में जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड केमिकल यूज होते हैं तो उसको बचाते हुए नेचुरल फार्मिंग का भी बढ़ावा दे सकते हैं
1: जी।
2: तो वैसे हम ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल का भी ये रहेगा और डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर में मिलेट्स सबको मिलेंगे, सबके फूड प्लेट पे जाएंगे और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इस क्लाइमेट चेंज की दौर
1: जी। बिल्कुल, तो ना सिर्फ बारानी क्षेत्र या सूखे क्षेत्र की हम बात करें बल्कि वो भी क्षेत्र जहां पर जो बारिश की स्थिति है सामान्य होती है, वहां भी तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। जो पोषक अनाज है अगर उनकी खेती हमारे किसान करते हैं तो और अधिक लाभ उनको मिल सकता है। लेकिन यहां खासतौर से डॉक्टर विलास, अगर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो पोषण वर्ष है वो हम मना रहे हैं पोषक अनाज के साथ, किस तरीके से और खास रहेगा ये वर्ष जो है और क्या कुछ इसमें तैयारियां चल रही हैं?
2: देखिए बहुत ही एक्साइटिंग विषय है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ICAR और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर्स एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ मिलते हुए हमने एक ब्लूप्रिंट बना के PMO को ये सबमिशन हुआ है और करीब करीब 6 टास्क फोर्स बनाए गए हैं जो पोषण सुरक्षा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, जैसे मिलेट्स को अलग अलग रेसिपीज, बहुत नेशनल इंटरनेशनल रेसिपीज अवेयरनेस क्रिएट करने का, कैसे इसका रोड शोज हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल और विलेज लेवल तक भी इसकी प्लानिंग हो चुकी है। और करीब करीब सारे 20 मिनिस्ट्रीज, स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू सिविल एविएशन तक, सारे मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। इसका एक ही फाउंडेशन है, ये जो बुनियाद है, इसकी अवेयरनेस बढ़ाया जाए, इसका डिमांड बढ़ाया जाए, लोगों में इस उत्सुकता बढ़े कि ये सब उनके फूड प्लेट में जाए और पोषण सुरक्षा मिले। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अभी कर्टन रेजर हमने किया था हैदराबाद में सितंबर में, लास्ट ईयर सितंबर में, जनवरी में प्रधानमंत्री जी से इसका उद्घाटन होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का, उसके साथ साथ एक विचार गोष्ठी और कॉन्फ्रेंस भी होगी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो करीब 131 कंट्रीज में जो मिलेट्स ग्रो होते हैं, करीब 60 करोड़ लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सब इनमें शामिल होंगे। इतना एक एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सारे कॉन्टिनेंट्स के प्रतिनिधि इससे जुड़ेंगे। और जब 160 देश इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को बनाने के लिए सपोर्ट दिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, अभी भारत इसका लीडरशिप कर रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टास्क फोर्सेस बने हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, लोकल, तो इसको कनेक्ट करते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स में चीफ सेक्रेटरीज एंड कलेक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो सारे फेस्टिवल्स जो बनेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, तो इसके साथ जुड़ते जुड़ते करीब करीब 1000 रेसिपीज बनेंगे और इंटरनेशनल रेसिपीज भी बन रहे हैं, और न्यूट्रिशनिस्ट, शेफ्स ऑफ द होटल्स, डॉक्टर्स, जिम्स, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। तो इसका एक एक्साइटमेंट का माहौल है, भारत इसका नेतृत्व कर रहा है और यही प्रयास है इंडियन मिलेट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में पोजीशन किया जाए और सबको पोषण सुरक्षा दिया जाए।

0: से करीब करीब अभी 34 FPOs क्रिएट किए हैं मिलेट्स के 11 स्टेट्स में।
1: जी
0: तो अभी समझते हैं नेक्स्ट आने वाले एक साल में करीब 400 से ज्यादा मिलेट्स के FPOs रहेंगे एंड मिलेट्स की सप्लाई चेन बढ़ेगा, उसकी सप्लाई की मात्रा बढ़ेगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे, सबको रैशनलाइज प्राइसेस में मिलेट्स की अवेलेबिलिटी होगी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये
1: जी
0: एक्साइटमेंट की लैंडस्केप जो है बहुत ही अच्छी बढ़ रही है।
1: जी
0: एंड हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो मिलेट रेवोल्यूशन हो रहा है, इसके साथ साथ हम सबको सारे विश्व को फूड सिक्योरिटी के अलावा क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में पोषण सुरक्षा भी देंगे, ये
1: जी
0: हमको उम्मीद है और हम इसके इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। तो जाना आपने कैसे कोशिश की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय पोषण वर्ष की, जब हम बात करते हैं इसके लिए और क्या कुछ नया होने वाला है, कैसे किसान को फायदा मिलेगा, ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि अगर हम बात करते हैं पोषण सुरक्षा की उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी खास हो जाते हैं हमारे जो पोषक अनाज हैं, और हर एक स्तर पर प्रयास यही किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान हैं उनको जोड़ा जाए। और जैसा अभी डॉक्टर लास ने भी जानकारी दी कि जो FPO हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें भी इजाफा हो रहा है, तो जाहिर तौर पर पोषक अनाज से जो पोषण सुरक्षा है वो जल्द ही सुनिश्चित हो पाएगी।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी बातें।
1: इस तरीके से कितना फायदा आपको मिल सकता है जो हमारे पोषक अनाज हैं इनके जरिए, और कोशिशें लगातार की जा रही हैं और वो कोशिशें अब रंग लाती भी नजर आ रही हैं सरकार की तरफ से, ना सिर्फ अगर हम MSP की बात करते हैं या किस तरीके से और किसानों को जो फायदा हो सकता है उसके लिए सभी प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, और धीरे धीरे जो किसान है वो समझने भी लगा है कितना फायदा उनको मिल सकता है पोषक अनाजों से। खासतौर से डॉक्टर दलवाई, अगर देखा जाए जैसा आपने कहा कि जो तकनीकी रूप से हम बात करते हैं, यानी इस तरह की जो मशीन की जब हम बात करते हैं, तो आवश्यकता है कि अब ये नया बदलाव जो है हम देखें, क्योंकि और भी बदलाव जो हैं वो हमने हरित क्रांति के बाद से देखे, और आज के समय में जब हम ड्रोन के जरिए कृषि की हम बात करते हैं, तो आने वाले समय में आवश्यकता यही कि पोषक अनाज में भी कुछ इस तरह की नई तकनीक आए जो हमारी उपज को बढ़ा सके।
3: आप ठीक बोल रहे हैं, पोषक अनाज हो या जो भी अनाज हो
1: जी,
3: तकनीकी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के जो चैलेंजेस है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि रिसोर्स यूज एफिशिएंसी।
1: जी
3: रिसर्च से यही पता चलता है कि अगर हमारा चार प्रकार का इंटरवेंशन हो जाएगा
1: जी,
3: तो निश्चित तौर पर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। पहली बात है वैल्यू एडिशन, ये वैल्यू एडिशन से पोषक अनाज पर कम से कम 30% वैल्यू बढ़ जाएगा
1: जी,
3: मतलब इनकम बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो सेकेंड ये है इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मार्केटिंग व्यवस्था अगर ठीक करेंगे, MSP सिस्टम हो, उसके साथ साथ मार्केटिंग सिस्टम, ओपन मार्केटिंग सिस्टम हो
1: जी,
3: उसे कम से कम 25% अच्छाई हो जाएगी। थर्ड एक है कि हम ये जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी मैं कह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
1: जी,
3: कैसे हम पानी या फर्टिलाइजर या लेबर अलग अलग प्रकार का मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करेंगे, अगर वहां इंप्रूवमेंट होगा उससे भी कम से कम 25% फायदा हमको हो जाएगा
1: जी,
3: और इनके साथ अगर मार्केटिंग का व्यवस्था ठीक हो जाएगा कम से कम 20% तो हो ही जाएगा। सो इसका मतलब है वैल्यू एडिशन और रिसोर्स यूज एफिशिएंसी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
1: जी।
3: आप जो कह रहे थे तकनीकी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है ड्रोन्स हो, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम हो, मतलब मैकेनिकल सिस्टम के साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, दोनों मिलाना पड़ेगा हमको। माइक्रो इरिगेशन के साथ अब सेंसर जोड़ दिया, या रिसोर्स यूज एफिशिएंसी के लिए आपने ड्रोन का इस्तेमाल किया
1: जी,
3: तो ऐसे मैकेनिकल टेक्नोलॉजी और इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दोनों को अगर मिलाएंगे
1: जी,
3: तो निश्चय हमारे किसान को लाभ होगा। मान लीजिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग किया
1: जी,
3: ताकि किसान को पता चलेगा उनका सॉइल का न्यूट्रिएंट कंडीशन क्या है और क्या इस्तेमाल करना चाहिए
1: जी,
3: उसके साथ अगर माइक्रो इरिगेशन जोड़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका कम पानी में ही अच्छा उत्पादन हो सकता है
1: जी।
3: तो प्रेसिजन एग्रीकल्चर जो चाहिए, प्रेसिजन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने से
1: जी
3: हमारा जो इनपुट का व्यवस्था

0: है वो ठीक होगा, उसके साथ हमारा उत्पादन बढ़ेगी
1: जी
0: और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम होगा। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको इस पर ध्यान देना चाहिए
1: जी।
0: इसके साथ साथ जब भी हमारा प्रोडक्शन होगा, हमारा उपभोक्ता का आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ेगा
1: जी।
0: आज उपभोक्ता क्या चाहेंगे, यही न्यूट्रिशन के साथ, अगर न्यूट्रिशन का अंश को बढ़ाना है तो बायो फोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो इसलिए हमको ऐसे प्रकार के वैरायटी चाहिए जहां जिंक हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट के साथ इसका भी आवश्यकता
1: जी
0: पूरा हो सकेगी।
1: यानी बायोफोर्टिफाइड जो किस्में हैं उनका प्रचलन जो है हमारे पोषक अनाजों में भी बढ़ना चाहिए। डॉक्टर राव क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार जो गुणवत्ता है उसको भी सुधारने की बात कही जाती है, किस तरीके से गुणवत्ता में इजाफा हम कर सकते हैं। उत्पादन तो हमें बढ़ाना ही है लेकिन जो गुणवत्ता है वो भी काफी महत्वपूर्ण, जब हम पोषक अनाजों की बात करते हैं कैसे इसमें सुधार लाया जाएगा, और खासतौर से जिसका जिक्र अभी यहां डॉक्टर दलवाई ने किया जो बायोफोर्टिफाइड किस्मों की हम बात करते हैं, क्या उसकी भी यहां कह सकते हैं और नई प्रजातियां जो हैं वो आएंगी?
2: अभी मिलेट्स में अबाउट 10 बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज अभी तक ला चुके हैं
1: जी।
2: जैसे बाजरा में ज्यादा है, फिर बाद में फिंगर मिलेट में है, फिंगर रागी में होगा और स्मॉल मिलेट्स में भी लाया गया
1: जी।
2: तो इसमें जिंक के स्पेशल वेराइटीज कुछ है, फोर्टिफाइड बायोफोर्टिफाइड, आयरन बायोफोर्टिफाइड है
1: जी।
2: और ऐसी माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी आजकल बहुत ज्यादा है, इसी को हिडन हंगर कहला जाता है
1: जी।
2: तो इसके माध्यम में अगर हम ये स्पेशलाइज्ड बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज खास करके अपना अनेमिया मुक्त भारत भी जो कहला जा रहे हैं, तो कैप्टिव मार्केट जो है ICDS प्रोग्राम, WCD प्रोग्राम, आयरन माल न्यूट्रिशन, ये सारे प्रोग्राम्स में अगर हम उसको वी कैन कनेक्ट टू दिस मार्केट्स। एंड अभी पोषण अभियान के अंतर्गत मिलेट्स का भी प्रोत्साहन दिया गया
1: जी।
2: तो इससे काफी लोगों को लाभ, वन साइड तो कंज्यूमर का लाभ होगा जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के तरफ से, दूसरी तरफ ये फार्मर्स को भी इसका जैसे उनका भी लाभ होगा, बिकॉज द मार्केट्स आर गोइंग टू एमर्ज,
1: मुनाफा एक किसान का बढ़ सकेगा इसके जरिए।
2: हाँ बिकॉज बट वी नीड टू एंश्योर वन थिंग, तो प्रोड्यूसर शेयर में कंज्यूमर शेयर में प्रोड्यूसर का शेयर और कंज्यूमर रूपी में प्रोड्यूसर शेयर अच्छा रहना चाहिए
1: जी।
2: फार्मर्स को कुछ अब जो मिल रहा है उससे ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसी जो इंट्रोडक्शन के बायोफोर्टिफाइड या जो भी है, तो द पॉलिसीज मस्ट बी पुट इन सच अ वे दैट द फार्मर गेट द मैक्सिमम शेयर फ्रॉम द कंज्यूमर रूपी। तो इस तरफ से है तो हम ये वी कैन वेरी श्योर दैट फार्मर विल इंक्रीज द एरिया अंडर दिस थिंग। सो दिस इज, ये मेरा राय है
1: जी। यानी एक शुद्ध लागत जो है वो एक किसान को मिल सके, इसके लिए अब हमें प्रयास करने होंगे, क्योंकि जो किसान है तभी ज्यादा उसका रुझान पोषक अनाजों की तरफ होगा जब उसको बेहतर भाव या जो मुनाफा है वो मिल सकेगा। डॉक्टर दलवी आपने जिक्र किया था कि किस तरीके से अच्छा लाभ जो है वो किसान को मिल सकता है, कैसे किसान अपनी लागत को कम कर सकता है, लेकिन जब बात करते हैं हम जागरूकता की, यानी किस तरीके से हमें जो अवेयरनेस है उसको और ज्यादा बढ़ाना, और उसी के लिए हम देख भी रहे हैं जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का आयोजन जो किया जा रहा है, तो काफी संख्या में अब जो किसान है वो जागरूक भी हो रहे हैं, और लेकिन कोशिश उनकी भी यही है कि सीधा वो उपभोक्ता तक संपर्क कर सकें।
0: ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो 2018 में हमारे देश में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को हमने मनाया
1: जी,
0: और इससे भी बहुत अवेयरनेस क्रिएट हुआ है देश में, और आजकल सामान्य स्तर पर उपभोक्ता में भी एक नया अवेयरनेस आ रहा है कि हमको सेफ, हेल्दी, न्यूट्रिशन रिच खाना चाहिए
1: जी।
0: तो मोटे तौर पर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम में ये बदलाव हम देख रहे हैं
1: जी।
0: ये जो पोषक अनाज है, क्योंकि इन कमोडिटी को हम बढ़ाना चाहेंगे, तो ये जो हमारे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम मनाने जा रहे हैं अगले साल
1: जी,
0: इसको इसका लाभ उठाते हुए हमको और अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो अवेयरनेस होगा जब इनके साथ जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स है, जैसे जो हमारा अलग अलग होटल में जो काम करते हैं शेफ्स उदाहरण
1: जी,
0: डॉक्टर्स उदाहरण, उसके साथ हमारा न्यूट्रिशन, हमारा यूनिवर्सिटीज के जो ओपिनियन मेकर्स प्रोफेसर्स है
1: जी,
0: ऐसे लोगों को अब बात करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अब फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन की ओर हम जा रहे हैं
1: जी।
0: ताकि हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है, विशेषकर महिलाएं हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो
1: जी।
0: तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको ये पोषक अनाज को उनको बढ़ाने के लिए उसके बारे में जो अवेयरनेस चाहिए, ये सब उनको उनके उनको पहुंचाना चाहिए।
3: किसान साथियों, लगातार आपने खेती बाड़ी कार्यक्रम में खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, जैसे कि डॉक्टर साहब हमारे साथ चर्चा कर रहे थे कि हमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, हमें यहाँ पर लोगों के अंदर जो अवेयरनेस पहुंचाना है, जो अवेयरनेस कैंपेनिंग करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो किसान है वह पहले से ही जो कोदो हो गया, बावटो हो गया, पूरी आदि की जो पौष्टिक आहार है, पौष्टिक अनाजों की खेती करते आया है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमारा जो किसान है मक्का और गेहूं मुख्यतः खाद्य फसलें बनकर रह गई है। तो किसान साथियों, हमें यहाँ पर जरूरत है कि हमें पुनः हमारी जो पोषक तत्व थे जिनमें रासायनिकों का हमें बिना प्रयोग से ही हमें अच्छी से अच्छी फसल मिल जाती थी, तो हमें उन फसलों को पुनः हमारे खेती में शामिल करना चाहिए और इसे इसका हमें लाभ लेना चाहिए। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में बस इतना ही, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टैंडेबिल 90.8 FM के साथ।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आज के कलाकार के इस मंच पर दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसा जानते हैं, ये मंच है नए गायकों का, नई गायिकाओं का, नए टैलेंट्स का, और मुझे बहुत खुशी है आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में है मालविका दास मैम, तिनसुकिया आसाम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है दास मैम। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप क्या करते हैं, कहाँ हैं आप?
8: जी धन्यवाद, मैं मालविका दास तिनसुकिया आसाम से, आप सभी का दिल से साधुवाद। मेरा खुद संगीत महाविद्यालय है जिसका संचालन मैं खुद करती हूँ और तिनसुकिया में ही रहती हूँ।
7: दोस्तों, आपने सुना, मालविका मैम एक संगीत विद्यालय चलाती हैं। हम लोग तो इधर से उधर से किसी तरीके से संगीत सीखते हैं, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे बीच में एक संगीत की टीचर भी हैं, जो दरअसल हमें कई बारीकियां भी बता पाएंगी संगीत के बारे में। बहुत खूब, बड़ी ही शानदार बात मैम, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को मालविका मैम के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत बहुत ही प्यारा गीत मैम, थैंक यू सो मच। मैम आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मेरा बचपन से ही संगीत में रुझान रहा है, जिसको देखते हुए मेरे माता पिता ने मुझे अवसर दिया और मैं यहाँ तक पहुंच पाई। जी
0: तो बचपन से ही आप संगीत में जाना चाहते थे, आपका सपना था कि आप गायिका बने। और
1: जी,
0: मैं आपको बहुत बहुत खुशकिस्मत मानूंगा, आपका सौभाग्य है कि आपको वही दिशा आपको दिखाई भी गई, आपके माता पिता ने आपको सहायता दी और आज आप एक संगीत विद्यालय चला रहे हैं। इससे बहुत बढ़िया और बात हो भी क्या सकती है। बहुत खूब दोस्तों, तो चलिए फिर एक संगीत विद्यालय को एस्टैब्लिश करने वाली मैम मालविका मैम की ही आवाज में सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा संगीत।

0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया मैम। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि यूं तो अब आप एक संचालिका हैं, टीचर हैं, लेकिन आपके फेवरेट टीचर कौन रहे और क्यों?
1: वैसे तो मेरा शिक्षक शिक्षकों से काफी लगाव रहा है
0: जी
1: क्योंकि काम के प्रति मैं हमेशा ईमानदार रही हूँ। जहाँ तक पसंदीदा शिक्षकों की बात है तो वो है मेरी माँ।
0: जी
1: माँ है जो पल पल मुझे सलाह देती रहती है।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपनी माँ का नाम हमें बताएं?
1: मेरे माँ का नाम कल्याणी घोष।
0: जी, कल्याणी घोष माँ।
1: जी
0: तो दोस्तों, आपने सुना, सबसे अच्छी टीचर मालविका मैम की जो है वो उनकी माँ है। यूं तो हम सब की टीचर सबसे पहली माँ ही होती है, लेकिन कितनी बार हम अपनी माँ को, माँ दूर भी होती है तो कितनी बार हमने अपना फोन उठाया और माँ को बोला, माँ मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। क्या बात है भाई, वाह मालविका मैम, आपके कहने से मुझे मेरी माँ याद आ गई। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत जो मैं मालविका मैम की माँ को ही समर्पित करूंगा।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। आगे बढ़ते हुए मैम आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, आपकी परिभाषा बताते हैं, ऐसे कौन से तीन शब्द आप इस्तेमाल करेंगी अपने को बताने के लिए?
1: जी, मेरे जीवन को जो सबसे अधिक परिभाषित किया वो है लक्ष्य, गोल।
0: जी।
1: दूसरी है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, कड़ी
0: जी,
1: मेहनत। थर्ड वाला है हार्ड वर्क, मेहनत।
0: मेहनत
1: जी
0: भाई, वाह क्या बात है, बड़े ही खूबसूरत तरीके से तीन शब्द मालविका मैम ने बताए। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए ना एक गीत भी सुनते हैं मालविका मैम की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, बड़ा ही प्यारा गीत। मैम, अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार कोई भी खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: चलिए, जो सबसे पहले मैं बनाने की बात है तो वो मैंने सबसे पहले चाय बनाई थी, टी। हाँ, लेकिन चीनी डालना भूल गई थी।
0: अरे वाह, ओके ओके।
1: चाय बनाई लेकिन चीनी डालना भूल गई थी।
0: जी तो जी। ये कब की बात है मैम?
1: आप ये, मैं स्कूलिंग का टाइम में, तब मम्मी बोली थी एक कप चाय बना के लाओ, सबको खिलाओ।
0: अच्छा,
1: तो मैंने बहुत उत्सुकता से बनाई थी। मैं, मेरे पापा ऑयल इंडिया में नौकरी करते थे, तो हम लोग का मतलब ऐसे गैस थे, मतलब लाइन गैस बोलता है, तो उसमें हमने चाय बनाई। फिर बहुत एक्साइटमेंट, मैंने चाय बनाऊंगी, सबको पिलाऊंगी। फिर उसमें मैंने चीनी डाला नहीं, लेकिन सबने पी लिया, बहुत टेस्टी हुआ। बोला बाद में मैं पी के देखी, तो इसमें तो चीनी है ही नहीं।
0: ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कितना अच्छा, अजीब सा लगा होगा, लेकिन मजा हाँ। भी आया होगा। मम्मी पापा ने डांटा भी नहीं होगा कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऐसा। जी जी, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत मैम की ही आवाज में।

0: आपको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए मालविका मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: जहां तक मेरी हॉबीज की बात है तो मैं बताना चाहूंगी कि सुबह उठना
0: जी,
1: बागवानी के देख रेख करना, मैं गार्डनिंग करती हूँ, मेरा शौक है, और खाना बनाना और गाना गुनगुनाना, सारा दिन मैं गाना गुनगुनाती रहती हूँ।
0: बहुत खूब, वेरी नाइस
1: जी,
0: बहुत बढ़िया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं मालविका मैम की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। मैम, पूरे दिन में हम लोग सारा काम करते रहते हैं, आप भी करते रहते हैं, सारी दुनिया चलती रहती है, क्या कुछ किसी भी दिन में, डेली रूटीन में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका मूड खराब हो जाए? कौन सी ऐसी चीज होती है जो आपका मूड खराब कर सकती है किसी भी दिन?
1: हाँ, मूड खराब ऐसे तो कभी होता नहीं मूड खराब। मैं हमेशा कभी कभी होता है, जैसे कि मैं जब स्टूडेंट स्टूडेंट को सिखाती हूँ, स्टूडेंट को लेके बैठ रही हूँ, तो उन लोग को मैं जब होमवर्क नहीं करता, जैसे कि मैंने बोल दिया आज ये लेसन करके आओ, तुम लोग गा के बताओ, तो कई कई आजकल के बच्चे तो करते ही नहीं बहुत काम, तो तब मेरा मूड बहुत खराब हो जाता है। तो मैं बोलती हूँ मैं आज नहीं सिखाऊंगी, तुम लोग चले जाओ, उसी में ही मुझे मूड खराब हो जाता है। जी
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं समझ गया आपकी बात। सवाल दरअसल बिल्कुल सही था कि ऐसी कौन सी बात होती है जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो जाता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट दिया है वो अगर नहीं होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपने
1: अच्छा
0: बिल्कुल
1: लगता।
0: बिल्कुल ठीक कहा, बहुत खूब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मैम, आज तक की जिंदगी में, मतलब टिल टुडे, आपकी जो भी पूरी जिंदगी में सबसे अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट, आपको क्या लगता है कि ये सबसे अच्छा मेरे को जिंदगी में मिला, मैंने पा लिया? जैसे कुछ लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का सपना सोचते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज या आर्मी में जाने का, या कोई अवार्ड लेने का, या कोई शील्ड जीतने का, तो ऐसा कौन सा अकॉम्प्लिशमेंट आपको आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा हुआ है, जहां आपको लगा हो बस मेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा दिन है?
1: हाँ, एक समझ गई मैं अभी।
0: जी
1: एक्चुअली मैं जब एक बार मैंने एक बड़ा बड़ा आर्टिस्ट के साथ मैं रिकॉर्डिंग किया था,
0: जी
1: जो हमारे आसाम की जुवेन गार्ड सर से, मैं उनके साथ मैंने एक गाना गाई थी। तब मैं बहुत नर्वस भी थी, तो मैं खुद को भी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मैं उनके साथ गाना गाने का मुझे मौका मिला है। तो उसी टाइम उसके बारे में मैं बोल सकती हूँ, गौरवपूर्ण उपलब्धि था मेरा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात है,
1: जी
0: बहुत बढ़िया,
1: जी
0: बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मैम। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सपनों में विश्वास रखते हैं? रात को सोते हुए देखने वाले सपने और खुली आंखों से देखते हुए अपने उन सपनों को पूरा करने वाले सपने?
1: जी जरूर। लेकिन उस सपनों में नहीं जो रात को सोने में आती है वो,
0: जी
1: बल्कि उस सपने में विश्वास करती हूँ जो दिन में दिखे जाए।
0: अरे वाह जी,
1: जी
0: उन सपनों में आप विश्वास रखते हैं, क्यों,
1: जी
0: ऐसा क्यों?
1: रात का सपनों में मैं विश्वास नहीं करती, मतलब सपना में तो सपना तो आते ही रहते हैं कुछ
0: जी
1: ना कुछ,
0: जी जी जी
1: लेकिन जो दिन में जो हम लोग शुरुआत करते हैं दिन का, वो मतलब मैं उसको मैं विश्वास करती हूँ। जो आज मुझे ये करना है वो करना है, जो मैं सोचती हूँ मुझे वही करना है, कैसे काम करना है कैसे चलना है, वही मैं उसी में मैं विश्वास रखती
0: ओके बहुत बढ़िया।
1: हूँ।
0: तो दोस्तों आपने सुना कि मालविका मैम उन सपनों में विश्वास रखती हैं जिनको पूरा करने के लिए उनको मेहनत करनी होगी। क्या बात है, बहुत
1: जी
0: बढ़िया। चलिए एक प्यारा सा गीत सुना दीजिए, मालविका मैम जी की आवाज में सुनते हैं। आइए दोस्तों ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया मैम, मुझे बताए ना कि आपकी जिंदगी में अभी तक का सबसे अच्छा गिफ्ट आपको क्या मिला है और किसने दिया है?
1: वैसे तो बहुत तोहफा मिला है,
0: जी
1: लेकिन सच्चा तोहफा तो वो है जो एक मित्र बुरे समय में खैरियत पूछे और आश्वासन देते रहे कि घबराना मत, मैं हूं ना।
0: अमेजिंग, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने, बड़ी ही प्यारी बात कही कि ऐसे समय में जब इस वक्त हम बहुत कभी कभी परेशान महसूस करते हैं, शायद कमजोर भी महसूस करते हैं, कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा जानने वाला आपको, आपसे बात करता है, आपको महसूस कराता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, उसी से बहुत ताकत मिल जाती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, फिर एक और प्यारा संगीत सुनते हैं।